मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि तदनुसार 17 मई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 हो रहे हैं। आरंभ होती है आज की हमारी सभा।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 5:55 हुए हैं खेत खलिहान कार्यक्रम के अंतर्गत। आइए सुनते हैं वार्ता।
1: किसान भाइयों नमस्कार। खरीफ मौसम के लिए भिंडी लगाने का समय अभी चल रहा है, इसे बरसाती भिंडी के नाम से भी आप जानते हैं। इसके लिए उन्नत किस्में हैं वैशाली, बधू, पूसा सावनी, हरी चिकनी, पॉर्किंस, लॉन्ग ग्रीन लोकल, सेल वन, पूसा मखमली। बरसाती भिंडी की बुआई किसान भाई जून जुलाई में कर सकते हैं। इस समय बुआई करने से लाभ जो है अच्छा मिलता है। खेत की तैयारी करते समय आप ये ध्यान रखें कि मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की जुताई एक बार कर लें, उसके बाद से 2-3 जुताइयां देसी हल से करें ताकि मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाए। अंतिम जुताई के समय सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद डालें। और उस समय एक और बात का ध्यान रखें कि नीम की खल्ली का प्रयोग खेत में जरूर करें या करंज की खल्ली का प्रयोग करें ताकि आपके खेत में भूमिगत कीड़े जो हैं वो नुकसान नहीं कर सके। बरसात के मौसम में जब आप भिंडी की खेती करते हैं तो उसमें 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। जहां तक खाद तथा उर्वरक का सवाल है तो सड़ी हुई गोबर की खाद 30 टन, नेत्रजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में दें। बोने के समय नेत्रजन 60 किलोग्राम और 40 से 45 दिनों बाद 60 किलोग्राम नेत्रजन का व्यवहार करें। अस्फुर 70 किलोग्राम और पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में बोने के समय आप खेत में दे दें। इस मौसम में सिंचाई करने की आवश्यकता विशेष नहीं होती है भिंडी की फसल को, लेकिन प्रारंभिक दिनों में आप जब मौसम गर्म रहे और वर्षा नहीं हो उस समय एक या दो सिंचाई जो है आप करें। भिंडी की खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पौधे को रोग और कीड़ों से कैसे आप बचाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीला मोजाइक रोग के बारे में, जो कि भिंडी में बहुत होता है। इस रोग में पौधे की पत्तियों के ऊपर, तनों के ऊपर और कभी कभी संपूर्ण पौधे पर चित्तियां पड़ जाती हैं जो कि पीले रंग की होती है, अनियमित आकार की होती है, ठीक उसी तरह से होती है जिस तरह से घरों में मोजैक किया जाता है, इसलिए इसका नाम मोजैक रोग है। यह रोग वायरस के द्वारा फैलता है, इसलिए इस रोग को रोकने के लिए अभी तक कोई विशेष दवा नहीं बनी है। केवल इस रोग को फैलाने वाले जो कीड़े होते हैं उनको यदि आप नियंत्रित कर लें तो ये रोग जो है नहीं होता है। इस रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे पर कीड़े प्रसारित करते हैं, यानी कि जो रोगजनक वायरस होते हैं उन्हें कीड़े अपने साथ लाते हैं रोगी पौधे से निरोग पौधे पर। तो उन कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ पौधों के ऊपर इंडोसल्फान 35 ईसी दवा का छिड़काव जो है आपको करना होता है। खेत में यदि इस रोग के लक्षण दिखाई दें तो पहले ही पौधे को उखाड़ कर फेंक दें और बाकी स्वस्थ पौधों पर इंडोसल्फान 35 ईसी दवा का छिड़काव करें ताकि कीड़े नहीं आए और आपकी फसल जो है वो बची रहे। बरसात के मौसम में कीड़े के द्वारा ये फल छेदक कीड़ा और तना छेदक कीड़े के द्वारा नुकसान भिंडी की फसल को किया जाता है। इसमें फलों के अंदर छेद पाए जाते हैं, तनों के अंदर भी छेद पाए जाते हैं, फलों के ऊपर काला पदार्थ भी जमा रहता है जो कि कीड़े का बिष्ठा होता है। तो इस तरह से फल की गुणवत्ता खराब होती है और बाजार में इसका मूल्य नहीं मिलता है। इस कीड़े को नियंत्रित करने के लिए आप इंडोसल्फान 35 ईसी दवा का छिड़काव ऊपर से कर सकते हैं या दानेदार दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दानेदार दवा का जब आप प्रयोग करें तो काफ़ी सावधानी के साथ दवा प्रयोग करने के एक महीने के बाद ही फलों की तुड़ाई करें। और दवा प्रयोग करने के पहले आप फलों की तुड़ाई कर लें क्योंकि ये दवा काफ़ी जहरीली है, जैसे दानेदार दवा फ्यूराडान है या 4-8-10 G है, तो इसके प्रयोग के पहले काफ़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। खेत में खरपतवार नहीं हो इसकी भी व्यवस्था आप करें और समय समय पर देखभाल करते रहें तो भिंडी की फसल से उत्पादन अच्छा होगा।
0: अभी आप खेत खलिहान कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे श्रीनिवास सहाय से वार्ता। विषय था बरसाती भिंडी की खेती। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: चार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा

0: भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में दो विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस चार विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूर इज्जुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:05 में हैं। प्रस्तुत है चिंतन मनन। आज चिंतन मनन में चिंतन कण कण में बसे श्री राम पर। आलेख रघुनंदन ठाकुर का है, वाचन स्वर सौरभ कुमार का।
5: कणे कणे इति रामा, जो कण कण में बसे वही राम है। श्री राम की सनातन धर्म में अनेकों गाथाएं विद्यमान हैं। श्री राम के जीवन की अनुपम कथाएं महर्षि वाल्मीकि ने बड़े ही सुंदर ढंग से रामायण में प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस रचकर जन जन के हृदय में श्री राम को पहुंचाया है। राम शब्द के उच्चारण मात्र से ही हमारा रोम रोम पुलकित हो उठता है। हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा की हम अनुभूति करने लगते हैं। पुरातन आध्यात्मिक इतिहास के आईने में गहराई से झांक कर देखें तो मनु महाराज और सतरूपा ने जिस परात पर ब्रह्म परमेश्वर को अपने पुत्र के रूप में आने को विवश कर दिया, वही ब्रह्म दशरथी राम के रूप में कौशल्या के घर अवतरित हुए। ध्यातव्य है कि जब यह पृथ्वी रावण जैसे अत्यायी के अत्याचारों के हाथों प्रताड़ित होकर कराह रही थी, तब गौ माता का रूप धारण कर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने कहा कि बिना ईश्वर की कृपा से कोई तुम्हारा कष्ट दूर नहीं कर सकता है। ईश्वर को बैकुंठ लोक में कहाँ खोजा जाए। इस पर शिव ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भई मैं जाना। सबों ने साधु साधु कहकर भोलेनाथ का समर्थन किया। वास्तव में श्री राम तो कण कण में व्याप्त हैं। तभी तो एक शायर ने कहा है, जर्रे जर्रे में वो है समाया, श्री राम अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित

0: भाई तो थे ही। भगवान राम का लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण ही उन्हें आदर्श भाई बनाता है। भगवान राम के अंदर मित्रता का गुण भी विद्यमान था। सुग्रीव हो या निषाद राज हो या विभीषण हो, सभी के प्रति उन्होंने मित्रता की धर्म को निभाया। चारित्रिक उत्कर्ष का जो उदाहरण श्री राम के व्यक्तित्व से होता है वह अन्यथा दुर्लभ है। इस देश को आधुनिकता के पिशाच ने मानो ग्रसित कर लिया है, तभी तो अनाचार और कदाचार की घटनाएं यत नित प्रतिदिन होती रहती हैं। राम में रा का मतलब राष्ट्र है और म का मतलब मंगल से है। इस अलौकिक नाम से राष्ट्र का मंगल हुआ है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन मनन में चिंतन, कण कण में श्री राम पर। आलेख रघुनंदन ठाकुर का था, वाचन स्वर सौरभ कुमार का। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में माँ भारती की वंदना।

ठुमक चलत रामचंद्र, भगवान की अनेक लीलाएं, लेकिन सभी में एक ही उद्देश्य, संसार का कल्याण, जीवों का कल्याण, सृष्टि का संतुलन। परमात्मा कण कण में समाया है।

हे परमात्मा, जब आप ही सब कुछ हैं तो फिर हमारा हृदय आपको छोड़कर क्यों किसी और का चिंतन करें। हमें अपनी शरण में ले लो और इतना वरदान दे दो कि जब हम अपना शरीर छोड़ें तो आप स्वयं मेरे सामने रहना।

0: अगर माता पिता हाइपरटेंशन के रोगी हैं तो बच्चों को 60% संभावना है हाइपरटेंशन होने की।
1: अच्छा।
0: दो, टेंशन
1: जी,
0: अगर लाइफ में काफी टेंशन है तो इससे भी हाइपरटेंशन की संभावना बढ़ती है,
1: तनावपूर्ण जीवन,
0: तनावपूर्ण जीवन से
1: जी।
0: दूसरी है, अगर आप भोजन अनियमित करते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो अपने उम्र या अपने काम के हिसाब से रक्त में वसा की मात्रा बढ़ेगी और जिससे रक्त नलिका कड़ा होगा और उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की, हाइपरटेंशन होने की संभावना रहती है। अगर आप नियमित व्यायाम नहीं करते हैं तो हाइपरटेंशन हो सकता है। कुछ केस में किडनी की डिजीज, अगर गुर्दे की डिजीज से कोई आदमी बीमारी से ग्रसित है तो उनको भी हाइपरटेंशन होने की संभावना रहती है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि कहा जाता है कि अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान के पीछे हमें सोचना चाहिए, उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, तनाव में नहीं रहना चाहिए, इससे तो वो ठीक होने वाली समस्या है नहीं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम जब तनाव लेते हैं, हाइपरटेंशन से ग्रस्त होते हैं, तो हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कौन कौन सी शारीरिक परेशानियाँ हो सकती है।
0: हाइपरटेंशन से अगर तनाव के कारण शरीर में हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, मतलब हार्मोन की जो है स्थिति बिगड़ती है जिसके कारण रक्त नलिका में सिकुड़न होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है
1: जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे अब हाइपरटेंशन के बचाव के बारे में जानना चाहेंगे कि किस प्रकार हम इस बीमारी से बच सकते हैं।
0: पहली बात तो नियमित व्यायाम करें, इसके बचाव के लिए नियमित व्यायाम करें, जैसे सुबह में टहलना या अन्य तरह का साइकिल चलाना या खेलना, दौड़ना धूपना, अपने उम्र के अनुसार जिस तरह से चिकित्सक राय दें उस हिसाब से नियमित व्यायाम करें। भोजन में ज्यादा चीनी वसा ये सब का प्रयोग नहीं करें, संतुलित भोजन लें, तनाव मुक्त रहने का कोशिश करें
1: जी।
0: अगर तनाव मुक्त नहीं रह सकते हैं तो कम से कम कम करने की जो है सो कोशिश करें। अगर तनाव से ग्रसित हैं तो योगा, इन सब के अलावे योगा मदद पहुंचा सकता है तनाव मुक्त होने में, तो ये करें। और अगर माता पिता, जैसे कि मैंने कहा, माता पिता अगर हाइपरटेंशन के मरीज हैं, परिवार में उन लोगों को है
1: जी,
0: तो शुरू से ही 25-30 वर्ष की उम्र से ही साल में एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करावें
1: जी।
0: अगर वह बढ़ रहा है या बढ़ने की ओर है तो उचित जांच कराकर उसका निदान करें
1: जी,
0: क्योंकि इसमें रोकथाम ही असल भविष्य में होने वाली हृदय रोग या अन्य किडनी की बीमारी, अन्य बीमारियों से रोकथाम के लिए जरूरी है
1: जी।
0: एक मरतबी बीमारी हो जाने के बाद तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है
1: जी।
0: तो उसको रोकें, ब्लड प्रेशर को हमेशा नियंत्रित रखें। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं तो अपने चिकित्सक के राय के अनुसार ही चलें, अपना उसमें कभी खाया नहीं खाया इस तरह का चीज जो है अनियमितता नहीं बरतें
1: जी। तो आपके अनुसार बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है हाइपरटेंशन का। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी कि हाइपरटेंशन से हम किस प्रकार बच सकते हैं और इनसे अगर बचा जाए तो हम खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में भेंट वार्ता सुन रहे थे हाइपरटेंशन से बचाओ। भेंट वार्ता करते डॉक्टर AK पांडे, वेट करता सचिन कुमार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:40 हुए हैं। निवेदित है श्री रामचरितमानस गान। मुख्य गायन स्वर सुरेश वाडिकर का है, संगीत सतीश भाटिया का।
3: एपिसोड नंबर 223

चित्रकूट आए हुए सभी व्यक्तियों की एक ही कामना है कि गुरु, समाज तथा भाइयों सहित श्री राम का राजतिलक अवधपुरी में हो और उनके राज्यकाल में ही सबकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो। अयोध्यावासियों की इस प्रेमाभिव्यक्ति पर ऋषि मुनि अपने योग वैराग्य को हे मानते हैं। श्री राम के प्रति प्रजाजन की इस निष्ठा और समर्पण की भावना से किसे ईर्ष्या नहीं होगी। मिथिला नरेश के आगमन का समाचार सुनकर श्री राम सभा समेत आदरपूर्वक उठ खड़े हुए और लक्ष्मण, गुरु तथा पुरवासियों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने चले। राजा जनक ने वशिष्ठ तथा अन्य मुनियों के चरणों की वंदना की। श्री राम ने जनकपुर वासियों तथा राजपुरोहित शतानंद को प्रणाम किया और आदरपूर्वक उन्हें आश्रम ले चले।

अभी आप श्रवण कर रहे थे श्री रामचरितमानस गान। मुख्य गायन स्वर सुरेश वाटिकर का था, संगीत सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण, इसके अंतर्गत आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

अब से थोड़ी देर बाद यानी प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे रेल आवागमन संबंधित सूचनाएं, मौसम की सूचनाएं, आज का इतिहास, अखबारों की सुर्खियां। इसके अलावा रसरंग में कलाकार होंगी आज निशा कुमारी। और 7:20 पर भी गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम के अंतर्गत ही आज आप सुनेंगे हिंदी वार्ता, विषय होगा स्वच्छता एक सामाजिक जिम्मेदारी। वार्ताकार होंगे गणेश प्रसाद झा। प्रातः 9:06 पर नगमे नए पुराने कार्यक्रम आप सुनेंगे। 9:30 पर आज आप सुनेंगे हमारे बाल श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम बाल मंजूषा। दिन के 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित होगा बाल किलकारी। 10:30 पर लोकगीत कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे राजेश कुमार पंडित। दिन के 11 बजे फिल्मी नगमों का कार्यक्रम होगा नई फिल्मों से। 11:30 पर फिल्मी नगमों का एक और कार्यक्रम होगा गुलदस्ता। दोपहर 12 बजे हमारी तरफ से आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान वाणी। 12:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे संगीत कुमार नाहर का गायन राग मुल्तानी में। दोपहर 1 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में कलाकार होंगे किरण पाठक। 1:30 पर अंग दर्पण कार्यक्रम आप सुनेंगे। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों का कार्यक्रम चित्रपट से, क्षमा करें 2:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम होगा जिसमें हमारे श्रोताओं के ईमेल और पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा। दोपहर बाद 3 बजे सामुदायिक गान और शिक्षा पाठ आप सुनेंगे। 3:25 से संध्या 5 बजे तक विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम प्रसारित होंगे। संध्या 5 बजे कार्यक्रम होगा युववाणी। 5:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे। संध्या 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम प्रसारित होगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर वार्ताकार होंगे विनोद कुमार। संध्या 7:52 पर आज आप सुनेंगे सुरलहरी कार्यक्रम में गांधी कुमार मिस्त्री को। रात्रि 8 बजे फिल्मी नगमों का कार्यक्रम होगा रजनीकंधा। रात्रि 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने ही वाले हैं। अब आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दिल्ली के प्रसारण में, जहाँ से आप कुछ ही देर में संस्कृत में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, और इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित है आज आपका दोस्त रविंद्र। श्रोता मित्रों, आज तिथि है 17 मई। आज की तिथि बहुत विशेष है, खासकर इस आधुनिक युग में जब सब कुछ बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, विज्ञान तेज़ी से प्रगति कर रहा है।

कुछ नए कारण कारनामे हमारे सामने आ रहे हैं। इन्हीं कारनामों से में से एक जिसका कभी बहुत बड़ा योगदान है आज के इस आधुनिक विज्ञान के प्रगति के युग को जो हम देख पा रहे हैं उनमें। जरा हम कल्पना करें कि जब इंटरनेट नहीं था दुनिया में तब कैसी ये दुनिया थी। यूँ तो ये नियम है प्रकृति का, वो निरंतर बदलता रहता है, समय परिवर्तित होता रहता है, समय काल के साथ सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन वर्तमान युग में इंटरनेट जैसे जीवन सा हो गया है। संसार का कोई भी सवाल हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी जानकारी हो, हमें पलक झपकते इंटरनेट से प्राप्त हो जाती हैं। इसमें वो सब कुछ है जो हम ढूंढना चाहते हैं और इसमें हमारा भी योगदान है। हमारे जैसे ही कई इंटरनेट पर वो जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं और हमारे जैसे ही उन जानकारियों को पाते भी हैं। तो ये इंटरनेट जो है एक तरह से हमारा समाज है जिसमें हमारा योगदान है इसे परिष्कृत करने में, इसे बृहत बनाने में। हम इसके लाभुक भी हैं और प्रदाता भी हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और इसी कड़ी में, क्योंकि आज 17 मई है, तो आज के दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस। ये बहुत कमाल की बात है। इसकी शुरुआत कब हुई अगर हम इसे देखें तो 1969 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अनुमोदित और स्वीकार नहीं किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे स्वीकार किया आज से 20 वर्ष पहले 2006 ईस्वी में, और तब पूरी दुनिया के लिए घोषित हुआ विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस। इसके उद्देश्य की बारे में अगर हम बात करें कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इंटरनेट और अन्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियां, जिसे ICT भी हम कहते हैं, इसके इस्तेमाल से समाज और अर्थव्यवस्थाओं में होने वाली संभावनाओं के प्रति जागरूकता फैलाना है। इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन को कैसे लाभान्वित कर सकता है, कैसे हमें हानि भी पहुँचा सकता है, इससे भी हमें अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। क्योंकि हम बचपन में पढ़ते थे विज्ञान वरदान या अभिशाप, कोई भी एक पहलू से बना हुआ नहीं हो सकता है, उसमें दो पहलू होते ही हैं। इंटरनेट में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं और बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी हैं। आज संसार में अपराध के सिलसिले को अगर हम देखें तो उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान भी है, क्योंकि इसका मिसयूज़ करने वाले लोग, दुरुपयोग करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है और इसके उपयोग करने वालों की भी कमी नहीं है। अनेकानेक छात्र, अनेकानेक जो पढ़ने वाले लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो इससे बहुत अधिक लाभान्वित भी हो रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में जहाँ बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, वहाँ इंटरनेट से बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें प्राप्त हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इसके नकारात्मक पक्ष से भी समाज प्रभावित हो रहा है। तो ये पूर्णतः हमारे ऊपर निर्भर है कि हमें कैसे इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना है। जागरूकता तो हमारे अंदर ही होनी चाहिए, और जब हम जागरूकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसके विशेष पक्ष से ही हमें जुड़ाव होगा, यानी लाभ पक्ष से ही जुड़ाव होगा, और दूसरी जो बातें हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जैसी सोच होती है वैसी ही मानसिकता हो जाती है, और जैसी मानसिकता होती है वैसा ही परिणाम भी आ जाता है, वैसा ही हमारा जीवन होता है। तो हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जीवन में बहुत अच्छा करने के लिए सोच अच्छी, सकारात्मकता और कर्मठता ये जरूरी है। इंटरनेट बहुत अच्छा पक्ष है उनके लिए भी जो सकारात्मक पक्ष के हैं, और उनके लिए जो घातक सिद्ध भी हो सकता है जो इसका दुरुपयोग करेंगे। तो इसी जागरूकता को समाज

तक लाने के लिए आज की तिथि को यानी 17 मई को प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम है विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस। तो आज हमने इस दिवस पर आपसे कुछ ऐसी बातें की जो बहुत गूढ़ और महत्वपूर्ण है हमारे और आपके लिए भी। और अब एक नज़र डालते हैं रेल आवागमन संबंधित सूचनाओं पर। ये सूचनाएं हमें भागलपुर रेलवे स्टेशन के पूछताछ कक्ष से प्राप्त हुई हैं। इसके अनुसार रेल आवागमन की जो बातें हैं उनमें सबसे पहली रेलगाड़ी की हम बात करते हैं। गाड़ी संख्या है 15553, भागलपुर से चलकर जयनगर जाती है। भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस प्रत्येक सुबह 7:50 पर भागलपुर से रवाना होती है और आज भी रेलगाड़ी अपने सही समय से भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस प्रातः 7:55 पर भागलपुर से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार से चलकर भागलपुर आती है। विक्रमशिला एक्सप्रेस प्रातः 8:15 पर अपने नियत समय पर भागलपुर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल, आज ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक देर से चल रही है। इसका सही समय है भागलपुर पहुंचने का 8:05 प्रातः वेला में, लेकिन आज ये रेलगाड़ी दोपहर बाद 1:30 के आसपास भागलपुर पहुंचने की सूचना है। गाड़ी संख्या 15416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर अपने सही समय यानी 8:37 पर रवाना होगी। गाड़ी संख्या 22311 ये साप्ताहिक रेलगाड़ी है जो गुड्डा से चलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई जाती है। सुपरफास्ट एक्सप्रेस ये अपने नियत समय यानी 8:45 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई। गाड़ी संख्या 13403 राजे से चलकर भागलपुर आती है। वनांचल एक्सप्रेस अपने नियत समय से यानी प्रातः 9 भागलपुर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 63431 साहिबगंज जमालपुर MEMU 9:15 पर भागलपुर से जमालपुर के लिए रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13409 मालदा कियूल इंटरसिटी अपने सही समय से 9:35 पर कियूल के लिए रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी राजेंद्र नगर पटना के लिए 10:15 पर खुलेगी। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर से चलकर नित्य प्रतिदिन आनंद विहार स्टेशन जाती है, नाम है विक्रमशिला एक्सप्रेस, दोपहर 11:55 पर रवाना होगी। अभी आप रेल आवागमन संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर रहे थे। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब आइए रसरंग में आज सुनते हैं निशा कुमारी को।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम के अंतर्गत आप रसरंग में निशा कुमारी को सुन रहे हैं। अभी आपने इनसे तुलसीदास की भक्ति रचना सुनी। अब मौसम सूचनाओं से रूबरू हो लेते हैं, इसके बाद निशा कुमारी से रसरंग में एक और गीत सुनेंगे। मौसम सूचनाएं कहती हैं कि अगले 5 दिनों के अंदर भागलपुर जिला और इसके आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ आंधी, जिसकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, और एक दो स्थानों पर कहीं कहीं वर्षा की भी संभावना जताई गई है, और कहीं हल्की वर्षा की संभावना है, और मौसम शुष्क और तापमान अत्यधिक रहने की भी संभावना जताई गई है। तापमान 32 डिग्री से लेकर के 36 डिग्री तक जा सकता है, यानी ये अधिकतम तापमान होगा, और न्यूनतम 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्षिक आर्द्रता प्रातः वेला में 70 से 75 प्रतिशत तक और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत तक रहने की संभावना है, और सामान्य तौर पर इन 5 दिनों के अंदर हवाओं की रफ्तार 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। ये मौसम सूचना है हमें ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग सबौर से प्राप्त हुई। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। निशा कुमारी से आइए सुनते हैं गोपाल दास नीरज की एक और गीत रचना।

अभी आप गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम के अंतर्गत रसरंग में निशा कुमारी को सुन रहे थे। वक्त एक छोटे से अंतराल का, अंतराल के उस बार आप सुनेंगे हिंदी वार्ता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अब आइए सुनते हैं हिंदी वार्ता में। वार्ता विषय है स्वच्छता एक सामाजिक जिम्मेदारी। वार्ताकार हैं गणेश प्रसाद झा।
2: स्वच्छता पवित्रता का ही दूसरा नाम है। स्वच्छता की दूसरी

ईश्वरता कहते हैं इसे। स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भगवत प्रेम के बाद महत्व की दृष्टि से दूसरा स्थान स्वच्छता के प्रेम का ही है। स्वच्छता आत्मा को, शरीर को, अपने इर्द गिर्द के वातावरण को और फिर पूरे समाज को पवित्र बनाने की क्रिया का नाम है। स्वच्छता मन में उत्पन्न एक सात्विक और पवित्र विचार है और धरातल पर उसकी परिणति सफाई है। स्वच्छता 70% बीमारियों का नाश करती है और एक प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वच्छता ही स्वास्थ्य को पुष्ट करती है। कहा गया है कि ईमान ही जाता रहा तो धर्म रहा किस काम का, और स्वास्थ्य ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। स्वच्छता के बिना अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते, और अच्छे स्वास्थ्य के बिना शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क नहीं हो सकता। विचार करने पर हम पाते हैं कि स्वच्छता अकेले का विषय नहीं, जमात का विषय है, जिसे सामूहिक या सामाजिक विषय कह सकते हैं। स्वच्छता एक सामाजिक जिम्मेदारी का भी विषय है, यह सबके लिए और सबका विषय है। स्वच्छता को अकेले लेकर हरगिज नहीं चला जा सकता। अकेले लेकर चलने से हमारी कोठरी तो साफ हो सकती है, पर हमारा आस पड़ोस साफ नहीं हो सकता। हमें इसे सामूहिकता प्रदान करनी ही होगी, समाज को साथ लेकर चलना ही होगा। इसी सामूहिकता से स्वच्छता हमारी दहलीज से बाहर निकलेगी और इसकी यात्रा से एक अभियान का सृजन होगा। दहलीज से बाहर निकली इस स्वच्छता की निरंतर यात्रा से यह टोलों, गांवों, कस्बों, शहरों और राज्यों से गुजरती हुई पूरे देश और फिर पूरे विश्व को स्वच्छ बनाएगी। यह सब होने पर ही इसे हम अभियान कह सकेंगे। स्वच्छता के बिना आरोग्य की कामना नहीं की जा सकती। स्वच्छता ही अच्छी सभ्यता और संस्कृति की निशानी है। आज विश्व में मृत्यु दर में हो रही वृद्धि स्वच्छता नहीं होने के कारण ही है। स्वच्छता का मतलब घर आंगन, कपड़ा लत्ता, शरीर, खान पान, चौक चौराहे, रास्ते, गलियां, सड़क नाले, शौचालय, कुएं, तालाब और दूसरे जल स्रोत, सभी प्रकार के कार्यालयों और संस्थानों की तथा बस पड़ावों और रेलवे स्टेशनों की सफाई रखने के साथ साथ शुद्ध विचार रखना भी है। यानी स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और स्वच्छ वातावरण का निर्माण ही वास्तव में स्वच्छता की निशानी है। गांधीवादी विचारक और पर्यावरणविद प्रमोद कुमार सिंह कहते हैं कि सरकार का स्वच्छता मिशन कार्यक्रम बिना आम जनता के सहयोग के संभव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पूर्ण स्वच्छता तभी संभव है जब हर एक आदमी भंगी बन जाए। यानी सरकार की सहभागिता के साथ साथ राष्ट्र के एक एक व्यक्ति के स्वच्छता के कार्यक्रम में लग जाने पर ही पूर्ण स्वच्छता हासिल की जा सकती है, क्योंकि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। देश में 7,20,000 से भी अधिक गांव हैं। हर एक घर के लिए सरकार मेहतर की व्यवस्था नहीं कर सकती और नगर निगम की पहुंच भी हर घर तक नहीं बनाई जा सकती, यह संभव ही नहीं है। इसलिए पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम में हर एक आदमी का योगदान आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। शहरों में जबकि नगर निगम की व्यवस्था है, फिर भी शहरों और महानगरों में दुर्गंध देता हुआ वायु और जल को प्रदूषित करता हुआ कूड़े का अंबार देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ स्वच्छता का कार्यक्रम नगर निगम के कर्मचारियों तक ही सीमित है और आम जनता इससे दूर है। गांधीवादी प्रमोद जी इस पर कहते हैं कि यहाँ पर गांधी का फार्मूला लागू नहीं होता, इसलिए शहर में भी पूर्ण स्वच्छता हर एक परिवार के सदस्य के सहयोग के बिना संभव प्रतीत नहीं होता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किताब मेरे सपनों का भारत में लिखा है कि जनता को गाँव में ही रहना है, शहरों में नहीं, झोपड़ियों में रहना है, महलों में नहीं। करोड़ों लोग शहरों या महलों में कभी एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक नहीं रह सकते। गांधी जी ने एक गांव को मॉडल बनाकर सभी आधारभूत संस्थाओं से फलीभूत करके भारत के सभी गांवों को मॉडल बना देने का सपना देखा था, जिससे स्वच्छता कार्यक्रम को एक नई दिशा मिलती। लेकिन राष्ट्रपिता के जाने के बाद अब लगता नहीं है कि ऐसा कभी

0: हो पाएगा। बापू का यह सपना पूर्ण स्वच्छता एवं पूर्ण वातावरणीय शुद्धता के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी प्रतीत होता है। गाँव में हमें कूड़े कचरे का अंबार देखने को नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो घर के रसोई की राख और घरेलू बुहारन जो किसानों के खेतों में जाकर खाद बन जाता है। गाँव में कहीं भी शहर की तरह गंदगी देखने को नहीं मिलती। गाँव में अधिकांश नाले कच्चे होते हैं, जिस कारण नालों के पानी का जमीन में डिस्चार्ज हो जाता है और इस तरह गंदा पानी नदियों तक नहीं पहुंच पाता। इससे सड़ांध और दुर्गंध भी नहीं होता और नदी का जल भी प्रदूषित नहीं होता। थोड़ी थोड़ी गंदगी अगर होती भी है तो प्रकृति उसे खुद ब खुद नष्ट कर देती है। स्वच्छता के संदर्भ में आज एक बड़ी समस्या है पॉलीथीन की, जो कभी नष्ट न होने वाली थैलियों की है। ये थैलियाँ सुविधाजनक तो हैं पर यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये थैलियाँ शहरों के नालों में जम जाती हैं और जल को अवरुद्ध करती हैं, खासकर बरसात में, जिससे नालों की गंदगी और गंदा पानी शहरों और महानगरों में फैल जाता है। इससे जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है। खान पान का सामान, प्लास्टिक की थैलियाँ या पैकिंग में काम आने वाली चीज़ें, जिससे कचरे की यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। यह समस्या अब गाँव में भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है, जो लगभग 2 दशक पहले बिल्कुल ही नहीं थी। इसलिए पॉलीथीन के निर्माण पर सरकार को देश भर में रोक लगाने का कानून बनाना चाहिए, ताकि पॉलीथीन की जगह पहले की तरह कागज की ठोंगों का इस्तेमाल हो सके। महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस जगह शरीर सफाई, घर सफाई और ग्राम सफाई हो तथा युक्त आहार और योग्य व्यायाम हो, वहाँ कम से कम बीमारियाँ होती हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का स्वच्छता का नारा महात्मा गांधी जी के मेरे सपनों का भारत का भी एक सपना है, और प्रधानमंत्री जी का यह सराहनीय कदम है। गांधीवादी विचारक प्रमोद कुमार सिंह कहते हैं कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम में मैला सफाई यानी स्वच्छता के एक कार्यक्रम पर कहा था, मैला सफाई एक अच्छा और धार्मिक काम है। अब तो यह काम हमारा दैनिक काम बन जाएगा, इसलिए जिन्हें यह पसंद न हो वे आश्रम को छोड़कर जा सकते हैं। महात्मा गांधी अपनी टोली के साथ जहाँ कहीं भी जाते थे, अगर कहीं उन्हें गंदगी दिखाई देती थी तो वे खुद ही साफ करने के लिए भिड़ जाते थे। यानी गांधी जी हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता का यह संदेश देना चाहते थे कि तुम भी मेरी तरह बनो और गंदगी को पूरे हिंदुस्तान से विदा कर पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छता, पर्यावरण शुद्धता लाओ, जिससे हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। प्रमोद जी कहते हैं कि एक बार डरबन में कस्तूरबा बाई और गांधी जी के बीच पेशाब को उठाने और फेंकने पर विवाद हुआ, जिसमें कस्तूरबा बाई का कहना था कि आप मेरे पति हैं, आपका मूत्र और पैखाना मैं उठाकर फेंक सकती हूं, लेकिन दूसरे का नहीं। इस पर गांधी जी बहुत कठोर हो गए और कस्तूरबा बाई को घर से बाहर ले जाने लगे। इससे यह साबित होता है कि बापू स्वच्छता को कितना महत्व देते थे और यह स्वच्छता का एक आदर्श नमूना है। इससे हिंदुस्तान के हर नर नारी को शिक्षा लेनी चाहिए कि पूर्ण स्वच्छता मिशन की कामयाबी की ओर अग्रसर होना चाहिए। स्वच्छता के बिना अच्छी सभ्यता, अच्छी संस्कृति, अच्छा स्वास्थ्य, शुद्ध पर्यावरण और 70% रोग मुक्त विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपिता गांधी के इन फार्मूलों को अपनाकर भारत के हरेक व्यक्ति तक उनके स्वच्छता कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाकर और उन्हें उत्प्रेरित कर स्वच्छता का पूर्ण या पूर्ण स्वच्छता के पक्ष पर आरूढ़ होकर युग का जुआ उनके कंधों पर रखना होगा, और तभी भारत और संपूर्ण विश्व स्वच्छ भारत और स्वच्छ विश्व बन पाएगा, यानी पूर्ण स्वच्छता संभव हो पाएगा।
1: अभी आप गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे हिंदी वार्ता। हिंदी वार्ता में आपने सुनी वार्ता, विषय था स्वच्छता एक सामाजिक जिम्मेदारी। वार्ताकार थे गणेश प्रसाद झा। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला का कारवां अब आ पहुंचा है फिल्म संगीत तक। 7:31 हो चुके हैं। फिल्म संगीत के सेगमेंट में आइए शुरुआत करते हैं ताल फिल्म के इस नगमे से, जिसमें आवाज़ दी है उदित नारायण अलका याग्निक

ताल से ताल मिला। अभी आपने ताल फिल्म का ये नगमा सुना। आनंद बख्श ने लिखा था, संगीतबद्ध किया था AR रहमान ने। आवाज़ें थी अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को टटोलने का। आज के अखबारों में क्या विशेष रूप से सुर्खियां बनी हैं, अगर हम इसे टटोलें तो सबसे बड़ी खबर जो लगभग आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है वह है, करोड़पति इंजीनियर 18 साल की नौकरी में 10 करोड़ से अधिक का साम्राज्य, पूर्णिया के रहने वाले इंजीनियर ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता एग्जीक्यूटिव के घर से आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने 10 करोड़ से अधिक कैश और संपत्तियां जब्त की। छापेमारी में ये सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा बायोलॉजी के पेपर लीक किए मास्टरमाइंड, पुणे से गिरफ्तार। नीट पेपर बनाने वालों ने लीक किए थे पेपर। CBSE ने नीट UG 2026 के बायोलॉजी पेपर लीक मामले में पुणे की बॉटनी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। वह NTA की पेपर सेटिंग प्रक्रिया से जुड़ी हुई एक्सपर्ट थी और उन्होंने ही लीक किया था। इसके अलावा आज के अखबारों की सुर्खी में है, फर्जी डिग्री वालों की आलोचना की गई थी, युवाओं पर गर्व है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा। इसके अलावा जो अन्य अन्य सुर्खियां हैं उसमें बिहार में बड़े तौर पर आधिकारिक तबादला हुआ है, जिसमें 54 DSP का किया गया है तबादला। गृह विभाग ने दूसरे दिन 54 DSP का तबादला कर दिया है। गृह विभाग ने शनिवार की देर शाम इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अलावा बिहार में औद्योगिक निवेश का अध्याय शुरू होगा, नया अध्याय शुरू होगा। अखबार लिखता है, किशनगंज मुजफ्फरपुर में सीमेंट फैक्ट्री खुलेगी, हाजीपुर में निफ्टेम। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेपाल जाने वाले अब एक ही जगह दे सकेंगे भंसार, 15 दिनों में बीरगंज में भी चालू होगा। भारत से नेपाल जाने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए नेपाल सरकार ने बड़ी सहूलियत देने का फैसला किया है। भारतीय पर्यटकों को नेपाल प्रवेश के दौरान भंसार और यातायात के कर के लिए अलग अलग कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। नेपाल सरकार ने दोनों शुल्कों को एकत्रित करते हुए एक ही स्थान पर ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था का निर्णय लिया है। इसके अलावा अगर अखबारों में देखें क्या विशेष है, तो बिहार के स्कूलों में अब BEST सिस्टम, मोबाइल देकर फर्जी हाजिरी लगाने का खेल अब खत्म होगा। 21 मई से मॉनिटरिंग होगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 21 मई से मॉनिटरिंग का नया सिस्टम चालू होने जा रहा है। इसका नाम बिहार ईजी स्कूल ट्रैकिंग BEST सिस्टम है। राज्य के 76,000 से ज़्यादा स्कूलों में इस एडवांस ऐप से मॉनिटरिंग होगी और अब इससे पढ़ाई और शिक्षकों की हाजिरी के साथ बच्चों की उपस्थिति को भी सुगम बनाया जाएगा। और इसी हेतु ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें अगली खबर की तरफ, तो आज JEE एडवांस्ड 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित हो रही है। IIT रुड़की की आज रविवार को JEE एडवांस 2026 परीक्षा आयोजित कराएगा। परीक्षा देश के 221 शहरों और 2 विदेशी केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड में होगी। पेपर 1 प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा। इसके अलावा अगर हम खबरों में देखें तो विक्रमशिला सेतु को लेकर भी खबर छपी है। सेना की टीम ने ली समय पर काम पूरा करने का शपथ। बेली ब्रिज के लिए 10 मीटर से अधिक 3 गार्डर तैयार हो चुके हैं। गर्मी से बचाव को नया तंबू लगाया गया।

गया है पहली बार पुल पर बेली ब्रिज बन रहा है। और इसी खबर को आगे लिखते हुए दूसरा अखबार लिखता है, विक्रमशिला सेतु पर छोटे वाहनों को आवाजाही सुविधा संपन्न बनाने के लिए जल्द बहाल की जाएगी बेली ब्रिज। इस पर काम युद्ध स्तर पर जारी है, शनिवार दोपहर तक काम युद्ध स्तर पर जारी किया गया, अखबार लिखता है। इसके अलावा नगर निगम का बड़ा एक्शन प्लान, अवैध निर्माण और सड़क पर सामान रखना पड़ेगा महंगा, पोस्टर बैनर लगाने पर भी होगा जुर्माना और FIR, इंटीग्रेटेड टीम की तरह काम करेगा प्रवर्तन विभाग। और विक्रमशिला पुल के बाधित होने से ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है, आज के अखबारों ने इसे भी सुर्खी बनाई है। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री मोदी के अपील को भी अखबारों ने लिखा है, ये आपदाओं का दशक है, हालात नहीं बदले तो गरीबी बढ़ेगी, ऐसे में सावधान होकर चलना ही सबसे बड़ी सुरक्षा। और मौसम के हवाले से खबर हम देखें तो बदलेगा मौसम, 20 तक कई जिलों में अलर्ट, भागलपुर सहित राज्य में अगले 7 दिनों तक मौसम में लगातार बदलाव जारी रहेगा। राज्य के कई जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विशेषकर 20 मई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएँ चलेंगी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग पटना केंद्र के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और 26 मई के आसपास इसके केरल पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा IPL से जुड़ी हुई खेल की खबरों में खबर छपी है, गुजरात बेंगलुरु को सिर्फ एक जीत चाहिए, IPL का लीग राउंड अंतिम पड़ाव पर है, अब तक 60 मैच खेले गए हैं और बाकी 10 बाकी है। प्ले ऑफ के लिए 4 स्थानों के लिए टीमें रेस में हैं, अब तक कोई टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंची है। गुजरात बेंगलुरु को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक जीत चाहिए, चेन्नई कोलकाता दिल्ली की एंट्री दूसरी टीमों के नतीजे पर भी निर्भर हो सकती है, 13 अंकों के साथ प्लेऑफ में जा सकती है पंजाब। तो ये आज के अखबारों की सुर्खियां, और अब एक छोटा सा अंतराल और उसके उस पार फिर एक प्यारा सा नगमा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

अभी आपने सुना आजा नचले फिल्म का नगमा। रात फतेह अली खान की आवाज़ थी, गीत लिखा था जयदीप साहनी ने, संगीतबद्ध किया था संगीत सुलेमान ने। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला और अब आज के इतिहास को टटोलने आ गए हैं हम। आज 17 मई है, आज के इतिहास को टटोलने में अगर हम देखें हमें क्या क्या मिला, तो आज की तिथि को यानी 17 मई को 1975 में जापानी महिला पर्वतारोही श्रीमती जुनको तेबेई माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली महिला थीं। इसके अलावा आज की तिथि को 1987 में 17 मई को ही सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए बुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे 17 मई 1769 को। रूसी संसद के ऊपर सदन फेडरलिस्ट्स ने परमाणु परीक्षण संबंध प्रतिबंध संधि की मंजूरी प्रदान की थी 2000 ईस्वी में 17 मई को। इसके अलावा 17 मई को 2010 में भारतीय बॉक्सरों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी छह स्वर्ण पदक जीत लिए थे। बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता विजेंद्र सिंह के अलावा दिनेश कुमार, परमजीत समोटा, अमनदीप सोरेनजोय और जय भगवान ने अपने अपने वर्ग का फाइनल जीता था। इसके अलावा अगर हम देखें 17 मई को 2010 में भारतीय सेना ने उड़ीसा के हुईलर्स द्वीप स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अग्नि 2 का विकास रक्षा विकास अनुसंधान संगठन DRDO की प्रयोगशाला और भारत डायनामिक्स हैदराबाद के साथ किया गया है। अगर आज 17 मई को किन लोगों की जन्मतिथि है अगर हम इसकी बात करें, भारत के हिंदी फिल्मी पार्श्व गायक और गजल गायक प्रसिद्ध कलाकार पंकज उधास का आज की तिथि को जन्म हुआ था 17 मई 1951 को। इसके अलावा प्रीति गांगुली हिंदी सिनेमा के चरित्र अभिनेत्री थी, उनका जन्म हुआ था 17 मई 1953 को। 1897 में 17 मई को हिंदी और ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक धीरेन्द्र वर्मा का जन्म हुआ था। और 1749 में 17 मई को प्रसिद्ध कार्य चिकित्सक और चेचक के टीके के आविष्कारक एडवर्ड जेनर का जन्म हुआ था। के अग्रवाल प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञ, उनका निधन हो गया था 2021 में 17 मई को। और रघुनाथ कृष्ण फड़के पद्मश्री से सम्मानित भारतीय मूर्तिकार, उनका निधन हो गया था 17 मई 1972 को। इसके अलावा आज विश्व दूर संचार दिवस मनाया जा रहा है 17 मई को। तो ये आज की तिथि की कुछ विशेष झलकियाँ थी। आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिएगा, हमें आपके पत्रों का इंतज़ार रहेगा। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी आप नोट करें, हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है phearbhagalpur@gmail.com phearbhagalpur@gmail.com। और अगर आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर। हमारा पिन है 81200001। तो अब आज के इस गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम के इस कार्यक्रम को समेटने की अनुमति चाहता है रविंद्र। नमस्कार।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
7: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने ही वाले हैं। अब आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दिल्ली के प्रसारण में, जहां से आप क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार सुनेंगे। तत्पश्चात आप आकाशवाणी पटना से 8:48 पर प्रादेशिक समाचार भी सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति

0: हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल

0: उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर बंगाल की खाड़ी अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों अब पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले तीन से चार दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय के तराई क्षेत्र पश्चिम बंगाल सिक्किम तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल केरल माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता रोकथाम पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने चार नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम पहली जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मानसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart, Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defense, technology, water management, clean energy, healthcare, and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
6: हम भारत निदर

0: having won the title in 2019 and 2024. Earlier, the Indian duo stormed into the men's doubles final after defeating Malaysia's Goh Si Fei and Nuruddin in a thrilling semi-final clash by 19-21, 22-20, 21-16. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Sunil. Pune botany professor held for NEET leak was NTA's subject expert is the top headline in the Indian Express. She is the second member of the National Testing Agency's paper-setting committee who allegedly disclosed botany and zoology questions at coaching classes she conducted at her Pune residence, writes the Hindustan Times. The Asian Age reports that the Narcotics Control Bureau has seized the first ever consignment of captagon, also known as jihadi drug, worth 182 crore rupees on way to the Middle East. In its editorial piece titled Plugging Leaks, the Statesman argues that recurring examination paper leaks in India are not merely policing failures, but signs of a deeply outdated and fragile exam system. It says the answer lies not in harsher punishment alone, but in the thorough redesign using secure, adaptive and carefully tested technological systems alongside stronger institutional transparency and accountability. The editorial warns that unless India reforms how competitive exams are conceived and administered, public trust in merit itself will continue to erode. Dailies have prominently reported the decision of the Netherlands to return 11th century Chola era plates to India. The Tribune, calling it a moment heavy with history and symbolism, writes that the Leiden University announced its decision to return the plates after an official inquiry concluded that they were taken during the Dutch colonial rule without the consent of their rightful custodians. And finally, an elephant has given birth to twin calves at the Corbett Tiger Reserve, reports Hindustan Times. Wildlife experts have described it as a rare event among elephants. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart, Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala Temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया ममुना। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के उनके हम मंसब रॉब जेटन के दरमियान बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी स्वीडन के अपने दो रोज़ा दौरे पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म स्विट्ज़रलैंड के अपने हम मंसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत करेंगे। महकमा आसार-ए-क़दीमा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं को भोजशाला मंदिर में बिना रुकावट दाखिले की इजाज़त दे दी है। हुकूमत ने चांदी की दरामद में कटौती करते हुए इसे पाबंदी वाली अशिया के जुमरे में डाल दिया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में हवाई जहाज़ों के ईंधन पर वैल्यू एडिड टैक्स में कटौती करते हुए इसे 25% से घटाकर 7% कर दिया है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के फाइनल में आज सत्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म रॉब जेटन के दरमियान हेग में वसी तर मुज़ाकरात के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को एक कलीदी शराकतदारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया है। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी, पानी के बंदोबस्त, साफ तवानाई, हिफ्ज़ाने सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन का जायज़ा लिया।
3: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक

0: महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नेदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
1: तरजीही शोबों में वसी इश्तराक के लिए कई समझौतों पर भी दस्तखत किए गए। बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी तक ले जाने का ऐलान करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान ताल्लुकात में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है और उन्होंने नीदरलैंड को भारत का एक कलीदी यूरोपी शराकतदार करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका जमहूरी अकदार मजबूत माशी तआवुन और अवाम से अवाम के दरमियान गहरे रिश्तों पर मबनी है।
2: हम नीदरलैंड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से मानते हैं। नीदरलैंड भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। हमारे हिस्टोरिकल कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत गहरे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये हमारी साझी सोच का हिस्सा है। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए।
1: नीदरलैंड के वजीर आजम रॉब जिटन ने भारत के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की अहमियत पर भी जोर दिया और माशी और कलीदी शोबों में मजबूत तआवुन की हिमायत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के दो रोजा दौरे पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये दौरा भारत और स्वीडन के दरमियान वसत पा रहे इश्तराक के लिए एक तारीखी संग मील साबित होगा। जनाब मोदी बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेने की खातिर स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत करेंगे और बाहमी बातचीत को तिजारत को बढ़ाने के साथ साथ मसनूई जहानत, AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई और अवाम के दरमियान रिश्तों और कार्रवाई माहौल दोस्त बदलाव की जानिब मुंतकली को बढ़ाने के लिए तआवुन के नए मौके तलाश किए जाएंगे। दोनों मुल्कों के वज़ीरे आज़म सनद के लिए यूरोपियन गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे, जो यूरोपियन कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डर लायन के साथ एक सरकर्दा पैन यूरोपियन सरबराहों का फोरम है। ये बातचीत वजीर आजम के वसी यूरोपी दौरे के तीसरे मरहले का एक हिस्सा है और जनवरी 2026 में हुए भारत यूरोपियन आज़ाद तिजारती मुआहदे FTA के बाद से खित्ते का ये पहला दौरा है। ये दौरा बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेने की गरज से तैयार किया गया है और इसका मकसद तेजी से बढ़ती हुई तब्दीलियों और पेचीदा जोग्राफियाई चैलेंजों के दौर में तआवुन का पता लगाना है। ये दौरा इक्तिसादी सरगर्मियों में तेजी के रुझान के बाद हो रहा है, जहां दो तरफा तिजारत साल 2025 में रिकॉर्ड 7.75 अमरीकी डॉलर हो गई और साल 2000 से 2025 के दरमियान भारत में स्वीडन के रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम 2.825 अरब डॉलर्स रहा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: स्वीडन जो दुनिया की सबसे ज्यादा इख्तराई मईशतों में से एक है, भारत के डिजिटल पूल के साथ कुदरती हम आहंगी तलाश कर रहा है। फिलहाल 280 से ज्यादा स्वीडिश कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जबकि 75 भारतीय फर्म स्वीडन में कायम हो चुकी हैं। इस दौरे की एक खास बात वज़ीरे आज़म की यूरोपीय कमीशन की सदर के साथ यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस बराए सनद से मुश्तरका तौर पर खिताब है। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन सनती इंजमाम की तरफ बढ़ते हुए एक मरकजी सुतून में तब्दील हुआ है। इन ताल्लुकात की जड़ें 2009 के दिफाई ताउन के माहदे और 2019 के जनरल सिक्योरिटी माहदे में पेवस्त हैं। मसनू जहानत, AI और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में ताउन इस शराकतदारी की बुनियाद फराहम करता है। इसके अलावा दोनों ममालिक खलाई तहकीक में भी ताउन कर रहे हैं। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए आलात फराहम कर रहा है। आखिर में वजीर आजम का गोथेनबर्ग का दौरा तारीखी एतमाद को मुस्तकबिल के लिए तैयार अहदाफ से जोड़ता है। गोथेनबर्ग स्वीडन से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: भारत और स्वीडन के दरमियान तिजारत और अवाम से अवाम के दरमियान राब्तों की विरासत है, जो एक सदी से ज्यादा अरसे पर मुहित है और इसकी जड़ें बाहमी एहतराम, पुरअमन बका और अहिंसा के नजरिए में पेवस्त हैं। इस गहरे ताल्लुक की निशानदेही नोबेल इनाम याफ्ता रविंद्रनाथ टैगोर के साल 2000

साल 1926 के स्वीडन दौरे के 100 साल मुकम्मल होने से होती है। आज ये ताल्लुकात सकाफती बुनियादों से आगे बढ़कर जामे सनती

0: होगा। इससे पहले कल सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी मलेशिया के गो ज़ीफी और नूर इजुद्दीन को हराकर फाइनल में पहुंची है। टेनिस में आलमी नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर इटालियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में रोम के कैंपो सेंट्रल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। आज फाइनल में सिनर का मुकाबला कैस्पर रूट से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे की खबर को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है। वजीर आजम कल एम्स्टर्डम पहुंचे, जहां भारतीय बिरादरी ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। इस दौरान वजीर आजम ने कहा कि मशरक़ वस्ती में जंग और बढ़ती आलमी गैर यकीनी कई दहाइयों की तरक्की को उलट सकती है और बड़ी आबादी को दोबारा गुरबत में ढकेल सकती है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने तमिलनाडु में वुजरा में कलमदानों की तकसीम से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक वजीर आला जोसेफ विजय ने दाखला और आम इंतजामिया जैसे अहम महकमे अपने पास रखे हैं। रोजनामा प्रताप ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के उस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बेटियों की तालीम सिर्फ खानदान ही नहीं बल्कि समाज और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद होती है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हम मनसब रॉब जेटन के दरमियान बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बदल दिया है। वजीर आजम मोदी स्वीडन के अपने दो रोजा दौरे पर आज गोटनबर्ग पहुंचेंगे। इस दौरान वजीर आजम स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत करेंगे। महकमा आसार कदीमा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं को भोजशाला मंदिर में बिला रुकावट दाखिले की इजाजत दे दी है। हुकूमत ने चांदी की दरामद में कटौती करते हुए इसे पाबंदी वाली अशिया के जुमरे में डाल दिया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में हवाई जहाजों के ईंधन पर वैल्यू एडिड टैक्स में कटौती करते हुए इसे 25% से घटाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: इधर आइए, इधर।
8: इधर?
7: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
9: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
8: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
9: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
8: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
9: शुभ वाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नालंदा के राजगीर में मलमास मेले का करेंगे उद्घाटन। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिनों के दौरान पटना सहित प्रदेश के 20 जिलों में बनी रहेगी उमस भरी गर्मी की स्थिति। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। इससे पहले सरकार ने कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। गौरतलब है कि प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। नालंदा के राजगीर में आज से 1 माह तक चलने वाला मलमास मेला शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस राजकीय मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। पर्यटन विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक उदयन मिश्रा ने बताया कि आज ध्वजारोहण, देवी देवताओं के आवाहन और पूजन के साथ मेले का शुभारंभ होगा। उन्होंने बताया कि 27 मई को प्रथम शाही स्नान, 31 मई को द्वितीय जबकि 11 जून को तृतीय शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा। मेले की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अध्यात्म, आस्था और संस्कृति के अद्भुत संगम का प्रतीक ऐतिहासिक राजकीय मलमास मेला के लिए राजगीर पूरी तरह सज धज कर तैयार हो चुका है। जिला प्रशासन की ओर से कल्पवासियों और तीर्थयात्रियों के लिए आवासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और भीड़ नियंत्रण की व्यापक व्यवस्था की गई है। राजगीर के गर्म जल के कुंडों, विशेषकर ब्रह्मकुंड, सप्तधारा और पवित्र नदियों में स्नान के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मान्यता है कि मास के दौरान यहां स्नान करने से पापों का क्षय होता है, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर 3 वर्ष पर आयोजित होने वाला यह पौराणिक मेला सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। मेले में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए 500 CCTV और AI आधारित कैमरे लगाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार।
0: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में कृषि अवसंरचना कोष के तहत सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। पटना में विभागीय समीक्षात्मक बैठक में श्री सिन्हा ने कहा कि योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के सभी ऋणों पर प्रतिवर्ष 3% की दर से ब्याज में छूट दी जाएगी। यह सुविधा अधिकतम 7 वर्षों के लिए होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 2045 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री राजू रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मुंगेर के पोलो मैदान में अत्याधुनिक फुटबॉल टर्फ मैदान का उद्घाटन किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने जिले में लगभग 38 लाख रुपए की लागत से जिला परिषद

0: भवन के सौंदर्यीकरण कार्य का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक भवनों का सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण न केवल कार्य संस्कृति को बेहतर बनाता है बल्कि आम जन के बीच भी सकारात्मक संदेश देता है। पटना उच्च न्यायालय ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान संचालित होने वाली वैकेशनल बेंच की सुनवाई पूरी तरह वर्चुअल मोड में करने का निर्णय लिया है। न्यायालय प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार कल से 4 जून तक कार्य दिवसों में वैकेशन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक कोर्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के मद्देनजर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने कल से सचिवालय कर्मियों के लिए विशेष इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। परिवहन सचिव राजकुमार ने बताया कि इस पहल से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मियों को सुलभ और समयबद्ध आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने से ईंधन की बचत को बढ़ावा मिलेगा। इधर परिवहन विभाग अब दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए भी विशेष बस सेवा शुरू करेगा। पहले चरण में इन बसों का परिचालन पटना जिले में किया जाएगा। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक व्यवस्था में नई जिम्मेदारी दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अनुसार अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के 34 अधिकारियों को अलग अलग जिलों का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार को पटना जिला और संतोष कुमार मल्ल को भोजपुर जिले का प्रभारी सचिव बनाया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार गया जिले के लिए रॉबर्ट एल चौंगथू, सारण के लिए पंकज कुमार और मधुबनी के लिए नर्मदेश्वर लाल को प्रभारी सचिव बनाया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने सोशल मीडिया पर जारी उस वीडियो को खारिज कर दिया है जिसमें गया जी में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और पेट्रोल पंप खाली होने का दावा किया गया है। HPCL ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि यह वीडियो भ्रामक, निराधार और वास्तविकता से परे है। कंपनी ने कहा है कि वीडियो में किया गया दावा पूरी तरह गलत है और पेट्रोल पंपों पर वास्तविक स्थिति से पूरी तरह विपरीत है। HPCL ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित गुमराह करने वाली ऐसी खबरों पर विश्वास न करें। कंपनी ने लोगों से आधिकारिक सूचना माध्यमों पर भरोसा करने का आग्रह किया है। प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवों में कल से 25 मई तक जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की इस योजना में इन गांवों में शिविर लगाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आवेदन लिया जाएगा और उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि जिले के किशनगंज, त्रिवेणीगंज और वसंतपुर प्रखंड के चयनित गांवों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। राजधानी पटना सहित प्रदेश के 20 जिलों में उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान पटना, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, गया और औरंगाबाद सहित 23 जिलों में दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अररिया और किशनगंज जिले के कुछ स्थानों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। इधर इस दिवस पर कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई की ओर से पटना में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इन शिविरों में लोगों को उच्च रक्तचाप से निपटने की सलाह दी जाएगी। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक कंटेनर और एक चारपहिया वाहन की टक्कर में एक ही परिवार के 4 समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक सीवान जिले के सिसवन प्रखंड के गयासपुर के रहने वाले थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कार सवार लोग सीवान जिले से हरियाणा के फरीदाबाद जा रहे थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जमुई जिला स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 11वीं कक्षा में नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई निर्धारित थी। लखीसराय जिला प्रशासन ने बाईपास स्थित रेल ओवर ब्रिज के स्पैन में आए दरार को देखते हुए लखीसराय बाईपास पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा है कि वैकल्पिक मार्ग तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस आरओबी की निर्माण एजेंसी को काली सूची में डाला गया है। सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के इंग्लिश गांव में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से एक पिस्टल, 25 कारतूस और 4 मोटरसाइकिल समेत एक चारपहिया वाहन जब्त किया गया है। अररिया जिले के रानीगंज पलासी सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष छापामारी अभियान के तहत आधा दर्जन गैर जमानती वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र मामले में 6 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त शिक्षकों से वेतन और अन्य मद में दी गई राशि की वसूली करने का भी निर्णय लिया गया है। भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया टोल प्लाजा के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने लगभग 500 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। धर्मशाला में दोपहर 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं एक अन्य मैच में दिल्ली में शाम 7:30 से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। इधर कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रनों से हरा दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा देश का तीसरा निफ्टेन हाजीपुर में खुलेगा। अखबार लिखता है 100 एकड़ जमीन सरकार ने दी, केंद्र से मिली मंजूरी। दैनिक जागरण लिखता है आय से अधिक संपत्ति मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता के घर ईओयू का छापा, लाखों की नकदी और सोना चांदी भी बरामद। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है तय समय 2027 तक जमीन सर्वे पूरा करने के लिए सरकार की रणनीति, बंटवारा नहीं तो जिनके नाम जमीन है उन्हीं का नाम होगा सर्वे में। प्रभात खबर ने नीट पेपर लीक से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है एनटीए ने जिस बॉटनी टीचर को बनाया था एक्सपर्ट उसी ने लीक किए प्रश्न। आज अखबार का शीर्षक है बिहार के 4 स्मार्ट शहरों में यातायात पुलिस की बड़ी बहाली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नालंदा के राजगीर में मलमास मेले का करेंगे उद्घाटन। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिनों के दौरान पटना सहित प्रदेश के 20 जिलों में बनी रहेगी उमस भरी गर्मी की स्थिति, अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
4: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
3: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच। शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
5: जागो ग्राहक जागो।
4: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: इधर आइए, इधर।
9: इधर?
8: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
10: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
9: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
10: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
9: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
11: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612।
12: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:06 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी नगमों का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नासिर फराज द्वारा लिखा गया इस नगमे के साथ, जिसे आवाज़ दिया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गीत नासिर फराज का, संगीत राजेश रोशन का, फिल्म का नाम क्रश।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

नगमे नए पुराने कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब ये सुनते हैं कोयला फिल्म का नगमा। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने, आवाजें कुमार सानुअल का, याग्निक और साथियों की।

0: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आपने सुना कुछ कुछ होता है फिल्म में उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों को। गीत लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने। नगमे नए पुराने कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं कहो ना प्यार है। इस फिल्म का ये नगमा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। गीत इब्राहिम अश्क ने लिखा है, संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

0: कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना कहो ना प्यार है फिल्म में इब्राहिम अश्क का लिखा नगमा, संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने, आवाजी थी उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की। इसके साथ ही आज का नगमे नए पुराने कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: मीडियम वेव 205.726 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे बाल श्रोता मित्र को संबोधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बाल मंजूषा। प्रस्तुत करती हैं श्री पार्वती के

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: बच्चों, आज के बाल मंजूषा कार्यक्रम को लेकर उपस्थित है आपकी दीदी अर्चना
1: और साथ ही दोस्तों हाजिर है आपका मित्र ईशान सौम्य।
0: तो बच्चों, आरंभ करते हैं आज का ये कार्यक्रम और हर बार की ही तरह आज भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमृतवाणी। किसी महान विचारक ने कहा है, व्यक्तित्व है ही क्या, आपके अपने विचारों, धारणाओं और भावनाओं का फल। स्वयं अपने विषय में जैसे आपके संकेत रहते हैं, वे ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। संभव है आपको प्रकृति ने एक आकर्षक व्यक्तित्व ना प्रदान किया हो, किंतु इसमें संदेह नहीं है कि आप संकेत द्वारा अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा सकते हैं। बच्चों, बहुत कम लोग इस सत्य को जान पाते हैं कि हमारे व्यक्तित्व विकास में हमारे शारीरिक क्रियाओं और हाव भाव को एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। शारीरिक भाषा संचार का विशेष पक्ष है। यह भाषा हमारी स्वाभाविक और प्राकृतिक भाषा है, जो बता देती है कि वास्तव में हम क्या हैं। हमारा शरीर मौन रहकर भी हमें औरों के सामने अभिव्यक्त करता है और औरों की शारीरिक अभिव्यक्तियों को हमें बता करके उनके बारे में हमारी अवधारणाओं को मजबूती प्रदान करता है। स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त होने वाली हमारी शारीरिक क्रिया यानी हमारा बॉडी लैंग्वेज हमारे द्वारा मौखिक रूप से प्रकट होने वाले भाषा से ज़्यादा अहमियत रखती है। मौखिक शब्दों को चुनते वक्त हमें पूरी छूट रहती है, क्योंकि शरीर यह चालाकी नहीं कर पाता और सच उगल देता है। पश्चिम के देशों में शारीरिक भाषा पर बड़ा काम हो रहा है। हमारे देश में भी अभी यह विद्या नहीं है, हालांकि फिल्मों, चित्रों, रंगमंच और अन्य माध्यमों से यह कला थोड़े बहुत घुमा फिरा आपके साथ सामने आती रही है। हम दूसरे व्यक्ति की शारीरिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से उसके विचारों को परख सकते हैं, उनकी मानसिकता का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इससे पहले कि यह स्थिति शब्दों द्वारा हम तक पहुँचे, हम उसके आशय को भली भांति भाप कर अपना निर्णय सुरक्षित कर सकते हैं। शारीरिक भाषा के माध्यम से मात्र दूसरे के ही बारे में अनुमान लगाया जा सकता हो, ऐसा नहीं है। बहुत बार यह अपने आप को प्रभावपूर्ण रूप से पेश करने का साधन भी बन जाता है। तो बच्चों, अब अमृतवाणी को हम यहीं विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम अपने बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे और सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज को समझ कर यह जानेंगे कि उनके विचार क्या हैं और उनकी मानसिकता का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। बच्चों, सुख का पहला सूत्र है स्वास्थ्य। विलियम टेम्पल ने कहा है, स्वास्थ्य वह मूल तत्व है जो जीवन की सारी खुशियों को जीवंत बनाता है, और स्वास्थ्य के बिना वे सभी नष्ट और नीरस होती है। आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हम जो भी खाते पीते हैं और जितनी मात्रा में भी खाते पीते हैं, उसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। मसलन हम शरीर की आवश्यकता से अधिक खा ले तो भी बीमार पड़ सकते हैं, और आवश्यकता से कम खाएं तो भी हमें कमजोरी से लगने लगती है और हमारा काम में मन भी नहीं लगता। लगातार आवश्यकता से अधिक खाने से शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, हृदय रोग, डिप्रेशन, आलस जैसे मेटाबॉलिक समस्याएं देखी जा सकती है। वहीं कम खाने से कुपोषण, एनीमिया जैसी शिकायत हो सकती है। इसीलिए खान पान में संतुलन जरूरी है। बच्चों, हमारी मूलभूत ज़रूरतों में आहार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही स्वस्थ जीवन का आधार है। पोषक तत्वों से भरपूर बैलेंस डाइट ना केवल हमारे शारीरिक मानसिक विकास को सशक्त बनाता है, बल्कि यह हमें कई बीमारियों से भी बचाता है। हालांकि हमारी हाइट, उम्र, लिंग, शारीरिक बनावट, दिनचर्या और एक्टिविटीज़ के हिसाब से बदलती है, पर बचपन से अच्छा डाइट फॉलो करना हमें वयस्क और वृद्धावस्था में भी कई बीमारियों से दूर रखता है। एक वयस्क को रोजाना 2000 से 2200 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उसे आहार से मिलती है। शारीरिक विकास के लिए 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल के बुजुर्गों को बॉडी सेल्स की रिपेयरिंग और मांसपेशियों की मजबूती के लिए प्रोटीन रिच डाइट की ज़रूरत होती है। शरीर में खून की कमी को रोकने के लिए महिलाओं और बच्चों को आयरन और कैल्शियम रिच डाइट लेना ज़रूरी होता है। हेल्दी रहने के लिए हर सदस्य के लिए ज़रूरी है कि वह दिन में 3 बड़े मील में ठूस कर खाने के बजाय थोड़े थोड़े गैप कर 5 से 6 मिनी मील ले, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के हैवी लेने के बजाय इनके बीच हल्के और हेल्थी स्नैक्स भी ले सकते हैं। किसी भी सूरत में ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए और डिनर सोने से करीब 3 घंटे पहले करना चाहिए। बच्चों, आप सबों की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था में शारीरिक और हार्मोनल बदलाव अधिक देखने को मिलते हैं, इसीलिए किशोर बच्चों के पोषण का भी खास ख्याल रखा जाता है। कैरियर की नींव भी इसी उम्र में रखी जाती है, इसलिए इनका मानसिक विकास रूप से सुदृढ़ होना उतना ही जरूरी है। इसीलिए आपको प्रोटीन, फैट, आयरन और कैल्शियम रिच डाइट लेना जरूरी है। फैट एनर्जी प्रदान करने और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। प्रोटीन मसल्स को मजबूती प्रदान कर शारीरिक विकास में मदद करता है। इसके लिए दाल, रेड मीट, मछली, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स के अलावा ब्रोकली, हरे पत्तेदार सब्जियां, केला, सेब, अनार जैसे फल भी हम ले सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए मिनरल्स और विटामिन लेने ज़रूरी हैं। इसके लिए आप फल, सलाद और सूप ले सकते हैं। हार्मोनल बदलाव के कारण मूड स्विंग और स्ट्रेस हो सकता है। इसकी वजह से भी बच्चे या तो कम खाते हैं या बार बार खाते हैं। इससे इम्यूनिटी लेवल कमज़ोर हो जाता है और वे बीमार रहने लगते हैं। बच्चों और जंक फूड के बीच तो गजब की दोस्ती होती है, पर यह दोस्ती आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो जाती है। जंक फूड के हानिकारक प्रभाव किसी से भी छुपे नहीं हैं, फिर भी ना चाहते हुए भी आजकल पेरेंट्स को बच्चों की जीत के आगे झुकना पड़ता है और बच्चों को उनकी पसंद का फास्ट फूड खिलाना ही पड़ जाता है। बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को फास्ट फूड की तरफ आकर्षित करती है और उनका ध्यान हेल्दी फूड से

0: इमोशनल कैंपेन भी फास्ट फूड के चलन को बढ़ावा में मदद करते हैं। इनमें फन फैक्टर भी काम करता है। अक्सर कंपनियां अपनी छोटे ग्राहकों को रिझाने के लिए अपने रेस्तरा में मिनी प्लेग्राउंड भी बना कर रखते हैं। यहाँ बच्चों को खेल के दौरान कंपनी की ओर से फूड के फ्री सैंपल भी दिए जाते हैं। साथ ही कंपनियां अक्सर बच्चों के सामने एक तरह की चुनौती रखती है कि एक पूरी सीरीज के सारे खिलौने इकट्ठे कर लेने पर उन्हें अलग से इनाम मिलेगा, या कुछ कंपनियां मिनी मील्स के साथ उपहार भी देती है। इसलिए भी कई बार बच्चे इस फूड के तरफ सभी खिलौने एकत्र करने की चाह में जंक फूड खाने की जिद पर अड़े रहते हैं। माना कि यह समस्या गंभीर है, लेकिन माता पिता अपने बच्चों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। लेकिन यह भी सत्य है कि मौजूदा दौर में जंक फूड को आप पूरी तरह से अपने जीवन से निकाल कर फेंक नहीं सकते। इसलिए यह ज़रूरी है कि कोई बीच का रास्ता अपनाया जाए ताकि बच्चों की ज़िद भी पूरी हो जाए और आपको भी यह तसल्ली रहे कि बच्चों को ज़रूरी पोषण मिल रहा है। छोटी मगर कुछ काम की बातें हैं, जैसे बाजार के बर्गर की जगह घर में बर्गर बनाए और उसकी टिक्कियों में अपनी पसंद की ढेर सारी सब्जियां काट कर मिलाए। दूध में केसर, पिसे बादाम, काजू, पिस्ता, इलायची आदि के पाउडर मिलाकर सुंदर से ग्लास में डालकर बच्चों के सामने पेश करने पर वे उनकी तरह आकर्षित होंगे। होल व्हील पिज्जा बेस या चपाती रोल बनाकर दें, इसे यकीनन बच्चे चाव से खाएंगे और साथ ही बच्चे रसोई में अपनी मम्मी की सहायता लिटिल सेफ के रूप में करें। इससे आपकी माँ की मदद भी हो जाएगी और आप उन्हें खुश भी कर पाएंगे, और आपके मदद से बने डिश का स्वाद बाजार के खाने से कई गुना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा और पौष्टिकता में भी कोई कमी नहीं होगी। बच्चों, आज एक खास दिवस भी है और वो दिवस है विश्व हाइपरटेंशन डे। बच्चों, रक्तचाप कोई रोग नहीं है, लेकिन इसके कम या अधिक होने के कारण शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इससे अन्य रोगों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। रक्तचाप के बढ़ने से शरीर के कई अंग डैमेज हो जाते हैं। इस दिन की शुरुआत बच्चों उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि उच्च रक्तचाप के रोगियों में उचित ज्ञान का अभाव था। विश्व उच्च रक्तचाप लीग ने अपना पहला दिवस 14 मई 2005 को शुरू किया। 2006 से प्रत्येक साल 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन डे के रूप में समर्पित करता आ रहा है। बच्चों, सामान्य आबादी और बिना किसी अन्य जटिलता वाले उच्च रक्तचाप से ग्रस्त लोगों के लिए अनुशंसित रक्तचाप 140/90 mmHg से कम, और मधुमेह या क्रॉनिक किडनी रोग वाले लोगों के लिए 130/80 mmHg से कम। ये अंतर्राष्ट्रीय और कनाडाई दिशा निर्देशों द्वारा अनुशंसित कट ऑफ मान है। प्रत्येक वर्ष इस दिवस की एक खास थीम होती है। वर्ष 2026 की थीम है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें। बच्चों, विश्वव्यापी जागरूकता अभियानों में भाग लेकर लोगों को प्रोत्साहित करना है। रक्तचाप की जांच और जीवन शैली में बदलाव और आहार में नमक की मात्रा कम करने के बारे में शिक्षा विश्व भर के समुदाय में स्ट्रोक, हृदय रोग और गुर्दे की बीमारी के जोखिम को कम करने में सहायता करना है। तो अब इसी के साथ अब हम अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।
1: बच्चों

0: इस प्यारे से गीत के बाद बच्चों अब आइए सुनते हैं रोचक तथ्य। तो ईशान, आप अपने दोस्तों के लिए आज क्या कुछ लेकर आए हैं रोचक तथ्य में, अपने दोस्तों से साझा कीजिए।
1: प्रतिरक्षा क्या है? मनुष्य शरीर में जब कोई रोगोत्पादक जीवाणु का आक्रमण होता है तो शरीर के अंदर प्रकृति उनका घोरतम प्रतिरोध करती है, और इसी युद्ध में शरीर की शक्तिशाली कोष उन बाहरी जीवाणुओं को बल नष्ट करके शरीर को रोग से बचा लेते हैं। शरीर के अंदर से उत्पन्न इसी रोगनाशक शक्ति को प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी कहते हैं। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती हैं, स्वाभाविक प्रतिरक्षा यानी नेचुरल इम्यूनिटी और अर्जित प्रतिरक्षा अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनिटी। किसी रोग के प्रतिरोध में शरीर के अंदर जो स्वाभाविक शक्ति उत्पन्न होती है उसे स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति में किसी विशेष रोग के प्रतिरोध की शक्ति नहीं है और पीछे से स्वयं या किसी अन्य उपायों द्वारा उसमें उस रोग के प्रतिरोध की शक्ति पैदा की जाए तो उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए हैजा, चेचक, मोतीझड़ा, टिटनेस आदि पैदा करने वाले कुछ रोगाणु हैं जो एक बार शरीर में प्रवेश करने पर रोग उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु थोड़ी मात्रा में प्रविष्ट करने पर रोग के प्रति प्रतिरक्षा शक्ति उत्पन्न करते हैं। इसका कारण यह है कि एक विष अत्यल्प मात्रा में रहने से प्रतिरक्षा पैदा करता है। कैप्सूल का आवरण किस पदार्थ का होता है? दवाई को कैप्सूल के रूप में प्रायः सभी लोग लेते हैं। दोस्तों, कभी जिज्ञासा होती है कि ये आखिर किस पदार्थ से बने होंगे? औषधियों के कैप्सूल प्रायः जिलेटिन नामक पदार्थ के बने होते हैं और नरम कैप्सूल में तेल भरा होता है। वे ग्लिसरीन युक्त जेलेटिन से बनाए जाते हैं। जेलेटिन स्वादहीन होता है और पानी में घुल जाता है। इसके अतिरिक्त यह औषधि को अभिक्रियामुक्त आवरण भी प्रदान करता है, इसलिए कैप्सूल बनाने के लिए इसे अति उत्तम रसायन माना जाता है। इस पदार्थ का कई विषैला प्रभाव नहीं होता और यह हमारे शरीर में आसानी से पच भी जाता है। आमतौर पर कैप्सूल में ऐसी औषधियों भरी जाती है जिनका स्वाद या तो बहुत कड़वा होता है या अथवा जो दानेदार और बारीक चूर्ण के रूप में होती है। लोहे से चोट लगने पर टिटनेस का भय क्यों? वैसे केवल लोहे से चोट लगने पर ही टिटनेस रोग नहीं होता है, ऐसा नहीं है। टिटनेस कहीं भी कभी भी किसी को भी हो सकता है, क्योंकि इसका कारण जीवाणु क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी के बीजाणु या स्पोर मिट्टी में हर स्थान पर विद्यमान होते हैं, परंतु इनकी संख्या खाद मिश्रित और खेतों की मृदा में अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि मिट्टी पर काम करने वाले जैसे किसानों और मालियों को टिटनेस का भय सामान्य मनुष्य की तुलना में अधिक होता है। यदि रास्ते पर पड़ी मिट्टी हवा से घर में आ जाए तो हमारे घर में भी इन कारक जीवाणुओं के स्पोर वास कर सकते हैं। बाद में भी घर में किसी सदस्य को संक्रमण होने से भी टिटनेस हो सकता है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इन जीवाणुओं की संख्या किसी जंक लगे लोहे में अधिक हो सकती है, इसलिए जब लोहे की वस्तु से चोट लगती है तो सावधानी के तौर पर चिकित्सक टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं। साथ में यह भी सलाह देते हैं कि लोहे से नहीं वरन किसी भी वस्तु से चोट लगने पर टिटनेस का इंजेक्शन अवश्य लगा लेना चाहिए।
0: इतने अच्छे और जानकारीपूर्ण रोचक तथ्यों के बाद बच्चों अब सुनते हैं आप बच्चों की सुंदर सी प्रस्तुति। तो आज ईशान, आप अपने दोस्तों को सुनाने के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, अपने दोस्तों को सुनाइए।
1: झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सनसनतावन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य छेड़ना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवार। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस को वारिस बनाकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बेरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सितारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब भ्रम पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़कर चले हम झांसी के मैदानों में। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बने मर्दानों में। वॉकर आप पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। विजय मिला पर अंग्रेजों ने फिर सेना घिर आई थी। अब की जनरल स्मिथ सन्मुख था उसके मुन में खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों को भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी।

0: अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। दिखा गई पथ जिस सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
1: ईशान, आपने सचमुच बहुत अच्छी कविता सुनाई। रानी लक्ष्मीबाई सचमुच बहुत बहादुर और एक हिम्मती रानी थी। उनके विषय में जितना कुछ कहा जाए बहुत कम है। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके ढेरों किस्से हैं जो बचपन से लेकर उनके युद्ध लड़ने, उनकी वीरगति को प्राप्त होने तक है। हमें उनके जीवन से बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है और मैं उम्मीद करती हूं कि आप बच्चे भी उनके जीवन से प्रेरित होंगे और उनके जैसे कार्य करने के लिए, यानी जब जब आपकी कहीं ऐसी जगह ज़रूरत हो तो आप उनके जैसे हिम्मती और साहसी बनने की कोशिश कीजिए। और

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: ईशान, इसके बाद आप क्या सुनाएंगे?
7: दीदी, मैं एक कहानी भी लाया हूँ।
6: सुनाइए।
7: समय की कीमत। प्राचीन समय की बात है, एक दिन महर्षि अगस्त्य स्नान करके अपने आश्रम लौट रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया समुद्र के पानी को अपनी चोंच में भर कर बाहर आकर उस पानी को उड़ेल देती, फिर रेत में लौट कर अपने पैरों पर रेत चिपकाती और उसे समुद्र में जाकर झाड़ देती। वह लगातार यह क्रिया दोहरा रही थी। महर्षि अगस्त्य विस्मित हुए कि यह नन्ही चिड़िया आखिर चाहती क्या है। वो दो तीन दिन आते जाते उसे देखते रहे। चिड़िया पूरी लगन और मेहनत से अपने कार्य में जुटी हुई थी। अंततः महर्षि अगस्त्य ने इसका रहस्य चिड़िया से पूछ ही लिया। चिड़िया, यह तुम क्या कर रही हो? चिड़िया ने उत्तर दिया, महर्षि, आप देख रहे हैं काम से मुझे तनिक भी फुर्सत नहीं है। कृपया मुझे क्षमा करें, आप अपना प्रश्न बाद में पूछिएगा। महर्षि का आश्चर्य और बढ़ा। उन्होंने पुनः पूछा, चिड़िया रानी, मुझे बताओ तुम कर क्या रही हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। तब चिड़िया दुखी स्वर में बोली, मुनिवर, मेरा अपराध क्षमा करें। बात ऐसी है कि यह समुद्र मेरे अंडा बहा ले गया। मैंने इससे कई बार प्रार्थना की कि मेरे अंडे वापस कर दे, लेकिन इसने ध्यान भी नहीं दिया। चिड़िया की बात सुनकर महर्षि बोले, ठीक है, लेकिन अब तुम क्या कर रही हो? चिड़िया ने कहा, जब समुद्र ने अंडे वापस नहीं किए तो मैंने सोचा कि मैं चोंच में पानी भर भर कर बाहर उड़ेल दूंगी और समुद्र को सुखा दूंगी। मैं अपने इस कार्य में सफलता प्राप्त करके ही रहूंगी। महर्षि अगस्त्य हत प्रभ रह गए। चिड़िया अपने उद्देश्य को पाने के लिए एक एक पल का सदुपयोग कर रही थी। यह था उसका टाइम मैनेजमेंट। जब हम समय की कद्र करते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, तो हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियाँ जागृत हो जाती है और वो अपने कार्य आरंभ कर देती है, जिससे हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त होती है।
6: बहुत अच्छी कहानी आपने सुनाई ईशान। सच में अगर हम किसी काम को मेहनत और लगन के साथ

करें तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और अब बच्चों, आपकी इतनी सुंदर और अच्छी प्रस्तुति के बाद अब वक्त हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी के आज के अंक का। तो चलिए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी।

0: नया जोश, नया उमंग और ढेर सारे नए इरादों के साथ एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ बाल किलकारी के नए एपिसोड में। ढेर सारी मौज मस्ती और थमा चौकरी से आप सभी श्रोताओं के दिलों पर राज करने के लिए हम हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं।
1: सुप्रभात बाल श्रोता सब, आपना सभ्य बाल श्रोता के बहुते बहुते स्वागत है आपनों के सुंदर आरो अनोखा सा रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी के अंक 301 मा आपनों सभ्य बाल मित्र के तहे दिल से स्वागत करे छी। आरो आज के खास कार्यक्रम के साथ है हम छिके आपनों सभ्य के प्यारी रेडियो साथी स्वाति। आरो आपनों के साथ है छिके आपनों के प्यारा रेडियो दोस्त
0: ऋषि। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी बाल श्रोता स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और हर रविवार की तरह आज भी अपने इस खास कार्यक्रम को सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आपका ये सब्र यही खत्म होता है, तो लीजिए हाजिर है हम सबका प्यारा कार्यक्रम
2: बाल किलकारी,
0: जिसके धुन से ही आपके मन में ढेर सारे नए ख्वाब, जोश, उमंग और मुस्कान आ जाती है और कुछ सीखने जानने का एक नया उत्साह जग जाता है।
1: हाँ ऋषि भैया, एकदम सही बात कहलो। ज्ञान के ज्योति जलाबै छी, संस्कार के राह बताबै छी, बाल किलकारी के संग संग हम सब सपना सजाबै छी। ऋषि भैया, आज के कार्यक्रम बड़ा खास छै। आए हम सब बात करबै संग्रहालय दिवस के साथ ही साथ किलकारी समर कैंप के मजेदार गतिविधि के बारे में। अब शुरू करे छे आज के ही कार्यक्रम का।
0: हाँ स्वाति, मैंने सुना है कि समर कैंप की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है, जिसमें हमें मिलेगा सीखने, रचनात्मकता और आनंद का अनोखा संगम।
1: हाँ ऋषि भैया, एकदम सही सुन लो छो। 31 मई से 21 जून तक चलाए वाला किलकारी समर कैंप बच्चा सब ला ढेर सारा नया अनुभव लेकर आबिर लो छे।
0: बच्चों की प्रतिभा को निखारने और उनके अंदर छिपी रचनात्मक क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से किलकारी समर कैंप का आयोजन 31 मई से 21 जून तक किया जा रहा है। यह समर कैंप बच्चों के लिए सीखने, खेलने और नई नई गतिविधियों में भाग लेने का एक सुनहरा अवसर होगा।
1: इस समर कैंप में बच्चा के सर्वांगीण विकास का ध्यान में रखता हुआ अनेक विधा के संचालन कर लो जाता है, जेकरा में शामिल छै नाटक,
0: संगीत,
1: हस्तकला,
0: चित्रकला,
1: तबला,
0: मूर्तिकला,
1: सितार वादन,
0: सिलाई कढ़ाई,
1: कंप्यूटर,
0: कुश्ती,
1: कराटे,
0: खो खो,
1: कबड्डी,
0: कहानी लेखन,
1: कविता लेखन,
0: कंप्यूटर एआई,
1: नृत्य विधा के साथे कई रोचक और ज्ञान वर्धक जैसनो गतिविधि का सिखाए लो जाता है।
0: किलकारी समर कैंप का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, अनुशासन

0: नेतृत्व क्षमता और रचनात्मक सोच का विकास करना है। यह कैंप बच्चों को केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा।
1: किलकारी समर कैंप के सबसे खास बात ईच है कि यहाँ बच्चा का आसपास के विशेषज्ञ से सीखे के मौका मिलता है।
0: और हाँ दोस्तों, यह समर कैंप बच्चों के लिए यादगार अनुभव साबित होगा जहाँ वे सीखने के साथ साथ भरपूर आनंद भी उठाएंगे। किलकारी द्वारा आयोजित यह प्रयास निश्चित रूप से बच्चों के उज्जवल भविष्य की ओर सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
1: तो जल्दी जल्दी सा अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ और ई मजेदार समर कैंप के हिस्सा बनो। रजिस्ट्रेशन शुरू छे। अपनो बाल श्रोता सब कॉल करी कभी रजिस्ट्रेशन करवा सके छो। अपनो के मोबाइल नंबर छके 7542029695। तब बाल श्रोता जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाबो और किलकारी समर कैंप के हिस्सा बनो।
0: तो आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं ढेर सारे काव्य गीतों को अपने किलकारी के साथियों द्वारा। तो आइए काव्य गीतों का आनंद लेते हैं।

0: काव्य गीत सब तब बहुते सुंदर छले। आशा करे छिये कि बाल श्रोता का जरूरे पसंद आइलो होतै। तब बाल श्रोता सब संग्रहालय अपनो इतिहास आरो संस्कृति के खजाना होवे छै। आयता रखल पुरान चीज हमरा पूर्वज के कहानी सुनाबै छै। आज हम असनी अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर बात करी रहल छी। कहना कि कल छकै अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ई दिन हमरा इतिहास संस्कृति और अपना विरासत के याद करे के मौका दै छै।
1: इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक और वैज्ञानिक योगदान के प्रति जागरूक करना है। यह दिन संग्रहालय को नई पीढ़ी के साथ जोड़ने और उन्हें अधिक समृद्ध और सुलभ बनाने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। बच्चों को संग्रहालय से जोड़ना न केवल उनकी शिक्षा में सहायक होता है बल्कि यह उन्हें संस्कृति इतिहास विज्ञान और कला के प्रति जागरूक और संवेदनशील भी बनाता है।
0: संग्रहालय खाली पुरान चीज रखे के जगह नहीं होवे छै बल्कि ई हमरो सभ्यता और संस्कृति के जीवित पहचान छै। आई त रखल पुरान मूर्ति हथियार चित्र सिक्का किताब आरो अनेक वस्तु हमरा अपन बीतल समय के कहानी सुनाबे छै। बच्चा हो या युवा संग्रहालय सबके कुछ नया सीखे के प्रेरणा दै छै। संग्रहालय जाय का हम असनी जानै छियै कि हमरो पूर्वज केना जीवन बितैलो छलै आरो समाज के विकास के यात्रा केना आगे बढ़लै। आज के समय संग्रहालय मा शिक्षा के एगो महत्वपूर्ण माध्यम बनी गेलो छै। संग्रहालय मा इतिहास किताब से निकली का आँखी के सामने जीवित होए गेलो छै। बच्चा सब जखनी संग्रहालय घूमे ले जायता है तब ओकरो अंदर के जिज्ञासा ज्ञान आरो अपनो संस्कृति के प्रति सम्मान बढ़ी जायता है। आज के इस खास दिन पर हम सब संकल्प लाई छी कि अपना इतिहास संस्कृति आरो विरासत के सम्मान करबै आरो ओकरो संरक्षण मा अपनो योगदान देबै।
1: तो आइए अब कार्यक्रम में अपने भागलपुर के संग्रहालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से। तो आइए सुनते हैं इस सुंदर से ऑडियो क्लिप को।
2: हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे प्यारे बाल श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है भागलपुर नगरी के किस्से में। आज हम लोग आप सभी को भागलपुर संग्रहालय के बारे में ढेर सारी जानकारी देंगे और यहाँ पर भ्रमण कर आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या खास है जिसे आपको जानना चाहिए और ये भी कि हमारे इतिहास में भागलपुर का स्थान कैसा रहा है और भागलपुर की प्राचीन विरासत क्या है। तो आइए आज संग्रहालय का भ्रमण करते हैं और ढेर सारी बातों को जानते हैं। संग्रहालय प्रवेश करते ही यहाँ पे मंजूषा कलाकृतियाँ उकेरी गई है दीवारों पर जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। दोस्तों, संग्रहालय के अंदर प्रवेश करते ही हमें सबसे पहले विष्णु जी की प्रतिमा दिखाई देती है जो कि करीब 9वीं से 10वीं शताब्दी तक की है जो कि हमें चंपानगर भागलपुर से प्राप्त हुई थी और यहाँ पर इस प्रतिमा को सुरक्षित रखा हुआ है। ये प्रतिमा आधी टूटी हुई है। उसके बाद हमें गरुड़ नारायण जी की मूर्ति मिलती है, ये भी करीब 8वीं से 9वीं शती तक की मूर्ति है और इसे भागलपुर से प्राप्त किया गया है। इसके आगे हम लोग देखते हैं मनोने स्तूप मूर्ति जो कि 9वीं से 10वीं शताब्दी पूर्व पुरानी है और इस मूर्ति में देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई है और ये एक स्तूप के तरह की हुई है जिसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है जो कि टूटी फूटी है क्योंकि ये उत्खनन से प्राप्त हुआ है इसलिए यह टूटी हुई है। और हमें यहाँ पे लक्कुश की प्रतिमा दिखती है जो कि बहुत ही सुरक्षित है और देखने से ऐसा लगता है कि यह कोई आदमी है जो कि खड़ा है यहाँ पे। और ये लक्कुश की प्रतिमा 5 से 6 शताब्दी पूर्व पुरानी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात। तो चलिए आगे मिलते हैं और ढेर सारी प्रतिमाओं से। अब हम आपको 1st century की मूर्ति के बारे में बताते हैं। यह मूर्ति है यक्षिणी की जो कि हमें साकुंड भागलपुर से मिली हुई है और इसे यहाँ भागलपुर संग्रहालय में रखा गया है। ये मूर्ति यक्षिणी की है और इसका आधा भाग टूटा हुआ है, लेकिन इसे हाल ही में जोड़ा गया है। तो आइए अब आपको हम एक ऐसी मूर्ति के बारे में बताने वाले हैं, ऐसी प्रतिमा के बारे में बताने वाले हैं जो कि टूटी हुई है, लेकिन इसकी पूरी संरचना बहुत ही सुंदर है और इसमें उकेरे गए डिज़ाइन जो कि पूरे साफ दिखते हैं और बहुत ही सुंदर लगती है। ये मूर्ति महिषामर्दिनी की है जो कि करीब 9वीं से 10वीं शती पूर्व पुराना है। इस मूर्ति का बीच का भाग टूटा हुआ है, शीर्ष का भाग बहुत अच्छा है और ये मूर्ति पाल वंश के काल में बनाया गया था। पाल शैली के उपयोग से इस मूर्ति को बनाया गया था। हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि पहले के लोग पूजा करने के लिए इस मूर्ति को बनाए होंगे और इस मूर्ति में मूर्ति के शीर्ष पर छोटे छोटे देवी देवताओं को उकेरा गया है, नीचे में भी देवी देवताओं को उकेरा गया है और इस मूर्ति की सुंदरता इसके बनावट सजावटी शैली को बहुत ही सुंदर रूप से दर्शाती है। और ये प्रतिमा हमारे भागलपुर के बांका से प्राप्त हुई थी और यहाँ पे ऐसी ही बहुत सारी प्रतिमाएं हैं जो कि करीब 5वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी तक की है और यहाँ पे बहुत सारी ऐसे देवी देवताओं की मूर्ति, स्तूप और भी बहुत सारे प्रतिमाएं हैं। संग्रहालय के बाएं ओर बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफीज और पेंटिंग्स लगी हुई हैं जो कि भागलपुर के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में ढेर सारी जानकारी देती है। यहाँ पर घंटाघर, कुप्पा घाट, बाबा बटेश्वर मंदिर, शाहजंगी मज़ार, महाशय ढ्योरी और भी बहुत सारे ऐसी ऐतिहासिक स्थल हैं जो कि भागलपुर की विरासत में आते हैं, इन्हें यहाँ पर सजाया गया है। दोस्तों, हमें यहाँ पर प्राचीन वास्तुकला की बहुत अच्छी झलक दिखाई पड़ती है। यहाँ पर मिट्टी के बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जो कि टूटे फूटे हैं और बहुत ही सुरक्षित भी बर्तन हैं जो कि हमें यहाँ पे उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं और इसे यहाँ पर संरक्षित कर रखा गया है। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि 10वीं से 20वीं शताब्दी पूर्व भी लोग मिट्टी से जुड़े हुए थे। वे लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे, मिट्टी से कुम्हार लोग हाथी, बैल, बकरी ये सब की प्रतिमाएं बनाते थे और इसे उत्खनन के बाद निकाला गया है और यहाँ पे इसे संरक्षित कर रखा गया है। जब हम लोग संग्रहालय के फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो हमें पहले के कमरे में ढेर सारी मंजूषा पेंटिंग्स दिखाई देती है जो कि भागलपुर की लोक कला को प्रदर्शित करती है और संग्रहालय को बेहद खूबसूरत बनाती है। हमें संग्रहालय के ऊपर वाले फ्लोर पर एक सुंदर सी लाइब्रेरी मिलती है जहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्राचीन किताबें हैं जो आपको भागलपुर के इतिहास, बिहार के इतिहास, भारत के इतिहास की सारी जानकारी दे सकती है। इस लाइब्रेरी में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो यहाँ से जुड़े हुए व्यक्तियों के नामों को, इतिहास को बहुत अच्छे से दिखाती है और यह लाइब्रेरी इतिहास के बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर इतिहास से जुड़े बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आपको प्राचीन विरासत से रूबरू करवाएगी और यहाँ पर हमें

0: एक विशाल काय मंजूषा की प्रतिमा दिखाई पड़ती है जो कि बांस से और पेपर वर्क यूज़ करके बनाया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और इस संग्रहालय के सहायक संग्रहालय अध्यक्ष हैं हमारे भागलपुर के जिला कला संस्कृति पदाधिकारी श्री अंकित रंजन सर। दोस्तों, यहाँ पर हमें मिले हैं एक साथी, तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें संग्रहालय आकर के कैसा लग रहा है। हेलो, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम आयुष है, और मैं जब यहाँ संग्रहालय आया ना, तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमा दिखाई दी। और सबसे अच्छी प्रतिमा पता है मुझे कौन सी लगी? गणेश जी की और दूसरी यक्षिणी जी की।
0: और आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगा, और इस संग्रहालय में और क्या क्या है?
1: इस संग्रहालय में बहुत सारी तस्वीरें हैं, जैसे नाथनगर चर्च की, कुप्पाघाट की, और फिर ऊपर में लाइब्रेरी है, और फिर मंजूषा कला की पेंटिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर 21वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक का यहाँ पे प्रतिमा है, और यहाँ पे प्रतिमा को बहुत ही अच्छी तरीके से रखा गया है। आप भी यहाँ आएँ और संग्रहालय को बहुत अच्छी तरीके से घूमें, क्योंकि यहाँ पे जानने सीखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं।
0: अरे वाह आयुष, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ई ऑडियो सत्ता अपना भागलपुर संग्रहालय के बारे में बहुते अच्छा जानकारी मिल रही कि संग्रहालय में बहुते पुराना इतिहास जुड़लो कहानी छे, मूर्ति छे, और बहुते कुछ देखे ल भी छे। बाल श्रोता, संग्रहालय घूमे से हमरा बहुते कुछ सीखे के मौका मिले छे। आशा करे छे कि श्रोता सब कल विश्व संग्रहालय दिवस पर अपने भागलपुर संग्रहालय जरूरे घूमे ल जाते।
3: और हाँ स्वाति, कुछ दिन पहले अपने भागलपुर संग्रहालय में नव निर्मित पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया था। यहाँ पुरातत्व, कला, सांस्कृतिक, दर्शन, साहित्य, गांधी दर्शन और भी अन्य सैकड़ों विषय पर पुस्तकें रखी गई है। और इस संग्रहालय के संग्रहालय अध्यक्ष जिला कला संस्कृति पदाधिकारी श्री अंकित रंजन सर हैं, जिनके मार्गदर्शन में आज अपना भागलपुर संग्रहालय एक जीवंत रूप में हमारी पहचान बनकर हमारे साथ है।
2: आशा करे छे कि बाल श्रोता सभ्य का पसंद आयलो होता है, आरो खूबे मजा भी आयलो होता है।
3: हाँ स्वाति, मजा तो बहुत आया।
2: हाँ ऋषि भैया, एगो बात बताइयो।
3: हाँ हाँ स्वाति, बताओ ना।
2: भैया की बताइयो, आज कल घरों में खाली परवल के सब्जी बनी रहलो छे, हम तक खेता खेता परेशान हो गेलो छे।
3: अरे स्वाति, यही हाल तो मेरा भी है, मेरे घर में रोज परवल बन रहा है। मुझे तो समझ भी नहीं आता है कि हमारे भागलपुर में इतने परवल उगाता कौन है।
2: अहो बुद्धू भैया, परवल भी तो अपने भागलपुर में खूबे रोपलो जाय छके, जेकरो कारण हम सबे का रोजे परवल के सब्जी खाय ल पड़े छे।
3: अच्छा, यानी परवल की खेती अपने भागलपुर में होती है?
2: हाँ, भागलपुर गंगा के किनारे छे नी, जेकरो कारण यहाँ के परवल के फसल अच्छा हो छे, और अलग अलग जगह पर भेजलो जाए छे, तब ये तब भागलपुर के परवल भी खूब फेमस छे, और साथ है परवल के मुरब्बा भी।
3: अरे स्वाति, ये परवल वाला मुरब्बा तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अब मैं ये समझा, ये जो गीत है ना, परवल बेचे जेबे भागलपुर, ये इसीलिए बना था।
2: हाँ तो चलो भैया, अब हम तोरा ये गीत सुनाबे छियौ।

0: अरे वाह स्वाति, गीत तो बहुत ही सुंदर था। आशा है कि बाल श्रोताओं को भी ये गीत बहुत पसंद आया होगा। तो स्वाति चलें कार्यक्रम में सुविचार को पढ़कर अब कार्यक्रम को विराम देते हैं। ये वे छोटी प्रेरणादायक बातें होती हैं जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाती है, चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है और हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। तो लीजिए हाजिर है आज का सुविचार।
1: आज के सुविचार छे जत्ते ज्ञान छे उत्ते उजाला छे, आरो जत्ता मिली जुली का प्रयास करबे उतने सफलता मिलता है। मतलब इस विचार के अर्थ छे कि ज्ञान आदमी के सही रास्ता दिखावे छे, ठीक ओहने जैसे उजाला अंधेरा दूर करे छे, आरो मिली जुली का प्रयास करला सा सफलता जरूरे मिले छे। आय के सुविचार तो बहुते बढ़िया खूब सुंदर छले, आरो ई बात बहुते सही छले। आशा करे छिए कि बाल मित्र का सुविचार पसंद आयलो होते, तो बाल मित्र सब सुविचार का जरूरे साझा करियो। तो साथी स्नी एकरे साथे अब कार्यक्रम यही समाप्त होय छे। तो आशा करे छिए कि आज के कार्यक्रम में खूब मन लगलो होते और खूब एंजॉयमेंट के साथे अपना के कार्यक्रम का सुनलो होबो। तो अब अपना के कार्यक्रम कैसनो लगलाय जरूर बताइयो। आशा करे छिए कि मजा ता आइले होते। तो साथी सब अपनो अपनो ख्याल रखियो और प्यारा प्यारा मैसेज जरूर भेजियो।
2: जी हाँ दोस्तों, तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए। आप अपना कीमती मैसेज हमें जरूर भेजें, क्योंकि हमें आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का बेसब्री से इंतजार रहता है और आपके मैसेज को पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो जरूर आप अपना मैसेज भेजें। आप अपना मैसेज हमारे मोबाइल नंबर के जरिए भेज सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7542029695। तो अपना मैसेज याद से भेजें। तो साथियों अब मिलेंगे आपसे इसी कार्यक्रम में हर रविवार सुबह 10 बजे। इसी जोश और उमंग के साथ आपके चेहरे की मुस्कान को बरकरार रखने के लिए हम फिर से हाजिर होंगे।
1: ता अब अपनो प्यारी रेडियो दोस्त स्वाति
0: और अपने प्यारे रेडियो दोस्त ऋषि को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी जोश और मुस्कान के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
3: बाय बाय। जय हिंद जय भारत।

0: अभी बच्चे सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी के आज का अंक, और अब इसी के साथ अब वक्त हो चला है आप सबों से विदा लेने का। तो ढेर सारे सुविक्षाओं के साथ हम लेते हैं विदा। जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।

0: उपभोक्ताओं।
1: अभी आप सुन रहे थे बाल श्रोताओं को संबोधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बाल मंजूषा और प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं राजेश कुमार पंडित। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे आइए सुनते हैं ये प्रभाती।

0: माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।

अभी आप सुन रहे हैं लोक गीत कार्यक्रम। कलाकार हैं राजेश कुमार पंडित। अभी आपने इनसे ये लोक भजन सुना। अब आइए सुनते हैं प्रभाती।

अभी आप सुन रहे थे लोक गीत कार्यक्रम, कलाकार थे राजेश कुमार पंडित, हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: That's right.
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 11 बजने वाले हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम नई फिल्मों से।

कार्यक्रम के आरंभ में आप सुन रहे हैं एनिमल फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह, रचना सिद्धार्थ गरिमा का है की है और इसे सुरों में पिरोया है श्रेयस पुराणिक ने।

अभी आप सुन रहे थे छत्रपति फिल्म का ये गीत, तनिष्क बागची, ऐश किंग और पलक मुचल की आवाज़ों में। और अब लीजिए सुनिए स्त्री टू फिल्म में वरुण जैन, शिल्पा राव और साथियों को। रचना अमिताभ भट्टाचार्य की है और इस गाने के लिए धुन तैयार किया है सचिन जिगर ने।

0: नए फिल्मी तराने इस समय आपके लिए पेश किए जा रहे हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। कार्यक्रम है नई फिल्मों से। अगला गाना आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम नई फिल्मों से को जारी रखते हुए दोस्तों अब हम आपको सुनवा रहे हैं नाम फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अलका याज्ञिक, उदित नारायण और साथियों ने। गीत रचना समीर की है और इसके लिए इसे सुरबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।
2: यूं ही नहीं दिल किसी पे आता है,

आपने सुना जुबिन नौटियाल की आवाज़ में तुम्हें दिल लगी रे टू फिल्म का ये गीत। गीतकार थे मनोज मुंतशिर, संगीतकार थे रोचक कोहली। और कार्यक्रम के अंत में दोस्तों हम आपको सुनवा रहे हैं बॉर्डर टू फिल्म का ये गीत सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। बोल लिखा है कुमार ने और इसके लिए तर्ज बनाई है मिथुन ने।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

जी हाँ दोस्तों, ये है अपनी आकाशवाणी, और आकाशवाणी पर ही आप हमें सुन रहे हैं। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्मी गानों का पिटारा, और इसका नाम है गुलदस्ता। जी हाँ दोस्तों, फिल्म संगीत के कार्यक्रम गुलदस्ता में आप सबों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। और इस कार्यक्रम रूपी गुलदस्ते को लेकर हाजिर हूँ मैं, आप ही की दोस्त, आपकी मित्र संगीता। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ दोस्तों, आज जिस शख्सियत पर हमें प्यार आया है और जिसके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिल चाह रहा है, आपने उस आवाज़ को तो पहचान ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, वो आवाज़ है पंकज उधास साहब का, जिनका जन्म आज ही के दिन 17 मई 1951 ईस्वी में हुआ था। आपका जन्म गुजरात में हुआ था। आपके माता पिता केशुभाई और जीतूबेन उधास थे। और इनके परिवार की बात करें तो दोस्तों, ये तीन भाई थे और तीन भाइयों में आपका सबसे छोटा स्थान था, यानी कि परिवार में ये सबसे छोटे थे। 17 मई 1951 को गुजरात के जेतपुर राजकोट में एक चारण परिवार में आपका जन्म हुआ था। शुरुआती शिक्षा दीक्षा भी गुजरात में ही हुई और बचपन से ही इन्हें, स्कूल के दिनों से ही इन्हें गाने गाने का बहुत ही शौक था। और कहते हैं कि लता मंगेशकर द्वारा गाए गाने ए मेरे वतन के लोगों इन्हें काफ़ी पसंद था और ये खूब गाते थे। और पहली बार स्कूल के दिनों में इन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था और इसके लिए उन्हें इनाम के रूप में 51 रुपये मिले थे। कहते हैं कि दर्शक दीर्घा में बैठे लोग इस गाने को सुनकर रो दिए थे। तो ऐसे शख्सियत पर भला किसे प्यार नहीं आएगा।

जी हाँ साथियों, करियर में आगे बढ़ने के लिए ये मुंबई आ गए और अपने बड़े भाई मनहर उधास जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बॉलीवुड के एक महान गायक हैं, उनके सानिध्य में रहकर धीरे धीरे ये अपने कैरियर में आगे बढ़ते रहे और इनका रुझान था गज़ल गायकी की तरफ और गज़ल गायकी में इन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। चांदी जैसा रंग है तेरा, चिट्ठी आई है, ये सब गज़ल किसी परिचय का मोहताज नहीं है दोस्तों। इन्होंने कई एक फिल्मों में भी काम किया, साथ साथ उत्सव प्रेम प्रतिज्ञा जैसी कई फिल्मों के लिए आपने गाना गाया और इसी दौरान उनका एक लड़की जो एयर हॉस्टेस थी, नाम था फरीदा, अंतर जातीय और दूसरे धर्म से आने वाली, पारसी धर्म से आने वाली फरीदा जो एयर हॉस्टेस थी, से इनकी आंखें मिल गई और उनकी सादगी पर ये मंत्रमुग्ध हो गए।

जी हाँ दोस्तों, दोनों का धर्म अलग होने के कारण उन्हें बहुत तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक तरफ तो वो चाहते थे कि उनका उनकी महबूबा से सब कोई रूबरू हो, सब कोई परिचित हो, और दूसरी तरफ ये धर्म की दीवार उन्हें ऐसा करने पर रोकती थी। धर्म का ये दीवार उन दोनों की मोहब्बत के बीच में ऐसे खड़ी हो गई थी कि फिर यूँ लगता था कि क्या किया जाए। और ऐसे में छुपाना भी मुश्किल था और बताना भी, दुनिया के सामने अपने मोहब्बत का इजहार भी करना मुश्किल था। दोनों के परिवार बिल्कुल राज़ी नहीं होने वाले थे, इसलिए उनके सामने में बहुत बड़ी विडम्बना आ खड़ी हुई थी। एक तरफ मोहब्बत का तकाजा था तो दूसरी तरफ था परिवार और समाज के की परंपराएं, उनकी मान्यताएं, उनके संस्कार। लेकिन फिर भी जब मोहब्बत करने वाले दो दिल बिल्कुल निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की तरफ लालायित होते हैं तो फिर सारी दीवारें टूट जाती हैं। लेकिन शुरुआती दौर में उनके मन की उलझन कुछ यूं बयां होती रही।

जी हाँ दोस्तों, हथेली पर नाम लिखते मिटाते तो ये रहे, लेकिन अंततः इनके प्यार की जीत हुई और इन्होंने दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत को रखा। और फिर कहते हैं ना दोस्तों, जब दिलों की चाहत सच्ची हो तो सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाती है और सारी दीवारें ढह जाती हैं। तो इनके भी धर्म की दीवार टूट गई और दोनों परिवार रजामंद हो गए और फिर आपकी शादी हो गई। और शादी होने के बाद इन्हें दो बेटियों को इन्होंने जन्म दिया और आज वो दोनों भी अपने अपने कैरियर में सफल हैं। बात की जाए दोस्तों इनके कैरियर की, तो पंकज उधास साहब ने अपने भाइयों के जैसे ही बॉलीवुड में जगह बनाना चाहते थे आप, इसके लिए 4 साल का लंबा संघर्ष भी किया। इसी दौरान उन्हें कोई बड़ा काम नहीं मिला, लेकिन फिल्म कामना में अपने गाने को आवाज़ दी थी, लेकिन वो फिल्म दुर्भाग्यवश फ्लॉप हो गई, जिस वजह से उन्हें अपने कोई ख़ास पॉपुलैरिटी भी नहीं मिली, कोई ख़ास जगह नहीं मिला। लेकिन वो दुखी नहीं होकर के उन्होंने बॉलीवुड में किस्मत आजमाने से अच्छा विदेश में जाकर बसने का फ़ैसला किया और गज़ल गायकी की तरफ उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। किंतु दोस्तों कहते हैं, जब वो भाग्य करवट लेता है तो फिर कहना ही क्या। इन्हें नाम फिल्म के लिए गाने का ऑफ़र आया, लेकिन ये नहीं गाना चाहते थे किसी कारणवश। लेकिन इनके बड़े भाई मनहर उधास साहब ने काफ़ी समझाया बुझाया तो फिर ये नाम फिल्म के लिए गाने के लिए तैयार हो गए। और फिर हम सब जानते हैं कि नाम फिल्म ने इन्हें कैसा नाम दिया।

जी हाँ दोस्तों, ये गज़ल ऐसी थी जिसने सभी प्रवासी भारतीयों को के दिलों में जगह बनाया, जैसे लगता था कि उन सबों के लिए ही ये गीत गाया गया, ये गज़ल गाई गई थी और खासी लोकप्रियता आपने हासिल की इस गज़ल के माध्यम से। और दोस्तों, बात करें अवार्ड की तो 2006 ईस्वी में गज़ल गायन की कला में उनके योगदान के लिए आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनके गज़ल गायन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कैंसर रोगियों के लिए, थैलेसेमिक बच्चों के लिए उनके महान योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। साथ ही दोस्तों, बात करें 2006 में ही हसरत के लिए उन्हें 2005 का बेस्ट गज़ल एल्बम के रूप में कोलकाता में प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार दिया गया। 2004 में प्रतिष्ठित स्थल पर प्रदर्शन के 20 साल पूरे होने पर लंदन में आपको विशेष वेम्बली सम्मान दिया गया। 2003 में सफल एल्बम इन सर्च ऑफ मीर के लिए MTV एमीज अवार्ड मिला। 2003 में ही दुनिया भर में गज़लों को लोकप्रिय बनाने के लिए बॉलीवुड म्यूज़िक अवार्ड, न्यूयॉर्क में विशेष उपलब्धि पुरस्कार। 2003 में गज़ल और संगीत की दुनिया में योगदान के लिए दादा भाई नौरोजी इंटरनेशनल सोसाइटी द्वारा दादा भाई नौरोजी मिलेनियम पुरस्कार आपको दिया गया। 2002 ईस्वी में मुंबई में फाउंडेशन ने संगीत के क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए आपको पुरस्कार प्रदान किया। 2002 में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया। 2001 में गज़ल सिंगर के रूप में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए रोटरी क्लब ऑफ मुंबई टाउनशिप ने वोकेशनल रिकॉर्डिंग्स अवार्ड से नवाजा। और 2001 में गज़ल सिंगिंग के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। 1999 में विशेष रूप से भारत और विदेशों में गज़लों को बढ़ावा देने के लिए असाधारण सेवाओं के लिए भारतीय विद्या भवन USA पुरस्कार दिया गया। 1998 ईस्वी में जर्सी सिटी के मेयर द्वारा भारतीय कला पुरस्कार आपको प्रदान किया गया। और 1998 ईस्वी में ही अटलांटिक सिटी में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्टिस्ट द्वारा आउटस्टैंडिंग आर्टिस्टिक अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों, ये तो थी इनके जीवन में पुरस्कारों की बाढ़ का की बातें। और दोस्तों, बात करेंगे कि आप हमारे बीच से कब रुखसत हो गए। यूं ही चलते चलते, यूं ही गज़ल और गीतों में अपनी आवाज़ का के जादू को बिखेरते हुए आप हम सबों के बीच से 26 फरवरी 2024 को 72 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में इलाज के दौरान आपका निधन हो गया। और इस क्षति की भरपाई शायद भारतीय सीने जगत में गज़ल गायकी में ख़ास तौर पर शायद संभव ना हो, क्योंकि वो मीठी आवाज़ हमारे दिलों में हमेशा जगह बना के रहेगी। आप हमारे बीच नहीं हैं, इसका हमें खेद है, लेकिन इनकी आवाज़ हमारे दिलों के आसपास सदा रहेगी। बस इन्हें हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इनके बिना जीना तो मुश्किल है, लेकिन जीना तो हमें पड़ेगा ही।

0: जी हाँ दोस्तों, इंसान यहाँ से चले जाते हैं लेकिन उन्होंने जो काम किया होता है उनकी प्रतिष्ठा यहीं रह जाती है, और उनकी प्रतिष्ठा, उनकी गायकी, उनका फिल्मों में और गज़ल गायकी में योगदान हमेशा हमारे दिलों के आसपास रहेगा। इन्हीं बातों के साथ पंकज उधास जी के जन्म जयंती के ऊपर ये कार्यक्रम आधारित था। गुलदस्ता का ये विशेष कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित था दोस्तों। और इसके साथ ही अब आपकी दोस्त आपसे विदा चाहती है। सबको एक बार फिर से हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है साप्ताहिक विज्ञान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं सौरभ कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान वाणी में। कार्यक्रम के आज के अंक के साथ हाजिर हूँ मैं, आपका रेडियो दोस्त पीयूष आनंद। श्रोताओं, आप तो जानते ही हैं कि विज्ञान वाणी कार्यक्रम में हम बातें करते हैं विज्ञान के विभिन्न तकनीकों, विभिन्न आविष्कारों के बारे में। विज्ञान जगत की हलचल पर आधारित हमारे कार्यक्रम का स्तंभ होता है विज्ञान समसामयिक की, प्रमुख वैज्ञानिकों के योगदान और उनके प्रेरणादायी जीवन के बारे में आपको बताने के लिए हमारा कार्यक्रम का स्तंभ होता है विज्ञान रत्न, और आप सभी के ज्ञान को परखने और आप श्रोताओं से जुड़ने का हमारा स्तंभ होता है माइंड टेस्ट। तो श्रोताओं, इंतजार किस बात का, आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला। श्रोताओं, विज्ञान जगत अपने वैज्ञानिकों के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। ये वैज्ञानिक जो नए नए प्रयोग, नए आविष्कारों के द्वारा पूरी दुनिया को विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रेरणादायी जीवन को बताने का ही स्तंभ होता है विज्ञान रत्न।
2: श्रोताओं, विज्ञान रत्न में आज हम जानेंगे महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जोहान्स केपलर के प्रेरणादायी जीवन के बारे में। तो आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। श्रोताओं, जोहान्स केपलर एक जर्मन खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्हें ग्रहों की गति के नियमों की खोज के लिए जाना जाता है, जिन्होंने आइजैक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की नींव रखी। केपलर वैज्ञानिक क्रांति के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 27 दिसंबर 1571 को जर्मनी के वेल्डरस्टेड में हुआ था। उनका बचपन गरीबी और खराब सेहत के बीच बीता। उन्होंने ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय से गणित और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की, जहां वे निकोलस कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित यानी हेलियोसेंट्रिक ब्रह्मांड के विचार से बहुत प्रभावित हुई। उनके मुख्य उपलब्धि और खोजों की बात करें तो केपलर ने खगोल शास्त्री टाइको ब्राह्मे के सटीक अवलोकनों का अध्ययन करके अपने तीन प्रसिद्ध नियम दिए। पहला नियम था, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार यानी इलिप्टिकल कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरा नियम था, कोई भी ग्रह सूर्य के जितने करीब होता है उसकी गति उतनी ही तेज होती है। और तीसरा नियम था, ग्रहों की सूर्य से दूरी और उनकी परिक्रमा की अवधि के बीच एक गणितीय संबंध होता है। श्रोताओं, उनके कार्यों जैसे एस्ट्रोनोमिया नोवा ने आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव रखी। प्रकाशिकी और दूरबीन के क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया और गैलीलियो की दूरबीन में सुधार करके केपलरियन टेलीस्कोप का आविष्कार किया। श्रोताओं, जोहान्स केपलर 15 नवंबर 1630 को रेगेंसबर्ग जर्मनी में इस दुनिया से विदा हो गए। उनके शानदार खगोलीय और गणितज्ञ योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी विरासत को सम्मानित करने के लिए नासा ने 2009 में अंतरिक्ष में ग्रहों की खोज करने वाली अपनी दूरबीन का नाम केपलर मिशन रखा था। विज्ञान वाणी टीम की ओर से इस महान वैज्ञानिक को सादर नमन।
1: श्रोताओं, विज्ञान रत्न के बाद अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ विज्ञान मंजूषा का।
2: श्रोताओं, हाल ही में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर काफी चर्चा का विषय रहा। आपने समाचार पत्रों में इसके बारे में पढ़ा होगा और खबरों में इसके बारे में सुना होगा। हमने विज्ञान वाणी में भी आपको बताया था कि हाल ही में तमिलनाडु के कलप्पकम में स्थित भारत का पहला स्वदेशी 500 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर तैयार हुआ, जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण का नेतृत्व कर रहा है। श्रोताओं, आज हम जानेंगे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में विस्तार से। यह रिएक्टर अपनी खपत से अधिक ईंधन यानी प्लूटोनियम पैदा करने की अनूठी क्षमता रखता है, जिससे परमाणु ऊर्जा में अपार आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है। इसके काम करने की बात करें तो सामान्य परमाणु रिएक्टर जितना ईंधन इस्तेमाल करते हैं उससे ज्यादा नहीं बना पाते, लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की खासियत यह है कि यह एक यूनिट ईंधन की खपत करके बदले में दो यूनिट नया ईंधन यानी प्लूटोनियम उत्पन्न करता है। थोरियम चक्र की बात करें तो भारत के तीन चरणीय परमाणु कार्यक्रम के तहत इस रिएक्टर से उत्पादित प्लूटोनियम का उपयोग तीसरे चरण में किया जाएगा, जिससे देश के विशाल थोरियम भंडारों का उपयोग करके असीमित ऊर्जा प्राप्त की जा सकेगी। इसमें पानी के बजाय तरल सोडियम का उपयोग किया जाता है, जो रिएक्टर को अत्यधिक तापमान पर सुरक्षित रूप से संचालित करने में मदद करता है। भारत के लिए इसके महत्व की बात करें तो इस रिएक्टर के क्रिटिकल होने यानी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया शुरू होने के साथ ही भारत रूस के बाद व्यावसायिक स्तर पर फास्ट ब्रीडर तकनीक का उपयोग करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। आत्मनिर्भरता की बात करें तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा प्रबंधित इस प्रोजेक्ट में 200 से अधिक भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान है। यह 500 मेगावाट का प्लांट भारत के 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी और निरंतर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। श्रोताओं, भारत के परमाणु कार्यक्रम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के महत्व और इसकी कार्यप्रणाली को विस्तार से समझने के लिए आइए सुनते हैं एक वार्ता। वार्ताकार हैं हरिशंकर प्रसाद।
3: आज सूचना क्रांति के युग में दैनिक कार्य, उद्योग, परिवहन और बिजली उत्पादन ऊर्जा पर आश्रित है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत से बिजली की पूर्ति संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में आइए हम लोग व्यापक ऊर्जा के लिए नई तकनीक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में गहन चिंतन व मंथन करते हैं। कालपक्कम तमिलनाडु में स्थित 500 मेगावाट विद्युत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जिसने 6 अप्रैल 2026 को अपनी पहली क्रिटिकलिटी नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया प्राप्त की। भावनी द्वारा विकसित यह थोरियम और यूरेनियम के व्यापक उपयोग के माध्यम से भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को हम निम्नलिखित तथ्यों से जानने का प्रयास करते हैं। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कालपक्कम तमिलनाडु, क्षमता 500 मेगावाट विद्युत। यह सोडियम कूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो अपनी खपत से अधिक ईंधन उत्पन्न करता है। इसमें यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। यह भारत को थोरियम के विशाल भंडार का उपयोग करने की दिशा में दूसरे चरण से तीसरे चरण की ओर ले जाता है। इसमें पैसिव शटडाउन प्रणाली है, जो तापमान बढ़ने पर विखंडन प्रतिक्रिया को स्वचालित रूप से कम कर देती है। यह रिएक्टर देश की आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का महत्व इन बिंदुओं से समझा जा सकता है। 3 स्तरीय कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का परिचालन भारत के 3 स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रवेश को दर्शाता है। यह रिएक्टर प्रयुक्त ईंधन का पुनर्चक्रण करके जितनी बिजली उत्पन्न करती है उससे कहीं अधिक ईंधन पैदा करता है, जिससे यूरेनियम संसाधनों की दक्षता बहुत बढ़ जाती है। भारत के पास विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। भारत के पास 11.93 मिलियन टन मोनाजाइट, जिसमें 1.07 मिलियन टन थोरियम होता है, मौजूद है। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। केरल के तटीय इलाके में विशेषकर चावड़ा में मोनाजाइट के रेत का विशाल भंडार है, जिनसे थोरियम निकाला जाता है। केरल के अलावा तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और झारखंड के तटीय क्षेत्रों में थोरियम का भंडार है। भारत में थोरियम का विशाल भंडार है, लेकिन इसका उपयोग सीधे नहीं किया जा सकता। PBFR के माध्यम से हम भारत के समृद्ध थोरियम भंडार को उपयोगी यूरेनियम 239 में बदलकर भविष्य के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। PBFR की सफलता भारत के विशाल थोरियम भंडारों के उपयोग का मार्ग प्रशस्त करती है, जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का अंतिम और मुख्य लक्ष्य है। यह रिएक्टर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है, जो परमाणु ऊर्जा में भारत की आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह भारत की ऊर्जा संप्रभुता को मजबूत करता है, ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी शक्ति के रूप में देश की स्थिति को स्थापित करता है। यह रिएक्टर परमाणु अपशिष्ट को कम करने में मदद करता है, जिससे बड़े भूवैज्ञानिक निपटान सुविधाओं की आवश्यकता कम हो जाती है। रिएक्टर पहले चरण के रिएक्टरों से निकले खर्च किए गए ईंधन का पुनर्चक्रण करके परमाणु कचरे की मात्रा को महत्वपूर्ण रूप से कम करते हैं। PFBR का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह उपजाऊ पदार्थों को विखंडनीय पदार्थों में बदलकर अपनी खपत से अधिक ईंधन उत्पन्न करता है। यह भारत को परमाणु ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में पीएफबीआर ईंधन का उपयोग लगभग 1% से बढ़ाकर 60 गुना अधिक दक्षता से कर सकते हैं। पीएफबीआर में निगेटिव व्हाइट कोफिशियंट के कारण यह अधिक सुरक्षित होता है। यदि रिएक्टर जरूरत से ज़्यादा गर्म होता है तो श्रृंखला अभिक्रिया अपने आप धीमी हो जाती है। जीरो लक्ष्य 2070 यह कम कार्बन ऊर्जा वाला स्रोत है जो भारत को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को जोखिम को इन तथ्यों से जान सकते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के डिजाइन में कोर मेल्ट डाउन जैसी दुर्घटनाओं की स्थिति रेडियोधर्मी पदार्थ के फैलने की संभावना होती है। इन रिएक्टरों को कोर डिसअसेंबली एक्सीडेंट का खतरा होता है जो पारंपरिक भारी पानी रिएक्टरों की तुलना में विनाशकारी हो सकते हैं। पीएफबीआर में शीतलक के रूप में तरल सोडियम का उपयोग होता है। सोडियम हवा या पानी के संपर्क में आने पर बड़ी तेजी से जलता है जिससे आग लगने का बहुत गंभीर खतरा बना रहता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण और परिचालन लागत पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। यह नई तकनीक है इसलिए इसके संचालन और मरम्मत में भी उच्च स्तरीय विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। चूंकि ये रिएक्टर ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का उपयोग करते हैं और अतिरिक्त ईंधन का उत्पादन भी कर सकते हैं, इसलिए इन सामग्रियों का उपयोग परमाणु हथियारों में किया जा सकता है जिससे परमाणु आतंकवाद या सुरक्षा के जोखिम बढ़ जाते हैं। तकनीक जटिल है जिसके कारण भारत के पीएफबीआर को चालू करने में कई वर्षों की देरी हुई जो कि इसके प्रोटोटाइप होने की चुनौतियां को दर्शाते हैं। पीएफबीआर का सबसे बड़ा जोखिम सोडियम आधारित कूलिंग सिस्टम की अग्नि सुरक्षा और दुर्घटना की स्थिति में संभावित रेडियोधर्मी रिसाव से जुड़ा है जो इसे पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक जटिल और खतरनाक बनाता है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कार्यक्रम के महत्व और जोखिम पर गौर कर निम्नलिखित बिंदुओं से निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। भारत के तीन चरण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग है। इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन और भावनी द्वारा निर्मित किया हुआ है जो भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को सिद्ध करता है। पीएफबीए यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड ईंधन का उपयोग करता है और खपत से अधिक ईंधन उत्पन्न करता है जो देश के सीमित यूरेनियम संसाधनों का कुशलता से उपयोग कर दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करता है। इस रिएक्टर में नकारात्मक शून्य गुणांक है जो उच्च स्तर की निष्क्रिय सुरक्षा सुनिश्चित करता है, यानी अत्यधिक गर्मी की स्थिति में रिएक्टर स्वतः ही धीमा हो जाता है। निर्माण में देरी और उच्च परिचालन लागत मूल बजट से लगभग दोगुनी जैसे मुद्दों के बावजूद यह परियोजना भविष्य के लिए वाणिज्यिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है। अंततः प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का सफल संचालन भारत को परमाणु क्लब के उन्नत श्रेणी में प्रमुखता से स्थापित करता है।
2: श्रोताओं, वैश्विक चुनौतियों के बीच में ऊर्जा, गैस, ये शब्द आपको अक्सर आजकल खबरों में सुनाई देते होंगे। वैश्विक तनाव के वजह से विभिन्न देशों में गैस और ऊर्जा के खपत के बारे में चर्चा हो रही है और इसके नए विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। आज हम एक ऐसे ही गैस के बारे में जानेंगे जिसे कहते हैं सिंथेटिक गैस, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन या और कार्बन मोनोक्साइड का गैसीय मिश्रण है जिसमें थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी शामिल हो सकता है।

सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है जिसका उपयोग ईंधन, बिजली और विभिन्न रसायनों जैसे अमोनिया और मेथेनॉल के उत्पादन के लिए किया जाता है। सिंथेटिक गैस के उत्पादन की बात करें तो पारंपरिक रूप से सिंथेटिक गैस का निर्माण जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और प्राकृतिक गैस के गैसीकरण द्वारा किया जाता है। हालांकि पर्यावरण के अनुकूल और स्थायी समाधान के लिए अब इसे आधुनिक तरीकों से भी उत्पादित किया जा सकता है, जैसे कि बायोमास। इसमें कृषि अपशिष्ट और लकड़ी को गर्म करके, अनुपयोगी प्लास्टिकों और टायरों का उपयोग करके। इसके अलावा ई फ्यूल्स यानी ई ईंधन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त हाइड्रोजन और वायुमंडल से कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर भी इसका निर्माण किया जा सकता है। इसके उपयोग और एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका उपयोग औद्योगिक गैस इंजनों में बिजली और ताप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अमोनिया और मेथेनॉल बनाने के लिए जो आगे उर्वरक और अन्य उत्पाद बनाने के काम आते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे फिशर ट्रोप्स प्रक्रिया के माध्यम से सिंथेटिक पेट्रोल और डीजल में परिवर्तित किया जा सकता है। श्रोताओं, इसके लाभ की बात करें तो यदि इसे कचरे या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बनाया जाए तो यह कार्बन न्यूट्रल होता है। अपशिष्ट प्रबंधन की बात करें तो प्लास्टिक और कचरे का उपयोग करके पर्यावरण को साफ रखने में भी यह मदद करता है। श्रोताओं, मधुमक्खियाँ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, क्योंकि वे परागण यानी पॉलिनेशन में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इसीलिए हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को बनाए रखने में मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके इतिहास की बात करें तो यह दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत माने जाने वाले एंटोन जांसा के जन्म का प्रतीक है। उनका जन्म 20 मई 1734 को स्लोवेनिया में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार 20 मई 2018 को विश्व मधुमक्खी दिवस का आयोजन किया था। श्रोताओं, मधुमक्खी के संरक्षण में और उसके पालन में हम कैसे योगदान दे सकते हैं इसकी बात करें तो अपने आसपास फूल वाले पौधे उगाएं जो मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। अपने बगीचे या खेतों में जहरीले रसायनों या कीटनाशकों का प्रयोग कम करें। मधुमक्खियों के पीने के लिए पानी की एक छोटी कटोरी बाहर रखें। श्रोताओं, हमें समझना होगा कि पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को बनाए रखने में मधुमक्खियों के महत्व को देखते हुए इसका संरक्षण और पालन आवश्यक है। श्रोताओं, अभी मधुमक्खियों के बारे में बातें करते हुए हमने जैव विविधता के संरक्षण की बात की। पृथ्वी पर जीवन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित दिवस है 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। श्रोताओं, यह दिन जैव विविधता की रक्षा और मानव कल्याण को बनाए रखने वाले पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण की आवश्यकता की वैश्विक याद दिलाता है। इस दिवस का समन्वय जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन जैविक विविधता पर सम्मेलन द्वारा किया जाता है। 2026 की बात करें तो इसका विषय है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। श्रोताओं, कहा जाता है कि जीवो रक्षति रक्षितः, यानी कि हम जीवों की रक्षा करें तो जीव हमारी रक्षा करेंगे। श्रोताओं, प्रकृति ने इस धरती पर हर जीव को जीवन जीने का समान अधिकार और अवसर दिया है और हर जीव का महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए पृथ्वी के संचालन में पर्यावरण और पर्यावरण के संचालन में जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। श्रोताओं, जैव विविधता के समाधान का हिस्सा हम सभी हैं। हमें समझना होगा कि जैव विविधता का संरक्षण हमारा दायित्व ही नहीं अपितु भविष्य की अनिवार्यता भी है और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर स्वस्थ जीवन जीना ही तो भारतीय संस्कृति की परंपरा भी रही है। इसलिए हमें ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना होगा जो जैव विविधता में समृद्ध और सुदृढ़ हों। तो आइए हम सभी अपने प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लें और जैव विविधता के प्रति जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें। श्रोताओं, दूर संचार ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है, चाहे वह इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट संचार या मीडिया प्लेटफॉर्म हो। ये सभी तकनीकें आज के युग में हमारी ज़िंदगी का अनिवार्य हिस्सा बन गई हैं। डिजिटल युग में संचार केवल संदेश भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाओं और वैश्विक सहयोग का भी आधार बन गया है। इसीलिए हर वर्ष विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। यह दिन हमें दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व की याद दिलाता है और दुनिया भर में सशक्त डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। श्रोताओं, 17 मई 1865 को पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की स्थापना हुई। यह संगठन दुनिया भर में संचार नेटवर्क और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में 1969 से यह दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लोगों को यह बताना है कि सूचना और संचार तकनीक और इंटरनेट हमारे समाज और अर्थव्यवस्था को कैसे बदल सकते हैं। श्रोताओं, दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी इंटरनेट और तकनीक की पहुंच नहीं है। यह दिन सरकारों और संगठनों को इस डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए प्रेरित करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कनेक्टिविटी ने, टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जिसके उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना, विकासशील और कम विकसित

देशों को तकनीक के जरिए सशक्त बनाना, आर्थिक उन्नति करना ताकि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिला सके। श्रोताओं, वर्ष 2006 तक इसे केवल विश्व दूरसंचार दिवस कहा जाता था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इसमें सूचना समाज दिवस को भी जोड़ दिया, जिससे अब इसे विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में जाना जाता है। श्रोताओं, वर्ष 2026 में विश्व दूरसंचार दिवस की थीम है डिजिटल जीवन रेखाएं, एक संयोजित दुनिया में लचीलेपन को मजबूत करना, यानी डिजिटल लाइफ लाइन्स स्ट्रेंथनिंग रीसाइलेंस इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। इसका उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित और मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके हर वर्ष की थीम वर्तमान वैश्विक चुनौतियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, ग्रामीण कनेक्टिविटी पर आधारित होती है, जिसका आयोजन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा किया जाता है। श्रोताओं, प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों के अध्ययन ने हमें दुनिया को असाधारण तरीकों से बदलने में मदद की। प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों में माइक्रोस्कोप, एक्सरे मशीनें, टेलीस्कोप, कैमरे, इलेक्ट्रिक लाइट और टेलीविजन स्क्रीन शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का उद्देश्य वैधानिक सहयोग को बढ़ावा देना और शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान की क्षमता का उपयोग करना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियां शिक्षा, विज्ञान, कला संस्कृति, सतत विकास, संचार, ऊर्जा और चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वार्षिक उत्सव यूनेस्को द्वारा आयोजित किया जाता है। श्रोताओं, प्रकाश दिवस के इतिहास की बात करें तो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस समारोह यूनेस्को द्वारा 16 मई 2018 को आयोजित किया गया। 1960 में इस तारीख की वर्षगांठ जब इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थियोडोर मेमन ने पहले लेजर से दोलन और आउटपुट सफलतापूर्वक प्राप्त किया था। श्रोताओं, अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के बारे में बातें की, आइए प्रकाश दिवस के इस सप्ताह में हम लेजर के बारे में जानते हैं। श्रोताओं, लेजर का मतलब उत्तेजित विकिरण द्वारा प्रकाश प्रवर्धन यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड रेडिएशन है। यह एक उपकरण है जो परमाणुओं या अणुओं को विशेष तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए उत्तेजित करता है और उस प्रकाश को बढ़ाता है या विकिरण की एक बहुत ही संकीर्ण किरण उत्पन्न करता है। लेजर कृत्रिम प्रकाश है। लेजर की किरणें बहुत लंबी दूरी तय कर सकती हैं। ये बहुत सारी ऊर्जा के साथ प्रकाश को केंद्रित कर सकती हैं। लेजर के उपयोग की बात करें तो नाजुक चिकित्सा, सर्जरी करने में, हीरे या मोटी धातु को काटने के लिए, संचार, टीवी और इंटरनेट सिग्नल ले जाने में, लेजर प्रिंटर, बारकोड स्कैनर और डीवीडी प्लेयर में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग स्पेक्ट्रोमीटर में भी किया जाता है, जो वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद करता है कि चीज़ें किस चीज़ से बनी हैं। श्रोताओं, हम जब भी प्रदूषण की बात करते हैं तो आज सबसे प्रमुख खतरे के रूप में उभर रहा है प्लास्टिक का प्रदूषण, क्योंकि प्लास्टिक विभिन्न प्रकार के कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है और इसका एक प्रमुख इस्तेमाल है पैकेजिंग में। यहाँ श्रोताओं, पैकेजिंग में अक्सर हमने देखा होगा प्लास्टिक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हम करते हैं। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि वो प्लास्टिक से पैक किया हुआ है। पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए ही बायोकेमिकल पैकेजिंग की शुरुआत की गई है। ये एक सस्टेनेबल पैकेजिंग विकल्प है। बायोकेमिकल पैकेजिंग से तात्पर्य ऐसे सुरक्षित और अक्सर पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग समाधानों से है जो जैविक रसायनों, तरल पदार्थों और बायोप्रोसेसिंग मीडिया को सुरक्षित रखने, परिवहन करने और अपघटित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। श्रोताओं, बायोकेमिकल पैकेजिंग के मुख्य पहलू की बात करें तो इसमें रिसावरोधी यानी लीक प्रूफ और अत्यधिक टिकाऊ लचीले बैग, जो कि बायोप्रोसेसिंग बैग्स कहे जाते हैं, और बोतलें शामिल होती है, जिसका उपयोग रासायनिक उद्योगों और प्रयोगशालाओं में तरल पदार्थों की सुरक्षित हैंडलिंग के लिए किया जाता है। पर्यावरण अनुकूल सामग्री। श्रोताओं, इस प्रकार की पैकेजिंग में नवीकरणीय संसाधनों जैसे स्टार्च, सेलुलोज और अन्य बायोपॉलीमर्स का उपयोग किया जाता है, जो बायोडिग्रेडेबल यानी जैविक रूप से नष्ट होने योग्य और कंपोस्टेबल होते हैं। सुरक्षा की बात करें तो रसायन आधारित उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह नमी रोधी होती है। कुछ उन्नत बायोकेमिकल पैकेजिंग तापमान, ऑक्सीजन और रोगजनकों की निगरानी भी करती है, ताकि पैक किए गए उत्पाद जैसे दवाएं या खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहे। श्रोताओं, औद्योगिक उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग जैव उर्वरक, खाद और पेय पदार्थ और अन्य बायोकेमिकल उत्पादों को स्टोर करने और बाजार में पहुँचाने के लिए किया जाता है। श्रोताओं, सिंथेटिक प्लास्टिक सामग्री का उपयोग खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए अब व्यापक रूप से किया जाता है, क्योंकि इसमें यांत्रिक तनाव के प्रति उच्च प्रतिरोध, उच्च अवरोधक गुण होते हैं। बायोकेमिकल पैकेजिंग यानी कि बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग जहरीले प्लास्टिक प्रदूषण से भी निपटने में मदद करती है। तो श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के पैकेजिंग में बायोकेमिकल पैकेजिंग का इस्तेमाल शुरू होगा, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान कम से कम पहुँचेगा। श्रोताओं, आज हमने बायोकेमिकल पैकेजिंग की बात की, जो प्लास्टिक की तरह प्रदूषण ना करने यानी कि पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए पैकेजिंग की बात कर रहा था और प्लास्टिक का विकल्प की बात कर रहा था। आज हम एक और बायोप्लास्टिक के बारे में जानेंगे, वो है PHA यानी पॉलीहाइड्रो

एक्सोनेट जिसे पीएचए कहा जाता है, यह बैक्टीरिया द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पादित पॉलिस्टर यानी बायोप्लास्टिक का एक ग्रुप है। यह पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ बायोडिग्रेडेबल और बायोकम्पैटिबल होता है। यह है क्या? श्रोताओं, पीएचए एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक यानी पॉलीमर है जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन युक्त पदार्थों जैसे शर्करा या लिपिड के किण्वन यानी फर्मेंटेशन द्वारा अपने शरीर के अंदर बनाते हैं। इसे पारंपरिक पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक का एक अस्थायी और सुरक्षित विकल्प माना जाता है। इसके प्रमुख गुण और उपयोग की बात करें तो बायोडिग्रेडेबिलिटी, यह मिट्टी, समुद्र के पानी और प्राकृतिक वातावरण में बिना कोई नुकसान पहुंचाए आसानी से और पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यह मानव शरीर के अनुकूल होता है, इसलिए इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत किया जाता है। लचीले और इलास्टिक गुण के कारण इसका उपयोग सर्जरी के टांके, घाव की पट्टियाँ, हार्ट पैच और दवाओं की डिलीवरी के लिए नैनो कैरियर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प, पैकेजिंग सामग्री और कृषि संबंधी उत्पादों को बनाने में किया जाता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। श्रोताओं, अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ माइंड टेस्ट का। इस स्तंभ में हम हर सप्ताह दो सवाल पूछते हैं जिसके जवाब आपको डाक या ईमेल के द्वारा हमें भेजने होते हैं, और सही जवाब भेजने वालों के नाम हम अपने कार्यक्रम में भी शामिल करते हैं। तो इंतजार किस बात का, आइए सबसे पहले जान लेते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए सवालों के बारे में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह का हमारा पहला सवाल था कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही जवाब है 11 मई। और पिछले सप्ताह का हमारा दूसरा सवाल था कि वैज्ञानिक पॉल लॉटरबर्ग किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसका सही जवाब है MRI। और इन सवालों के सही जवाब हमें लिख भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। अव्या कुमारी और आत्मिक सिंह ने रेड क्रॉस के निकट भागलपुर से, स्वस्ती कुमारी और ओजस्वी कुमारी ने बूढ़ानाथ भागलपुर से, और राकेश कुमार सिन्हा और चंदन कुमार सिन्हा ने पूर्णिया बिहार से। आप सभी श्रोताओं को हमारा कार्यक्रम ध्यान से सुनने के लिए और सही जवाब हमें लिख भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आइए अब नोट कर लें आज के सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है कि ग्रहों की गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया। सवाल एक बार फिर से सुन लें, ग्रहों की गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया। और आज का हमारा दूसरा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। सवाल एक बार फिर से सुन लें, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। श्रोताओं, सवाल तो आपने नोट कर ही लिया होगा, अब नोट कीजिए हमारा पता और लिख भेजिए इन सवालों के सही जवाब हमें डाक या ईमेल द्वारा। हमारा पता है कार्यक्रम विज्ञानवाणी अनुभाग, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी भागलपुर, पिन 812001, और हमारा ईमेल है phairbhagalpur@gmail.com यानी phairbhagalpur@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों और ईमेल्स का। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विज्ञानवाणी कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि विज्ञानवाणी का अंक आपको पसंद आया होगा। विज्ञानवाणी के माध्यम से आपको बहुत सारी विज्ञान के क्षेत्र में नई जानकारियां मिली होंगी, और इन रोचक जानकारियों से आप विज्ञान के अपने ज्ञान को और बढ़ा पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो श्रोताओं, घड़ी की सुई इशारा कर रही है और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो इस वादे के साथ ये होगी आपसे फिर मुलाकात इसी दिन, इसी जगह, इसी समय, यानी आकाशवाणी केंद्र भागलपुर पर। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त पीयूष आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप विज्ञान पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सुन रहे थे विज्ञान वाणी। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस इस अंतराल के बाद।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब ईवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर

0: अंदर से नहीं रुकी है गिनती में रेखा के बाहर।
1: मन की बात के संवाद तक
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरसंगम में आज प्रस्तुत है संगीत कुमार नाहर का शास्त्रीय गायन राग मुल्तानी में। विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है। बोल हैं सैया रे नादान गई, रचना 3 ताल में है। बोल हैं कलाई मोरे मतवारे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर संगम में अभी आप सुन रहे थे संगीत कुमार नाहर का शास्त्रीय गायन राग मुल्तानी में। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध थी। बोल थे सैयारे नादान राय, सैयारे नादान गई। रचना तीन ताल में थी। बोल थे छाड़ी दे कलाई मोरे मतवारे श्याम। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। प्रस्तुत है लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। आज की कलाकार हैं किराणा पाठक। कार्यक्रम के आरंभ में ये प्रस्तुत कर रहे हैं एक शिव भजन।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में अभी आप सुन रहे हैं किरण पाठक के गाए कुछ लोकगीत। लोकगीत का ये कार्यक्रम पुनः जारी रहेगा 1:20 से 1:10 होने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: अब आयात के लिए सरकारी लाइसेंस जरूरी। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री देश के सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों की सूची में हुए शामिल, देश के 100 जिलाधिकारियों को भी सूची में मिला स्थान। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को लेकर राज्य भर में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, हेल्पलाइन नंबर 104 पर 24 घंटे मरीजों को दी जा रही है सलाह। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा, ऑस्ट्रेलिया दौरे और FIH महिला हॉकी नेशंस कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी टीम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स में हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े नियुक्ति विवाद मामले में गठित वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष गौतम कुमार चौधरी ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार को नियुक्त अभ्यर्थियों से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसमें नियुक्ति से जुड़े कार्यालय आदेश, विषयवार और श्रेणीवार प्राप्तांक, जिलावार मेरिट सूची सहित अन्य दस्तावेज शामिल हैं। SDPO बैजू राम ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी।
2: JSSC और राज्य सरकार दोनों को पिछले 2 डेट से डायरेक्शन मिला था रिवाइज मेरिट लिस्ट सबमिट करने के लिए। JSSC के द्वारा आज रिवाइज मेरिट लिस्ट सबमिट कर दिया गया है और राज्य सरकार के द्वारा जो दस्तावेज लाए गए थे वो कुछ अपूर्ण थे, पूरे कम्प्लीट नहीं थे, तो कोर्ट ने उनको 1 हफ्ता का और समय दिया गया। अब अगले शनिवार को इस केस की फिर से सुनवाई होगी।
0: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने पिछले सप्ताह कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा जारी देश के सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों की सूची में स्थान मिला है। देश भर के करीब 800 जिलों के अधिकारियों के कार्यों के अध्ययन के बाद तैयार इस सूची में उन्हें बेहतर प्रशासन, जन सरोकार और विकास कार्यों के आधार पर चुना गया है। चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक क्षमता, प्रभावी गवर्नेंस, नवाचार, संकट प्रबंधन और जनभागीदारी जैसे मानकों को शामिल किया गया। इस सूची में देश भर के 100 जिलाधिकारियों को स्थान मिला है। पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने वन विभाग की DFO सबा आलम अंसारी के साथ मानगो से सटे दलमा पहाड़ की तलहट्टी के विभिन्न क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र को पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना पर सहमति बनी। प्रस्ताव के तहत चंद्रावती नगर, गोपाल नगर, कुमरुम बस्ती और पार्डी के आसपास पार्क, तालाब, पाथवे और बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों को इको

0: प्लाज्मा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। विधायक ने कहा कि दलमा की तलहटी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और यहां पर्यावरण अनुकूल विकास कार्य किए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल एटीआईआर न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। इधर राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नागरिकों को नियमित व्यायाम करने, फल और सब्जियों का अधिक सेवन करने और वजन नियंत्रित रखने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या शिकायत के लिए 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध है। रांची पुलिस ने वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर चलाए गए ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले दो दिनों में 100 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान 220 से ज्यादा लंबित वारंटियों को अभी निष्पादन किया गया, जिसमें रांची पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक माना जा रहा है। रांची पुलिस ने कहा है कि अपराध नियंत्रण और संगठित अपराध पर कार्रवाई के लिए भविष्य में भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे। रांची के कांके थाना क्षेत्र में पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त चेतावनी जारी की है कि ईंधन की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी या सप्लाई रोकने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस ने निर्देश दिया है कि सभी पंपों पर पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य रखी जाए, स्टॉक और सरकारी दरें बोर्ड पर प्रदर्शित हों और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दी जाए। बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों और खुले बर्तन में पेट्रोल डीजल देने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। साथ ही भीड़ होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने को कहा गया है। थाना प्रभारी साक्षी जमुआर ने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देवघर जिले की पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 30 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। देवघर के एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
1: तो गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और वहां पे छापामारी की गई, तो वहां पे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये लोग गांजा अगरतला से लेके गए थे और यहां पे डिलीवर करने वाले थे। उसके बाद उन तीनों का प्रवक्ति बयान के आधार पे और 3 नाम सामने आए और वो तीनों देवघर के रहने वाले थे जो उनसे गांजा खरीदते थे और यहाँ पे सप्लाई करते थे।
0: कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भोजपुरी और मगही भाषा पर कहा है कि जिन भाषाओं को बिहार में ही पूर्ण मान्यता नहीं मिली है उन्हें झारखंड में अलग दर्जा देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड की अपनी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की समृद्ध पहचान है जिनके संरक्षण और संवर्धन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य की मूल भाषाओं और संस्कृति को मजबूत करना सरकार की जिम्मेदारी है।
2: भोजपुरी कोई भाषा नहीं है, वो कुछ जिलों में बोली के रूप में जाना जाता है। मगही आपका बोली के रूप में जाना जाता है और भोजपुरी और मगही को तो खुद वह आपका बिहार में इसका मान्यता नहीं है और ऐसे में यहाँ पर उन भाषा का दर्जा देना ये कहीं से भी उचित नहीं है।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा है कि महिला टीम आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण में तैयारियों पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाले आगामी FIH महिला हॉकी नेशंस कप के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। बता दें कि भारतीय टीम की कप्तान सलीमा टेटे झारखंड के सिमडेगा की रहने वाली हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा विवाद मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने राज्य सरकार से मांगी पूरी जानकारी, 23 मई को होगी अगली सुनवाई। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर लगाया प्रतिबंध, मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखी गई चांदी, अब आयात के लिए सरकारी लाइसेंस जरूरी। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री देश के सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों की सूची में हुए शामिल, देश के 100 जिलाधिकारियों को भी सूची में मिला स्थान। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को लेकर राज्य भर में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, हेल्पलाइन नंबर 104 पर 24 घंटे मरीजों को दी जा रही है सलाह। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा, ऑस्ट्रेलिया दौरे और FIH महिला हॉकी नेशंस कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी टीम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक झूमर। कलाकार एक बार फिर किरण पाठक।

कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे थे एक देवी गीत। इसके साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब समाप्त होता है। आज की कलाकार थी किरण पाठक। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार।

अंग दर्पण कार्यक्रम सुनने वाला सब श्रोता भाई बहन के गैरू के नमस्कार। श्रोता भाई बहन, अपनो भारतवर्ष में हर दिन कोनो न कोनो खास दिन होय छे, त्यौहार होय छे, परब होय छे, दिवस होय छे। जेना कि कल्हे अपना सनी जे हमरो बहिन सनी छे आरो खास करी के सब जे सुहागिन बहिन सनी छे उन्हीं सनी ने कल वट सावित्री के व्रत मनेलके। बहुत बढ़िया लागले, हर जगह एकदम उत्सव रंग माहौल रहे। ई व्रत जे छिके पति के दीर्घायु के लेली करलो जाय छे और ये में वट वृक्ष के पूजन अही लेली करलो जाय छे कि वट वृक्ष जे होय छे दीर्घ आयु वाला होय छे, बहुत लंबा जीवन काल ओकरा होय छे। आरो कहलो जाय छे अपनो भारतीय धार्मिक मान्यता छे कि भारत में परंपरा में कि वट वृक्ष में तीनों जे देवता छे जे अपनो सनातन संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ यानी महेश, तीनों के वास ओकरा में होय छे। अही लेली ओकरो पूजन करलो जाय छे। बहुत बढ़िया। आरो समय अभी देखी रहलो छो कि कहनो आबी गेलो छे, एकदम प्रचंड गर्मी, उमस भरे भरलो जे छे गर्मी छे। तो ई त्यौहार जे छे प्रकृति के संरक्षण के संदेश भी दे छे। वट वृक्ष के ही पूजा होय छे। देखै छो कते आइ लेली कने छोटको कोनो कुआ पाड़े रहे, दोसरो कोनो मानी लेतिए, लेकिन अपनो जे पुरातन ऋषि सब रहे ओहि समय में हो आज के वैज्ञानिक जे सोच छे वहने हुनियो सोचे रहे। आरो अहने सब वृक्ष के पूज्य बनेलके, चाहे वो बड़गद हुआ, पीपल हुआ, तुलसी हुआ, यह सब की कहे छे कि अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन दे छे। और अभी जे गर्मी छे, मैं बात अही लिख करी रहलो छे कि यह गर्मी में जरूरी छे अभी कत्ते आखिर जे वातानुकूलित व्यवस्था करलो जाए, कत्ते करलो जेते, कत्ते घरों हुआ पड़ा, सब जगह नहीं हुआ पड़ा, लेकिन गाछ वृक्ष लगाए करी का ये तापमान का हर जगह पर कम करलो जा सके। तो आबे वाला समय में अभी जे मानसून अते जून में जुलाई में जो वर्षा के समय अते, तो एमे निश्चित रूप से सब कोई पौधारोपण करिए। अभी जे इत गर्मी छे एमे देखो कि बहुत आदमी के मन ओलबोलाए जाए छे। मन कहना ओलबोलाए छे, कोई कोई आदमी चक्कर आबी जाए छे केकरो केकरो, आरो चक्कर खाए के गिरी जाए छे। तो हो ऐ परिस्थिति में होय छे कि ओकरो जे रक्तचाप होय छे, ब्लड प्रेशर होय छे, हो बढ़ी जाए छे। श्रोता बंधु, आज के विश्व रक्तचाप दिवस, विश्व रक्तचाप दिवस प्रत्येक साल 17 मई के मनेलो जाए छे। ये दिवस के उद्देश्य लोगों का उच्च रक्तचाप के प्रति जागरूक करना और एकरा से होय वाला गंभीर बीमारी से बचावे के बारे में जानकारी देना छे। उच्च रक्तचाप के लगातार बढ़ते रहना अच्छा बात नहीं छे। एक बढ़ला से शरीर में जे छे कि खतरा बढ़ी जाए छे। सामान्य रक्तचाप जे अभी मान लो जाए छे 120/80 mmHg होय छे। उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण जे छे हो अत्यधिक नमक के सेवन करना। यानी देखबो कि कुछ कुछ लोग जे होय छे कि बहुत बेसी नमक खाय छे, तो ओकरा से ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप बढ़ी जाए छे। चिंता आरो तनाव, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, चिंता करना, तनाव में रहना, ओकरो से ब्लड प्रेशर बढ़े छे। धूम्रपान आरो शराब के सेवन करना, व्यायाम नहीं करना, आरो एना कहो कि शारीरिक गतिविधि नहीं करना या बहुत कम करना, मोटापा, बेसी तेल मसाला के प्रयोग करना और नियमित दिनचर्या है सनी रक्तचाप के कारण हो छे। लक्षण के अगर बात कर लो जाए तो सिर दर्द, चक्कर आना, थकान, सांस ले में परेशानी, धुंधला दिखाई देना और कहियो कहियो कोनो स्पष्ट लक्षण भी दिखाई नहीं पड़े छे, लेकिन देखो कि हवा आदमी का हाई ब्लड प्रेशर हो गए। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कोनो भी हुआ पड़ा, उच्च रक्तचाप भी हुआ पड़ा और निम्न रक्तचाप भी हुआ पड़ा, हालांकि आई हम बात कर रहे छे उत्तर उच्च रक्तचाप के। लंबा समय तक ये रोग रहला से हृदय रोग, किडनी के बीमारी, आंख के समस्या और हार्ट अटैक भी हुआ पा रहा। तो ऐ लेली
एकरासँ बचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि एहनो हम काम करिए, एहनो अपना जीवन के दिनचर्या रखिए जरा कि एकरासँ बचा हुआ पर एकरा लेली नियमित व्यायाम करना चाहिए, धूम्रपान आरो कोई भी नशा नहीं करना चाहिए जे शरीर के हानि पहुँचाबे छे। संतुलित भोजन लेना चाहिए, नियमित जाँच करवावे के चाहिए, नमक जितना जरूरी हुआ उतना खाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि तनी मनी कम में रहे तो ठीक है, आरो तनाव से कोशिश करना चाहिए कि दूर रहिए। सही जीवन शैली अपनाबो आरो रक्तचाप के नियंत्रण में लानो अबर को है नारा छिके। आरो एकरो साथे साथ श्रोता बंधु आज विश्व दूर संचार दिवस भी छिके। अंग दर्पण जे कार्यक्रम अपना सब सुनी रहलो छो भाई बहन, हमरा सबके बताएल चाहे छौ कि ई जे सुनी रहलो छो कार्यक्रम एकरो जे माध्यम छिके हौ दूर संचार के ही माध्यम छिके, चाहे रेडियो हुआ, टेलीविजन हुआ या कोई भी इंटरनेट के माध्यम से जेना भी जोन भी साधन से देखे छो है दूर संचार के ही एक माध्यम छिके। वही क्रम में आई भी जे छे कि आई दूर संचार दिवस मनेलो जाए छे, जना कि हर दिन कोनो न कोनो दिवस होय छे। दूर संचार यानी कि दूर दराज तक कोनो भी सूचना के आदान प्रदान करना। एक समय रहे सब जानते छो कि कोई साधन नहीं हुए रहे तो कई जगह पर सुनेल मिले छे कि कबूतर के माध्यम से संदेश भेजलो जाए रहे। ओकरो बाद में समय विकसित भेले, टेलीग्राम एले, टेलीग्राफ एले, ओकरो बाद ई टेलीफोन एले जेकरा में एकदम घुमाए घुमाए बटन सब लगेलो जाए रहे, नंबर लगावे रहे, तब फिर दूर से बात हो रहे। एक समय एले कि पूरा गाँव सनी में एगो टेलीफोन हुए रहे, ओकर है में पूरे गाँव बात करे रहे। लेकिन अभी के समय में हर व्यक्ति के पास एक दूर संचार के कोनो न कोनो यंत्र छे जेकरा में कि ओकरा से दुनिया एक वैश्विक गांव बनी गलो छे, एक दूसरा से जुड़लो छे, ईमेल छे, देश दुनिया के खबर ले ली अभी टेलीविजन के माध्यम से इंटरनेट के जरिया से कुछ सेकंड में ही प्राप्त हो जाए छे। विश्व दूर संचार हर साल जे छे 17 मई के मनेलो जाए छे और ई वह दिन के याद दिलाबे छे जब 17 मई 1865 के पेरिस में पहलो अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ सम्मेलन पर हस्ताक्षर करलो गेलो रहे और यही दिना अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार प्रौद्योगिकी संघ के स्थापना भेलो रहे। यह दिवस के विश्व दूर संचार और अंतर्राष्ट्रीय समाज दिवस के रूप में भी मनेलो जाए छे। ई दिवस 1969 से हर साल जे छे कि आज को दिन मनेलो जाए छे। तो है रहे कुछ विशेष जानकारी जे अपना सब के साथ हम साझा कर लिए। अब कार्यक्रम में आगू बढ़े छे आरु जे छे कि सुने छे एक लोक भजन।

0: दहिया बेचै लए हम गोकुला गेलौं प्यारे मोहनलाल। बहुत ही सुंदर ई लोक भजन। एकरो बाद कार्यक्रममे आरो आगू बढ़ै छै, आरो सुनबै एक अंगिका काव्य पाठ, लेकिन ओकरासँ पहिने कुछ जरूरी संदेश।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
5: लोकतंत्र में ई चुनाव होय छे बड़का त्योहार। लोकतंत्र में ई चुनाव होय छे बड़का त्योहार। वोट दिए ले जइहो निश्चित, छोड़िहो नै अधिकार। लोकतंत्र में ई चुनाव होय छे बड़का त्योहार। वोट दिए ले जइहो निश्चित, छोड़िहो नै अधिकार। एक वोट के मोल बहुत छे, एक वोट के मोल बहुत छे, ई समझो अनमोल बहुत छे। एक वोट के मोल बहुत छै, ई समझो अनमोल बहुत छै। समझ बूझ के सुनिहो सबके, यहाँ पर फटलो ढोल बहुत छै। भला बुरा कहनो छै ई सब मन में करो विचार। भला बुरा कहनो छै ई सब मन में करो विचार। वोट दिए ले जइहो निश्चित, छोड़िहो नै अधिकार। लोकतंत्र में ई चुनाव होय छै बड़का त्योहार। लोकतंत्र में ई चुनाव होय छै बड़का त्योहार। वोट दिए ले जइहो निश्चित, छोड़िहो नै अधिकार। वोट गिराबो राज बनाबो, वोट गिराबो राज बनाबो, अपनो हक आवाज उठाबो। वोट गिराबो राज बनाबो, अपनो हक आवाज उठाबो। जे चुनाव के मोल नै समझै, जे चुनाव के मोल नै समझै, ओकरो सबके ई समझाबो। 5 साल में है रंग मौका, 5 साल में है रंग मौका, ऐथौ एक बार। वोट दिए ले जइहो निश्चित, वोट दिए ले जइहो निश्चित, छोड़िहो नै अधिकार। लोकतंत्र में ई चुनाव होय छै बड़का त्योहार। वोट दिए ले जइहो निश्चित, छोड़िहो नै अधिकार, छोड़िहो नै अधिकार। सरवन भैया उझरैलो छै अपनो अलगे दुनिया में। सरवन भैया उझरैलो छै अपनो अलगे दुनिया में। मायके राखै भागलपुर और कनिये के पूर्णिया में। मायके राखै भागलपुर और कनिये के पूर्णिया में। माय बात के मानै नै छै, कनिये आरो गुदानै नै छै। माय बात के मानै नै छै, कनिये आरो गुदानै नै छै। सरवन भैया बात छुपाबै जेना कि दुनिया जानै नै छै। एक तरफ बेटा रो कर्तव्य, एक तरफ बेटा रो कर्तव्य, एक तरफ छै धर्मपति के। कोनो एहनो दिन नै जे भैया मुँह छुपाए के कानै नै छै। एकदम गेलै बूढ़ा ई देखो, एकदम गेलै बूढ़ा ई देखो, सरवन भैया जवनिया में। मायके राखै भागलपुर और कनिये के पूर्णिया में। केखरो जाय मनाबै सरवन, केखरो जाय समझाबै। केखरो जाय मनाबै सरवन, केखरो जाय समझाबै। दू जनानी रो झगड़ा में बल्हें मरद पिसाबै। कोई नै माने बात सबके अपनो अलगे सेखी, कोई नै माने बात सबके अपनो अलगे सेखी। माय मुँह लटकाबै कनिये अलगै नाच नचाबै। कोनो सुखे सुख नै भैया, कोनो सुखे सुख नै भैया, सरवन भाई के दुनिया में। मायके राखै भागलपुर और कनिये के पूर्णिया में। सरवन भैया उझरैलो छै अपनो अलगे दुनिया में। मायके राखै भागलपुर और कनिये के पूर्णिया में, कनिये के पूर्णिया में। याद

उछल कूद रसता भर आरो फिल्मी गाना गैने, बदमाशी करते जो कहियो रंगे हाथ धरइए, हाल बराबद हाल हुए जब मास्टर से पकड़िए।

खेत है में तोरी खाई छलिए पकलो लाल टमाटर। खेत है में तोरी खाई छलिए पकलो लाल टमाटर। खेत बला देखी न लिए मन में लगे यहू डर। खेत है में तोरी खाई छलिए पकलो लाल टमाटर। खेत बला देखी न लिए मन में लगे यहू डर। जानी गेला पर प्रचार खेती हर घर पर जाय के। जानी गेला

जाय बगीचा गर्मी में सब खाए छलों टिकोला, जाय बगीचा गर्मी में सब खाए छलों टिकोला, चारे अना में मिले छले तब रंग रंग बर्फ के गोला, जाय बगीचा गर्मी में सब खाए छलों टिकोला, चारे अना में मिले छले तब रंग रंग बर्फ के गोला, दोल दलिच्चा लुक्का छिप्पी आरो गुल्ली डंडा, दोल दलिच्चा लुक्का छिप्पी आरो गुल्ली डंडा।

घिन। दादी के खिस्सा में कुत्ता मैना बोले बाला, दादी के खिस्सा में कुत्ता मैना बोले बाला, दादा रोज सुनाबे खिस्सा भूत परे तो बाला, दादी के खिस्सा में कुत्ता मैना बोले बाला, दादा रोज सुनाबे खिस्सा भूत परे तो बाला। भूत ने होई छे सच में बेटा पप्पा ई समझाबे, भूत ने होई छे सच में बेटा पप्पा ई समझाबे, तैयो डर लगे ते मम्मी अपनो साथ सुलाबे। बस बिट्टी के पीछू तहिया, बस बिट्टी

0: अरे वाह, कितना बढ़िया। यह तो होय छे कवि आरो कवि के मन, जेकरो नजर जेकरो जे दृष्टि जे होय छे उ हर जगह पड़े छे। अभी देखो कि निश्चित रूप से याद बहुत आवे छे उ बच्चा वाला दिन, आ पत्ता के घिरनी जब हाथ में घूमे छले गिन गिन। त है देखो कविता से आरो कितना बात हौ, किचन, बस बिट्टी, दादी, नानी, टिकोला, टमाटर, सब कुछ निश्चित रूप से अपना सबके भी याद आबि गेलो होते। और यह उद्देश्य होय छे एक कवि के कि अपने के यहाँ बैठलो बैठलो कोनो भी उम्र में हुनी अपनो शब्द के जोड़ी के, शब्द के माला बनाए के एक कविता के रूप में हमरा सुनी के सामना में प्रस्तुत करे छे। आरो हम सब अपनो वह जीवन के तत्काल कुछ देर के लिए निश्चित रूप से जिये लगे छे। एक इतना सुंदर कविता वहू में जे मानव समाज के अपनो हो बात रहे, जेकरा में कि सामाजिक परिस्थिति के केना सामंजस्य एक पुरुष बैठाबे छे, हो कविता भी बहुत ही सुंदर लगले। निश्चित रूप से अपने के भी लगलो होते बहुत बढ़िया। आरो अब ये कार्यक्रम के समय कही रहलो छे कि अपना सबसे हमें सब लिए इजाजत, फिर मिलबे अगला कार्यक्रम में। तब तक के लिए सबका गैरू के नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि TRE4 भर्ती परीक्षा के लिए जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। श्री तिवारी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया की तैयारी तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने परीक्षा आयोजन को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली है। प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकानों की गिनती और उनके सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। गणना कार्य को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। इसके माध्यम से लोगों की शिकायतों और आपत्तियों का निष्पादन भी किया जा रहा है। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि जिलाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी विनोद दुहन ने लोगों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़ कर भागीदारी की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। ये सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव 29 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। देश का प्रमुख औद्योगिक संस्थान अडानी समूह ने सारण जिले के मस्तीचक में आज अखंड ज्योति आंख अस्पताल के निर्माण की नींव रखी है। इस अवसर पर आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में समूह के प्रमुख गौतम अडानी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। श्री अडानी ने कहा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों को अंधापन और दृष्टि दोष से मुक्त करने के लिए उनका समूह संकल्प के साथ कार्य कर रहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नालंदा जिले के राजगीर में मलमास मेले का शुभारंभ किया। यह मेला 15 जून तक चलेगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री चौधरी ने कहा कि सनातन धर्म के 33 करोड़ देवी देवता एक माह के लिए राजगीर में प्रवास करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को मलमास मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजगीर तीर्थ रक्षार्थ पंडा समिति के सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि इस वर्ष करीब 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इधर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए 950 दंडाधिकारी की निगरानी में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों में उमस के साथ तेज गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज किए जाने की संभावना है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान भी जताया है। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 149 बोतल नेपाली शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। रोहतास जिले में कल से 25 मई तक लगने वाले जनजातीय गरिमा उत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने तैयारियों की समीक्षा की। वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार ने आज पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया प्रखंड अंतर्गत सिकरहना नदी पर बन रहे पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से निर्माण की तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी ली। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
2: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपये 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपये 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपये 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा है। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
4: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। हम
5: श्रोताओं, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है इस समय आकाशवाणी भागलपुर मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। पेश है आपके मेल और पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है, इस्तकबाल है, इस्तकबाल है। इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त संगीता।

जी दोस्तों, कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म संगम से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और इस गाने के लिए चिट्ठी भेजी है आप सबों ने। धोरैया गंगदौरी से आप हैं रामविलास, रविकांत, नीरज, अमर, मारुति, सावित्री देवी, कवित्री, तनुजा और सांदीप हरी। इसी गाने के लिए फरमाइश भेजी है बड़ी खंजरपुर एकता रेडियो श्रोता संघ से भाई गुलफराज आलम, बेगम शमा आरा, दोस्त जमालुद्दीन नेपाली और परिवार के सभी लोग। नीलकोठी मोहल्ला साहबगंज भागलपुर से आप हैं छोटी छोटू, सृष्टि, मोहितरा, सोनम, डॉक्टर सुभट कुमार मंडल। सुदामानगर से हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई, प्रफुल्ल लाल बागची। मुंदीचक भागलपुर से विशाल कुमार, ऋतिक रोशन, डोलू और उनके परिवार के सभी लोग। और इसी गाने के लिए फरमाइश भेजी है बैजानी चौबे टोला से वर्षा, वंदना, कन्हैया, मेघा साहब जी, शालू, सानू, निहाल, साक्षी, कुकू, चीकू, पवन, कल्लू, मल्लू, सोनी, नीतू, मीतू, ईशु, अनु और आद्या ने। मैं भेज रही हूँ अपने दिल की बात दिल से हवा के जरिए, मैं भेज रही हूँ अपने दिल की बात दिल से हवा के जरिए, क्या आप नहीं कर सकते हमसे बात अपने खत के जरिए।

दोस्तों, अगले गाने के लिए फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी और आवाज़ है, इस गाने के लिए आवाज़ दिया है लता मंगेशकर ने और फरमाइश भेजी है दोस्तों आप सबों ने। बूढ़ानाथ रोड भागलपुर से आप हैं गोपाल प्रसाद साह और इनके परिवार के सभी लोग। ग्राम बात से राजू, सुमन, हिमांशु, छोटी, बाबू, कंचन, डब्लू, बबली, पुचन और बब्बू। अनिरुद्ध चौक चुन्नी मधेपुरा से भाई प्रेमचंद ठाकुर, रानी मीना ठाकुर, मुरारी ठाकुर, ऋषि ठाकुर, संजीव मिश्र, सुभाष मिश्र, भवानी, लव कुश, अरुण झा और राजू खान। मुजाहिदपुर पूर्व टोला से राजू खान, आलिम आदिब और सभी साथी। इसी गाने के लिए फरमाइश भेजी है मस्कंद चंपानगर से अशोक कुमार, शेखर प्रसाद, सुनील ठाकुर, गणेश दास, उर्मिला देवी और उनके घर के सभी लोगों ने। साथ ही इसी गाने के लिए फरमाइश भेजी है दोस्तों लालूचक भागलपुर से श्रीमती गायत्री देवी, आरती कुमारी, रेखा, पूनम, रीता, अंजलि और उनके परिवार के सभी लोग। तो लीजिए दोस्तों, अपनी पसंद का ये गीत सुनिए, आपके एंड्रॉयड मोबाइल और रेडियो सेट पर जा रहा है ये खूबसूरत सा नगमा। अपने हाथों अपनी खुशियां मिटाने वाले कम होते हैं, अपने हाथों अपनी खुशियां मिटाने वाले कम होते हैं, सुना है गम के अंधेरे में उजाले कम होते हैं। फिर भी ना जाने क्यों हम आप पर भरोसा करते हैं, ये जानते हुए भी कि निभाने वाले कम होते हैं।

लीजिए दोस्तों, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये रात फिर ना आएगी फिल्म में महेंद्र कपूर को, और इस गाने के लिए ख्वाहिश भेजी है आप सबों ने। भागलपुर भिकनपुर भट्टा रोड विशहरी स्थान से योगेंद्र प्रसाद राय, विभा राय, विप्लव वैभव यामिनी और यशा भवा, भानपुर भोपाल मध्य प्रदेश से राम गोपाल विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, योगिता विश्वकर्मा और परिवार के सभी लोग इसी गाने के लिए फरमाइश भेजी है। तातारपुर भागलपुर से नवा कौसर, अरमान अहमद, अरशान अहमद, जारिश अहमद, हाजिक अहमद, सुमरान, शुमी, शगुप्ता और परिवार के सभी लोग, और वह अली लुत्फ अली लेन से मोहल्ला काजिब अली चौक से फैजल नसीम, रोज सोमेरा, शहरीन, फैसल, नसीम, शादान, सिमरा, सिदरा, जोया और अमन। नज़ीर मोमिन लेन से आप हैं शब्बीर अहमद, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर, तारिक अनवर और सभी परिवार के लोग। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप हैं मीका वीरक, बलविंदर वीरक, जयतेक वीरक, हरदेव और परिवार के सभी लोग। और लालूचक भागलपुर से आप हैं आदित्य भार्गव और उनके परिवार के सभी लोग। मुंगेर से शिवम कुमार और परिवार के सभी लोग। तो लो लीजिए दोस्तों, आप सबों की नज़र है ये खूबसूरत सा गीत। हमने किसी से प्यार किया था, हमने भी किसी से प्यार किया था, उनकी राहों पर खड़े होकर इंतज़ार किया था। न पता था कि भूल जाएंगे वो हमें, न पता था कि भूल जाएंगे वो हमें, शायद मैंने बेवफा से प्यार किया था।

जी हाँ साथियों, और अब चलेंगे हम उस पड़ाव पर जहाँ पर युगल गीत प्रारंभ होगा। और ये युगल गीत हमने लिया है फिल्म वापस से, और सुनने के लिए तमन्ना रखते हैं आप सभी श्रोता भाई बंधु। गंगा विहार रानी तालाब से आप हैं नंद किशोर मंडल, मीरा देवी, नीलम, मनोज, अमित, बबली, स्वीटी, सुरुचि, रॉली, पायल, अनवी, आशी और ईशु बाबू। वहीं से आप हैं बाबू, मीठी, बबलू और परिवार के सभी लोग। सुल्तानगंज सीतारामपुर से प्रमोद पासवान, सुस्मिता सागर, दीपा, करीना और सूरज। राजनगर मधुबनी से आप हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, ऐसबाग, पीली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखुरी गुप्ता और परिवार के सभी लोग। और इसी परिवार के लोग हैं राजनगर गांधी चौक से मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मयराज और गुनगुन। अकबरनगर भागलपुर से आप हैं अशोक कुमार गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता, सोनू कुमार गुप्ता, दीशु कुमार, अंशु कुमार। और इसी गाने के लिए फरमाइश भेजी है सकरुल्ला चक कव्वाली मैदान भागलपुर से शमसाद खान, वली खान, अली खान, मिस्टर खान, रुस्तम खान, आजम खान, अरवाज खान, गयास खान और उनके परिवार के सभी लोगों ने। जी हाँ दोस्तों, ये गाना आप सबों को भेज रही हूँ आपके एंड्रॉयड मोबाइल और आपके रेडियो सेट पर। चाहे धूप हो या छाँव हो, हर वक्त ए दोस्त तेरा साथ हो। चाहे धूप हो या छाँव हो, हर वक्त ए दोस्त तेरा साथ हो। मांगी है रब से बस दुआ यही, तेरे संग खुशियों की बरसात हो।

0: फरमाइशी फिल्मी गानों का ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। दोस्तों, अब जो गीत हम आपके लिए लाए हैं उसे हमने लिया है फिल्म खामोशी से, और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने। और इस गाने के लिए दोस्तों चाहत है आप सबों की, आप हैं अमरपुर से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवि श्रीवास्तव। भाटपारा दतरंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, ज्ञावेंद्र कुमार वर्मा, डोमन ठाकुर। महादेव घाट अमलेश्वर से आप हैं सुमन ठाकुर, डोमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर। और मुजाहिदपुर पूरब टोला भागलपुर से आप हैं मोहम्मद खालिद अंसारी, मोहम्मद ताहिर अंसारी, कादिर, मास्टर सरवर, आफ्ताब आलम, मिराज आलम, एम के नाज। हुसैनाबाद भागलपुर से नुरुल होदा, जीनत अमान, सोनी अमान, छोटी अमान, शाद बाबू, बिट्टू, राजेश, मोहम्मद मुनव्वर हुसैन, अनश बाबू और परिवार के सभी लोग। और गड़िया मौजे उस्तू से प्रदीप कुमार, आशीष मंडल, कुंदन, करीना, पूजा कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी और परिवार के सभी लोग। साथ ही अहमदाबाद से आप हैं भालचंद्र बड़के, जतिन मेहता, विकास बड़के, फुलवा मेहता और नीलेश बड़के। जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।
1: ओ शाम कुछ

दिल को छू लेने की वो शरारत तुम्ही ने की, दूर तक साथ चले ये ख्वाहिश तुम्ही ने की, आसमां और ज़मीं में फासले थे बहुत,

इसके साथ ही दोस्तों अब समाप्त होता है आपकी फरमाइशों का ये पिटारा। समेटती हूँ और सबको फिर से नमस्कार करते हुए कार्यक्रम से विदा चाहती हूँ। अभी आप सुन रहे थे आपके मेल और पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सामुदायिक गान शिक्षा पाठ कार्यक्रम।

बच्चे लोग, ये गाना सुना, ठीक से सुना। अच्छा, अब इसको सीखना है। अब सीखने के लिए पहले तो लिखना होगा, हाँ, ठीक से आस्ते आस्ते आस्ते आस्ते लिख लो, हाँ, क्योंकि ये बंगला गाना है तो लिखने में तकलीफ होगी, मगर हम समझा देंगे, हाँ, कोई घबराने की बात नहीं। लिखो, अस्थाई इसको बोलते हैं पहले। ऊर्ध्वे आकाशे ओड़े निशान, क्या लिखा? ऊर्ध्वे आकाशे ओड़े निशान, बाताशे बाजे बिशान, बाजे बिशान, हाँ, बाताशे बाजे बिशान, ऊर्ध्वे आकाशे ओड़े निशान, बाताशे बाजे बिशान, ठीक से लिखा, हाँ, फिर बोलने की जरूरत नहीं तो। अच्छा, आगे, कौन थे देशो प्रेमेर गान, कौन थे देशो प्रेमेर गान, कोरेछी चारण। उसके बाद वंदे मातरम, ये तो एकदम सीधी बात है, वंदे मातरम, हाँ। अब इसका क्या माने होता है, क्या अर्थ होता है, वो समझने की कोशिश करो, हाँ। गाना अगर माने नहीं समझोगे तो फिर गाने में कोई मज़ा नहीं है, हाँ। ऊर्ध्वे आकाशे, ऊर्ध्वे यानि ऊपर में, आकाश में क्या होता है, ओड़े, उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, निशान माने ध्वजा, पताका, हम्म। बाताशे बाताश माने हवा में क्या हो रहा है, बाजे माने बजता है, क्या बजता है, बिशान याने भोपा, तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो है ना, वो बजता है, हाँ, ठीक है। उसके बाद कौन थे देशो प्रेमेर गान, कौन थे माने कंठ मालूम है, गले से, हाँ, देश प्रेम, गान यानी गाना, कोरेछी उच्चारण माने हमने हमारे गले से देशभक्ति का गाना उच्चारण किया, गाया, क्या क्या देश प्रेम का गान, वंदे मातरम, ठीक है। अभी अंतरा, हाँ, पहला अंतरा, माटी के आम्रा जेने छी माँ, माटी के आम्रा जेने छी माँ, ठीक लिख रहे हो जो तुम लोग, हैं, हाँ, माटी के आम्रा जेने छी माँ, कोनो भय डर कोरबो ना,

0: विरोधी यानी अगर अगर इस पार उस पार दो पार अगर बह जाए तो वो हम लोग क्या मंत्र सीखा है, मंत्र सीखे छी क्या सीखा है मंत्र, चरई बेटी माने आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, जितना भी दुख है जो कुछ हो बढ़ते रहो आगे, कोरे छी मृत्युपन, हमने मृत्यु का कसम खाया है। क्या हमारा देश प्रेम का गान वंदे मातरम, ठीक है। अब आस्ते करे करके इसको गाने की कोशिश करो। हाँ अच्छा, गाने के पहले छंद में बोलना है, ताल में बोलना है। हाँ बजाओ भैया, एक दो तीन चार। हाँ ठीक है। हाँ, ऊर्ध्व आकाशे ओरे निशान,
1: आकाशे ओरे निशान,
0: शाबाश। बाताशे बाताशे बाजे बिशान,
1: बाताशे बाताशे बाजे बिशान,
0: वाह वाह वाह। कौन थे देश प्रेमेर गान कोरेछी उच्चारण, बोलो
1: कौन थे देश प्रेमेर गान कोरेछी उच्चारण,
0: क्या वंदे मातरम,
1: वंदे मातरम।
0: अब इसको गाने की कोशिश करो। हाँ ये सा है, सारी गा मा पा, ऊर्ध्व आकाशे ओरे निशान, गाओ
1: ऊर्ध्व आकाशे ओरे निशान,
0: इसी की माफक दूसरी लाइन। हाँ बाताशे बाताशे बाताशे बाताशे, बोलो
1: बाताशे बाताशे बाजे बिशान,
0: फिर से बोलो
1: ऊर्ध्व आकाशे ओरे निशान, बाताशे बाताशे बाजे बिशान।
0: उसके बाद देखो

0: ठीक याद रहेगा तो हा? अब सारे गामा पाधा निशा सा से शुरू होता है हाँ अंतरा। माटी के आम राजे ने छीमा गाओ,
1: माटी के आम राजे ने छीमा। कोनो भय डर।
2: अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गान शिक्षा पाठ कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये भागलपुर केंद्र है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। संवेद सुनो में लीजिए, सुनिए देशभक्ति गीत।

संवेद स्वरों में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 3:25 होने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय सेवा का प्रसारण। इसे आप सुनेंगे शाम के 5 बजे तक। संध्या 5 बजे से आकाशवाणी भागलपुर का प्रसारण यथावत जारी रहेगा।

आप सुन रहे थे धरती, ये फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इस गीत को सुनना चाहा राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी और पूजा खटक, और जिला अमरावती प्रवीण नगर से। इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने। और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओं, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमने शामिल किए आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतजार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए। मन चाहे गीत कार्यक्रम से अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।

ये है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: आप कहीं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं?
1: नहीं शकुंतला, ये सत्य है, ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
0: ओह, अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मन इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
1: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
0: जी, अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा।
2: अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
1: आप?
0: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य,
2: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
1: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
0: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं।
2: आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
1: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
0: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
1: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं।
2: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है।
1: रनिवास की इतनी रानियों के रहते हुए भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
2: हम निश्चिंत हुई आर्य।
0: अनसुईया, देख तो वो मृगछाना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा है।
2: हाँ चलो, इसे इसकी माँ के पास पहुँचाएं।
0: अरे अरे, मुझे अकेली छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना, अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला?
2: सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
0: रुको ना, प्रेमवदा, अनसुईया।
1: चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक यहाँ उपस्थित है
0: जी।
1: कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा चलूं या?
0: नहीं नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं यार?
1: पाप?
0: पूज्य लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
1: प्रेम में पूज्य कोई नहीं होता शकुंतला, केवल प्रिय होते हैं। और मैं अपनी प्रिय शकुंतला को इस दशा में देखकर चुपचाप कैसे बैठा रहूं?
0: अब जाने भी दीजिए मुझे।
1: क्यों जाने दूं तुम्हें?
0: पूर्ववंशी राजा को कुछ तो शील का ध्यान रखना ही चाहिए ना।
1: शील और संकोच की दीवार हमारे बीच और कब तक रहेगी शकुंतला?
0: मैं आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूं आर्य। प्रेम में आपसे अधिक व्याकुल होने पर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती।
1: इतना भय उचित नहीं शकुंतला।
0: नहीं आर्य, मेरे मन की उलझन को आप नहीं समझ सकते।
1: क्या उलझन है तुम्हारी? बताओ तो।
0: अब कैसे बताऊं आर्य? पिता कर्ण को यदि हमारे आकर्षण का पता चल गया तो।
1: गुरुजनों से डरने की कोई बात नहीं है शकुंतला। पूज्य कुलपति धर्म को भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी वो पूरा नहीं मानेंगे। और ऋषि कन्याओं के गंधर्व विवाह तो पहले भी हुए हैं और उनके पिताओं की सहमति से हुए हैं।
0: आपकी बात सही होते हुए भी मेरी दुविधा दूर नहीं हो पा रही है आर्य।
1: तुम चाहो तो अपनी सखियों से पूछ लो।
0: हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। किंतु आप मेरा हाथ तो छोड़िए।
1: नहीं, अभी नहीं छोड़ूंगा।
0: तो फिर कहो।
1: मुझ प्यासे भंवरे को तुम्हारे अधर पुष्प का रस मिल जाए तब।
0: ये क्या कर रहे हैं आप?
3: अरे चकली, आप अपने प्रिय से विदा लो, रात आ पहुंची है।
0: ओह, लगता है मुझे देखने के लिए आर्या गौतम इधर ही आ रहे हैं। आर्या, आप इस वृक्ष की ओट में छिप जाइए।
1: ठीक है
3: शकुंतला, अब कैसी हो बेटी? शरीर का ताप कुछ कम हुआ?
2: हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताप भी कुछ कम हो गया है।
3: लो, इस कुशा के जल से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी।
2: अच्छा,
3: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।
2: हाँ चलो माँ।
0: चलना ही होगा, अब पछताने से रोने कलपने से क्या होता है। मन, जब वो तुम्हारे साथ थे तब तो तुम भयभीत बने रहे, अब तो अतृप्ति की इस पीड़ा को झेलना ही होगा तुम्हें। हे संताप हरने वाली लता कुंज, बिहार के लिए बहुत शीघ्र मैं फिर उपस्थित होंगी और तब तुम अतृप्त नहीं रहोगे।
1: मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी मैं चूम नहीं सका। अब उस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय है? उसके शरीर से मसला हुआ ये फूलों का बिछावन, उसके हाथों से सूख कर भरे हुए कमलनाल के ये आभूषण, कमलिनी के पत्तों पर नखों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र।
4: बचाइए, बचाइए राजन, बचाइए। यहाँ वेदी के चारों ओर काले काले राक्षस फिर दोहराने लगे हैं। रघुवंशी पवित्रता की रक्षा कीजिए राजन।
5: वो इन राक्षसों ने फिर से रूठा लिया, मैं अभी जाता हूँ।

0: बहुत अच्छा हुआ प्रियंवदा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया, किंतु एक चिंता भी है सखी।
1: चिंता? अब क्या चिंता है अनुसुया?
0: यही कि आज यज्ञ हो चुकने के बाद ऋषियों से विदा लेकर जब ये राजन अपने रनिवास में पहुंच जाएंगे तब इन्हें यहाँ की सुध भी रह जाएगी या नहीं।
1: ये चिंता व्यर्थ है अनुसुया, ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले लोग कपटी नहीं हुआ करते। हाँ, पिता कण्व को लेकर मैं अवश्य कुछ आशंकित हूँ।
0: उनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इस विवाह का विरोध नहीं करेंगे।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि शकुंतला के विवाह का संकल्प तो वो पहले ही कर चुके थे। उनकी तो कामना ही थी कि कोई योग्य वर मिल जाए, और संयोग से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई, नहीं?
1: तेरा कहना सही है अनुसुया, पिता कण्व भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है कुटिया में? कोई है?
0: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
1: शकुंतला तो कुटिया में ही है।
0: है तो, किंतु आज वो कुछ अनमनी सी है।
1: अच्छा देख तो, पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे ना?
0: कैसे होंगे, अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है।
1: ओह मैं तो भूल ही गई थी, चलो चलो कुछ और फूल चुन ले।
0: चलो।
2: हरि ओम दुष्टा, अतिथि का अपमान करने वाली संसद, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिसके ध्यान में तू मुझ जैसे तपस्वी की सुध नहीं ले रही है, वो भी तुझे बहुत स्मरण दिलाने पर भी पहचान नहीं पाएगा। वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा।
1: अनर्थ हो गया, लगता है अपने बेसुधपन में शकुंतला ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया है। अरे ये तो कोप की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
0: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटाना, तब तक मैं अर्ध का जल लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी जा। हे भगवान, इस फूल की टोकरी को भी अभी गिरना था।
1: अनुसुया
0: आ गई। प्रियंवदा, ऋषि कहाँ है?
1: ऋषि दुर्वासा कब किसकी सुनते हैं?
0: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
1: कोप तो शांत नहीं हुआ अनुसुया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
0: तो
1: तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, शकुंतला का ये पहला ही अपराध है और वो भी अनजाने में हुआ है।
0: फिर
1: इस पर उन्होंने कहा

0: अरे ये तो दिन निकल आया, कितना मनोहर दृश्य है। एक ओर औषधिपति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण रूपी सारथी को आगे किए हुए सूर्य का रथ चला आ रहा है। एक के अस्त होने के साथ ही दूसरे का उदय, जैसे दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। चलो हवन का समय हो रहा है, गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
1: अनुसुया, ये अनुसुया उठना।
2: क्या हुआ प्रियंवदा?
1: अरे होना क्या है, भोर हो गई, आज उठना नहीं है क्या?
2: मैं सोई कहाँ हूँ प्रियंवदा।
1: अच्छा, आश्रम में कोई राजर्षि आए हैं क्या?
2: परिहास न कर प्रियंवदा, मेरा मन वैसे ही कुछ ठीक नहीं।
1: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
2: कुछ नहीं सखी, बस रह रहकर ऋषि दुर्वासा का शाप सता रहा है। मुझसे अब शकुंतला की दशा देखी नहीं जाती प्रियंवदा।
1: किंतु शकुंतला तो पूरी तरह ठीक है अनुसुया।
2: हाँ ठीक है, किंतु कब तक? उस राजर्षि को गए इतने दिन बीत गए, किंतु शाप के वशीभूत उसने अब तक शकुंतला की सुध नहीं ली, और कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी बेचारी?
1: चिंता क्यों करती है अनुसुया, शकुंतला को शाप से मुक्त कराने के लिए राजर्षि की दी हुई अंगूठी तो है अपने पास।
2: है तो सही प्रियंवदा, किंतु उस अंगूठी को दिखाने वहां जाएगा कौन?
1: कौन जाएगा? शकुंतला जाएगी।
2: उस बेचारी को तो इस दुर्भाग्य का भान ही कहां, और उस पर एक अनर्थ और हो गया है, वो मां बनने वाली है।
1: तू भी तो एक बावली है, इतनी अच्छी बात को अनर्थ कह रही है।
2: तू नहीं समझ रही प्रियंवदा, पिता कण्व को जब इन बातों का पता चलेगा तो।
1: पिता कण्व को इन सब बातों का पता चल भी गया और वे अप्रसन्न भी नहीं हुए।
2: सच?
1: हाँ।
2: तू सच कह रही है प्रियंवदा?
1: हाँ अनुसुया, मैं भी शकुंतला के पास से ही आ रही हूँ। पिता कण्व वहाँ उसे आशीर्वाद दे रहे थे।
2: आशीर्वाद दे रहे थे?
1: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
2: हे भगवान।
1: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
2: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंवदा, पिता कण्व को इस घटना का पता कैसे चला?
1: आकाशवाणी से।
2: आकाशवाणी से?
1: हाँ, यात्रा से लौटकर पिता कण्व जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे आकाशवाणी हुई।
3: जैसे शमी वृक्ष के भीतर होता है पावक का वास, वैसे ब्राह्मण शकुंतला में जगहित पौरव तेज निवास।
2: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली, तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
1: किंतु अनुसुया, इस कृपा में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
2: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
1: हमारे इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनुसुया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
4: गौतमी, शरद्वत आदि से कहो शकुंतला को पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए।
1: चलो अनुसुया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
2: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: देख तो अनुसुया, मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, पगली ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है?
2: नहीं शकुंतला, नहीं, इस तरह तो तू हमें भी।
3: अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो,

0: शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
1: कितने सुंदर,
0: कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र,
1: ये सलोनी महावर,
0: ये आकर्षक आभूषण। जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
1: क्या अर्थ है आर्या?
0: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
1: माँ,
0: माँ, प्रियंपदा, अनुसुईया, अब और देर ना करो, चलो जल्दी से इसे ये आभूषण पहना दो। अच्छा।

0: आज शकुंतला चली जाएगी, सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है। आंसुओं को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति भी धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे गृहस्थों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तात कर्म इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।
0: बेटी, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद भी वरदान है भगवान।
0: आओ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

वन देवताओं से भरे हुए तपोवन के वृक्षों, आज तुम्हारी प्रिय शकुंतला जा रही है। स्वयं प्यासी रहकर भी जो पहले तुम्हारी प्यास बुझाया करती थी, आभूषणों का आकर्षण और श्रृंगार की इच्छा होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण जिसने कभी तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। उसे विदा दो वन देवताओं, उसे विदा दो।

शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे हुए ताल हो, धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष। इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मंद मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।

0: मेरे पांव आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।
1: तपोवन से बिछड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला, ये तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो और उन्हें नाचना छोड़ दिया है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। हिरणियां भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही है। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं।
0: बाबा बाबा बाबा, मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिल लूं बाबा।
2: हाँ बेटी, मैं जानता हूं उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।
0: चलती हूँ वन ज्योत्सना, चलती हूँ। देखो आम के वृक्ष के अनुराग ने अपनी बहन को भूलना नहीं। पता नहीं अब तुमसे मिलना होगा भी या अनुसुईया, मेरी सखी तुम इसका ध्यान रखना।
2: बेटी निश्चिंत रहो, अपने पुण्य प्रभाव से इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप पर पा लिया है। मुझे भी तुम दोनों की चिंताओं से एक साथ ही मुक्ति मिल गई है।
0: पापा

0: खींच रहा है।
1: ये तेरा लाडला, अरे शावक है बेटी।
0: मेरे लाडले, अब तो मुझे जाना ही होगा। देख देख, मेरी जगह अब तेरी देखभाल बाबा करेंगे।
2: सरोवर का तट आ गया है भगवान।
3: हाँ शारंग्राव, पूर्वजों ने कहा है कि प्रियजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौटाना चाहिए।
2: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करें भगवान।
3: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं, आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं हैं, फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग।
0: बाबा, बाबा।
3: पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना बेटी, और देख पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। दास दासियों से भी स्वजनों का सव्यवहार रखना
0: बाबा,
3: और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
0: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला, कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा। प्रियमता आओ शकुंतला, हमसे गले तो मिलो।
4: सखी
0: तो क्या तुम लोग भी यहीं से लौट जाओगे।
3: हाँ बेटी, अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहां रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
0: अनसुया, शकुंतला, तुम लोगों से अलग

0: कैसे जी पाऊंगी? बोलो।
1: इतनी अधीर न हो बेटी, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर राज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां बनेगी।
0: शकुंतला, ये राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना।
2: और यदि इतने दिनों बाद वे तुझे पहचानने में भूल करें तो उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, समझी?
0: ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? डरने की कोई बात नहीं शकुंतला,
2: हम तो यूं ही तुझे हर परिस्थिति के लिए सचेत कर रहे हैं।
0: किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
3: दिन बहुत चढ़ाया है भगवान, अब हमें चलना चाहिए।
1: हाँ शरण करो, अब तुम लोगों को जाना ही चाहिए। जाओ बेटी शकुंतला, चिरकाल तक इस समूची पृथ्वी की सौत बनकर राज करो, और उसके बाद अपने अद्वितीय वीर पुत्र को राज्यभार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम में आओ। यहां के शांत वातावरण में सुख से विश्राम करो। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारा पथ प्रशस्त करे, तुम्हारा मार्ग

0: कन्या सचमुच परायधन होती है। शकुंतला को आज उसके पति गृह भेजकर मन पूरी तरह निश्चिंत हो गया। किसी की धरोहर को सकुशल लौटा देने में कितना संतोष है।
1: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या?
0: 1993 फिल्म साहिब।

0: साहेबा।
1: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
2: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त क्या कैंची वो लगाई, नीचे लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका।
1: जी जी जी।
2: हाथ पाथ देखा उन्होंने, गड़बड़ है क्योंकि जा चुके थे। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
2: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
1: पिछले एपिसोड में आपने सुना, रमेश तलवार साहब इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है।
2: बसेरा का भी इसी तरह सा भाई, देखिए दूसरा आदमी जब रिलीज हुई
1: हाँ
2: तो बहुत तारीफ हुई, राखी जी का बहुत उसमें योगदान था कि उन्होंने काम किया।
1: नहीं तो एक काम करते हैं, पहले दूसरा आदमी की बात करते हैं फिर बसेरा की बात करते हैं।

0: दूसरा आदमी में ऐसा हुआ कि जब पिक्चर की स्टोरी बन गई, आइडिया मतलब सोच लिया गया, पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर थे,
1: मतलब दीवार के बाद का थॉट था,
0: हाँ मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी, वो बन गई आइडिया वाइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कुछ, और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया, तीन चार फिल्मों में असिस्टेंट था ना मैं,
1: जी जी
0: सारी फिल्म में त्रिशूल में भी था, उसमें था, और सब हर सिटिंग में स्टोरी सिटिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ कोई ऐसा। फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर किए, तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूं तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर, तो जो भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट हैं, दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डीटी में जाएंगी वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की कुछ बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटो एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी, तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम मैं करूँगा आपकी पिक्चर, कभी मैं ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन वलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी जी जी।
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया, फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे ढूंढते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है, तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
1: ओके ओके,
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था, तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया न्यू कमर राइटर
1: जी जी जी
0: उन्हीं का नाम है राइटर है, राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है, तो मैंने चिंटू से कहा

0: मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर लिया तो। मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है ये चोपड़ा की पिक्चर, और आप लिखें अगर तो ये स्टोरी आइडिया है। तो उन्होंने सुनो ने कहा ये आर्ट फिल्म का आइडिया है।
1: अच्छा
0: हाँ, जब ओरिजिनल जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो, बाकी जो है बहुत कम आया उसमें। तो बड़ी कमर्शियल, यश चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर, बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं, कुछ और डालते हैं। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटिवली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
1: हाँ
0: ये करे। तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में, उनकी उनका ही करना है ये सब। तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का।
1: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
0: रिस्की था
1: जी,
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए। तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी,
1: हाँ हाँ,
0: और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है, और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आहिस्ता से कहा बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग है, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी है उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी।
0: और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं जाके उसको ऐसा वो कह रहे हैं, बोला यार ये तो है देख ले तू। तो वो पोर्शन बिगिनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में, शुरू में जो सोच रहे थे। और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि उस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मैंने राखी जी ने ऐसे ही पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ
1: फिर सुनाया,
0: फिर उन्होंने कहा तुम बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगी
1: जी।
0: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना,
1: हाँ।
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग-जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा क्यों छोटा है, फलां क्यों नहीं, मेकअप रूम अच्छा नहीं, कभी कोई बात नहीं की
1: जी जी जी,
0: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ये करूँगी।
1: वाह।
0: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी हैं,
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह।
0: और असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई?
1: हाँ।
0: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था ना,
1: बहुत बड़ी बात,
0: नया बन रहा था,
1: पहली फिल्म थी आपकी,
0: पहली फिल्म, और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस ढंग से, वो तो उस वक्त तक, आज भी और उस वक्त भी, जिसको नहीं करना वो ने जा भाई दूसरे के पास जा, हम नहीं करेंगे
1: जी।
0: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर, जो होना था 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से,
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ किस तरह उसको बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैटनी में कहीं लगा देंगे तो वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है जी, जैसा आपको लगे। उतार दी गई पिक्चर उनकी चैन। अगली पिक्चर जो थी मेरे ख्याल शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन राय जी रिलीज कर रहे थे।

0: क्या मौसम है, चल कहीं दूर
1: अच्छा,
0: निकल
1: बहुत क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा कर रहे हैं। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि दो पेज की कहानी का होता, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यश जी से थोड़ा सा रूठा था दूसरा आदमी के उतरने के बाद।
0: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए।
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे,
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यश जी के साथ था। तो जब हम डाक के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिक बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा,
0: अरे वाह,
1: हम दोनों साथ में काम करेंगे। ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो
0: जूली,
1: वो जूली भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप,
0: कुंवारा बाप मिली।

0: तो अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया, मैंने जैसी चीज़ कहा ये जी, वो तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा सारा मुश्किल होता है तुझे, बट एनीवे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी, तो मैं इससे मिलने गया। बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया, करेगा पिक्चर? बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सिटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेल पे। बोला करूँगा, और उसने पिक्चर ले ली, और उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, जबरदस्त म्यूजिक बना,
1: बहुत अच्छे गाने चले।
0: बहुत नहीं, फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास,
1: अच्छा,
0: करने के लिए। तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूँगा।
1: ओ,
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने।

0: ओके ओके कर दिया था गड़बड़,
1: हाँ
0: वो कुछ हुआ था सर।
1: हाँ
0: मेरे
1: हाँ
0: ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन, और नशा जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे, उनकी कोई दिल्ली की सहेली है नशा जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, ऐसा तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी।
1: ओ
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म हिट बनाई है, मजरू साहब ने इसलिए दो नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने आनंद बख्शी और मजरू साहब,
1: बिल्कुल, उन्होंने पहले भी काम
0: दोनों
1: किया
0: पिक्चरों के
1: था।
0: साथ काम किया, दोनों के साथ किया था। तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर।
1: बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है
0: भाई इसमें सारे गाने अच्छे हैं
1: जी?

0: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
1: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
0: जी।
1: लोगों ने अप्रोच

0: करना शुरू कर, कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो। तो ज्योम जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसरों ने कह दिया था क्या हो मेरे साथ करो पिक्चर, एक ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो है। हुआ ये कि रमेश बहल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था, साइन में रहता था, तो भी आते जाते यश जी के यहाँ जाना है अगर पाली हिल तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय वाय पीते गपशप मारते, भला आदमी बहुत अच्छा आदमी था। उसे कहा थॉट, वो भी शॉर्ट ही बोलता था थॉडी, क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलते थे थॉडी, कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरी एक पिक्चर,
1: हाँ
0: मेरी ये कंप्लीट हो तो शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा 13 साल तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अगली,
1: हाँ।
0: वो करे तू भी कर, एक पिक्चर दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा, तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेजे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है एक रमेश तलवार को, ऐसा होता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे, उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली बचेरा की, उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
1: मराठी
0: मराठी में,
1: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के,
0: वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
1: जी,
0: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया, तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हमने आदतें फटाफट करते थे
1: जी,
0: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे एंजॉय
1: हाँ।
0: करते थे लाइफ को, वो 6 महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस 1 महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए,
1: यस
0: ये था। रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, 1 महीने बाद आऊँगा तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो गया था। तो उनके घर ही शूटिंग कर रहे थे, और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं, आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए, तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी हैं ये हैं, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा,
1: बाबा
0: कि उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
1: पुरानी दोस्ती है ही,
0: वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी, गुलजार पापा
1: जी,
0: सागर को सागर पापा बुलाता था, गुलजार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे, आपका और आर डी बर्मन का वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश बैल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख दीजिए आप,
1: बाबा।
0: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है, उनका बेटा मैं वो अजीब सा लग रहा है डायलॉग एंड वो नहीं करना, तो मैं स्क्रीन प्ले स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग ऐसा, तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगे कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूँ, उन्होंने नहीं सुना, तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया। तो उनका नहीं तो मेरा मद्रास की तरफ ज्यादा था, मद्रासी फिल्म की तरह ज्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ, और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके दो चार नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, वो गाने लिखे और हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं,
1: हाँ ये कौन है।
0: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे, अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है कि छोटी बहन आप है रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन,
1: ओके
0: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था, उनका उनकी फिल्में देख देख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूंगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो,
1: उन्होंने ही बोला।
0: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा का कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी, और मूडी किस्म की है मेरे को तो। बोले मैं अभी फोन करती हूँ, उन्होंने फोन लगाया। रेखा ने कहा मैं यहाँ जू पार्क स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ,
1: हाँ
0: तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बार पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर, एल्बम वेल्बम देख रहे पुराने किसी के देख रही थी, और कुछ हमारी फिल्मों के एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा जी ऐसा है, सुना लो लंच खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं, खा के आ रहा हूँ। अच्छा दो मिनट में मैं खाया, उन्होंने फटाफट खाना खा, आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी। मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी,
1: डन हो गया।
0: इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: मैंने आके रमेश बैल को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया। रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, हैं। अब साहब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा? शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे, कि हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है और ऋषि कपूर, लेकिन राखी हीरोइन थी, पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक लिस्टेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी, हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया। सर एक प्रॉब्लम है, बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तो उनकी बहुत सारी पिक्चर उनके सामने, उन्होंने मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरे सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपका आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूँ। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पे, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुँच गया, सुबह उनके फ्लैट पे उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना, फिर मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में। चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी। रोल छोटा था, 400 BC की, मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी, नटराज स्टूडियो गेट तक कहानी एंड हो गया था, दी एंड। गेट पे गाड़ी रुकी, उतर जा, मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ।
1: अरे बाप रे,
0: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊं लोग कहें शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया है।
1: हाँ।
0: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा
1: जी।
0: और ये बात बता दी।
1: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
0: मैं ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया।
1: ये दूसरे आदमी की बात हो रही है?
0: जी
1: जी,
0: दूसरा आदमी में ये, मैं वापस गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है।
1: हाँ।
0: लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब।
0: मैं आप कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके?
1: हाँ।
0: सामने।
1: हाँ।
0: मैंने कहा नहीं कोई नहीं है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: तो आ जाओ घर पे, आ जाओ सुबह। हाँ। नाश्ता करेंगे
1: वापस वैसे,
0: और फिर कर। अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, ये ना कर देंगे। करूँगा दिल, ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे, अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था तो वहाँ पे थे, और मुझे उन्होंने कहा वहाँ पहुँचे हम, तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूँगा मैं।
1: बसेरा के लिए हाँ हो गया?
0: हाँ होगी। और मतलब यह है कि डेटे तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ राज्य की पिक्चर लिया, वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा डेटे, जनवरी में करूँ, दिसंबर जनवरी में। तो ये कुछ अप्रैल मई जून था, ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया कैसा है, कि बोलो ठीक है रॉडी, वैसे भी तू ये सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों। तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ, रेखा के साथ, बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर सब ये हो गया। ऐसे मतलब क्या, कब दो और दो चार चीज़ें बनती हैं, कैसे फिल्म बन जाती है।

गोपी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अब सुनिए एक फूल दो माली फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले। गीतकार हैं प्रेम धवन और संगीतकार है रवि।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए जंजीर फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार हैं गुलशन बावरा और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

फिल्म संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी की भागलपुर केंद्र से। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इनका प्रसारण समय। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर लोकगीत सुनेंगे रूपा सिंह से। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गांधी कुमार मिस्त्री को। 8 बजे रजनीगंधा कार्यक्रम में फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे। 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे से अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा दिल्ली से आप सुन पाएंगे। कलाकार होंगे विवेक सोनार, इनसे आप सुनेंगे बांसुरी वादन। ये तो थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब कुछ जानकारियां हम आपको देंगे कल के कार्यक्रमों की।

कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:48 पर। 5:55 पर खेत खलियान कार्यक्रम में कृषि आधारित वार्ता आप सुनेंगे। 6:05 पर चिंतन मनन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 6:10 पर भक्ति संगीत सुनेंगे। वंदना कार्यक्रम में 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में डॉक्टर शशिर कुमार पंजीकार की वार्ता आप सुनेंगे उच्च रक्तचाप। 6:40 पर रामचरितमानस गान का प्रसारण किया जाएगा। 7:00 से 7:55 तक मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में सुगम संगीत सुनेंगे अनिल कुमार आनंद से। अंग्रेजी वार्ता सुनेंगे टेस्मॉन मैथ्यू से। टीचिंग चिल्ड्रेन अबाउट बॉडी सेफ्टी। इसके अलावा फिल्म संगीत रेल सूचना मौसम सूचना अखबारों की सुर्खियां और कुछ बातें होंगी इतिहास की। प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। कल के कार्यक्रमों में फिल्मी गीतों का समय याद रखेंगे। सुबह 9:06 पर 10:00 11:00 11:30 पर एवं दोपहर 2:30 पर 9:30 पर सुगम संगीत सुनेंगे डॉक्टर स्मिता सिन्हा से। 10:30 पर लोकगीत सुनेंगे गोल्डी कुमारी एवं साथियों से।

12 बजे नारी लोक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे श्री पार्वती की। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे उमंग। 1 बजे लोकरंग कार्यक्रम में लोकगीत सुनेंगे आशा देवी से। 1:30 पर घर आंगन कार्यक्रम में 1:30 पर आप सुनेंगे घर आंगन कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 3 बजे बांग्ला गान का प्रसारण किया जाएगा। आवाज़ें होंगी जावेद अली, सपना मुखर्जी और कुमार सानू की। 3:20 पर देशभक्ति गीत सुनेंगे। 3:25 से शाम 5 बजे तक दिल्ली से आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। कल शाम 5 बजे युवा सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी। प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 5:30 पर फिल्म संगीत सुनेंगे। 6 बजे आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर लोकगीत सुनेंगे कपिल देव ठाकुर से। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में शालिनी को सुनेंगे। 8 बजे रजनीगंधा कार्यक्रम में फिल्म गीतों का आनंद लेंगे। 8:15 पर साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे मोहम्मद सरशार अहमद। 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम दिल्ली से सुनेंगे। 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कलाकार होंगे उस्ताद विलायत हुसैन खां। और 10:30 पर श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे पसंद आपकी। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इनका प्रसारण समय। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। शाम के 6 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को सोना का नमस्कार
1: और सबका गैरू के भी नमस्कार और अपने के भी नमस्कार सोना बहन।
0: नमस्कार नमस्कार गैरू भाई, बताइए क्या हाल समाचार है।
1: हाँ बढ़िया छो, हाल समाचार बढ़िया छो, देखी रहो छो एकदम रौदा के न छो, एकदम तिबले एकदम मन दीपाय छो गरमाय छो की बताई। हाँ आवे यहाँ आवे वक्ति सांझे सांझ तक देखो कि कहनो रौदा रे एकदम आवे के एकदम लगबे न करे रहो कि जाबो पारबे
0: एते
1: रौदा। तब फिर जे छौ के हो गमछा लेलौ ओकरा पानी में भिजैलौ तब एकरा कपारो धरी के ओढ़ी पुरी के तब के न एली। हाँ सुनाबे।
0: और साथ में ठंडा पानी तो रखना ही पड़ता है ऐसे मौसम में। क्या है ना कि गैरू भाई, कभी कभी होता है ऐसा कि मौसम साफ नहीं होता है, ठीक है, तो वही हमारे लिए वो भी परेशानी हो जाती है। सबसे बड़ी परेशानी तो वो होती है कि जो लोग मोबाइल ज़्यादा उपयोग में लाते हैं वो लोग मोबाइल से जो बात करने में नेटवर्क खोजने लगते हैं। अक्सर गाँव घर में भी ये देखा जाता है, क्या बोला जाता है कि अरे नेटवर्क नहीं मिल रहा है, मौसम साफ नहीं होने की वजह से बारिश हो रही है ना, तो ऐसे में हमारा मोबाइल भी काम नहीं करता है। अब जो है मौसम तो बिल्कुल साफ है, खनखन रोद है, और ऐसे में आप अपने घर का जो भी कपड़ा है वो भी अच्छे से सुखाइए। कुछ भी चीज़ है ना गैरू भाई, तो उसके कुछ कुछ जो है अच्छी बातें भी होती है, कुछ कुछ बुरी बातें ये होती है। तो अच्छी बातें ये हैं कि घर के जितने भी कपड़े हैं वो आराम से सूख जाते हैं। अभी अचार बनने का मौसम है तो उसके लिए ये रोद तो जरूरी है, और क्या, आलू का सुखौता, गोभी का सुखौता और बहुत सारे सब्जी का सुखौता बनेगा, और जो कच्चे आम का है वह भी जैम जली वगैरह बहुत कुछ बनता है ना, तो इन सारी चीज़ों के लिए तो ये रोद का होना जरूरी है। लेकिन एक तरफ जहाँ रोद का होना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर इस कड़े धूप की वजह से हमें तो परेशानी होगी ही। जरूरत यह है कि हम सावधानी से चले।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वह छो सावधानी से चले तो चलना तो चाहिए ही आरू बस। लेकिन हम ये बता रहा हूँ सुना बहन कि आए आवे खाना जो छौ ना, जब मैंने दोपहर में निकल लिए आवे ले ली कि चलो भाई तनटा हमने बाजार बर बाजार करना, अपना जेबो फिर बातचीत करबे, अपना श्रोता गण के सबके जानकारी देवे।
0: अब तो धूप में देख करके डर ही लगता है गैरू भाई, निकलना तो बहुत जरूरी हो तभी धूप में निकलिए, नहीं तो शाम के 6 बजे के बाद ही निकल पाते हैं, और आजकल बाजार में भी 8:30-9 बजे रात तक बहुत भीड़ रहती है। ऐसा लगता है कि दिन में लोग डर से धूप के वजह से अंदर रहते हैं, और जिनको बहुत जरूरी है वो तो निकलेंगे ही, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अरे वह लागा लगे छे ना कि एहनो रौदा में एकदम एहनो गर्मी में कि एकदम सब चक्कर आवा लगे छे।
0: हाँ वो तो देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं गैरू भाई कि ये जो चक्कर आने वाला समस्या है ना वो आम बनता जा रहा है ना।
1: हाँ।
0: और आम इसलिए बनता जा रहा है कि रोद के वजह से, गर्म के वजह से, तापमान बढ़ने के वजह से हमारे शरीर का जो तापमान है वह स्वमेव ही उच्च हो जाता है।
1: हाँ।
0: और उच्च रक्तचाप जो है, हमारा जो रक्त में जो प्रवाह होता है, जो हमारे जो भी नस है, जो अंग्रेजी में उसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, उसमें जो रक्त का जो प्रवाह होता है वह तीव्र हो जाता है। ये तापमान के तीव्र होने से रक्त का प्रवाह तीव्र हो जाता है, और उससे क्या होता है कि शरीर में जो उच्च रक्त का जो प्रवाह है वह तीव्र होने से लोगों में उच्च रक्तचाप की समस्या दिखाई पड़ती है, और इस वजह से लोगों में छोटे छोटे जो लक्षण है वो उल्टी आना, सिर चक्कर दे के गिर जाना, और बहुत तरह की परेशानी इस वजह से दिखाई पड़ती
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उच्च रक्तचाप जे कहलो सुना बहन, तो आए छो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस।
0: अच्छा
1: है कि नहीं, तो यही लिए यही संबंध में जे छे कि अपना सनी के जानकारी दे दी छे श्रोता भाई बहन सनी के।
0: बिल्कुल,
1: उच्च रक्तचाप की होय छे, सामान्य जे रक्तचाप छे मनुष्य के जे ब्लड प्रेशर छे हो 120/80 होय छे mmHg, लेकिन जो एकरा से बढ़ी गेल हो तो ओकरा कहे छे उच्च रक्तचाप।
0: और बढ़ने का कई कारण हो सकता है गैरू भाई,
1: तो नमक बेसी खाए छो।
0: हाँ।
1: तनाव चिंता करे।
0: हाँ। छो। अब देखिए घर में छोटी मोटी बातें होती है बच्चों में, तो माँ बाप अंदर अंदर सोचते सोचते अंदरूनी में वो रक्तचाप उच्च हो जाता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि घर में किसी कारण अनायास बातावाती हुई, झगड़ा हो गया, उससे भी उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। और भी बात है जैसे कि टीवी में अभी युद्ध का ही कुछ दिख रहा है।
1: हाँ, रोज खाली देख देख के टेंशन
0: बन जाता
1: है,
0: क्या होगा नहीं होगा, महंगाई बढ़ रही है, आगे क्या होगा, इससे भी रक्तचाप उच्च हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, धूम्रपान छे, कोई भी प्रकार के नशा मीठा सेवन करना होले, मोटापा भेलौ, चाहे शारीरिक काम नहीं करे।
0: ई जो गर्मी जो है ना गरु भाई, कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार रखे, तो ये जो गर्म गर्म माहौल हो रहा है, ऐसे में हमारा जो भोजन है वो सात्विक होना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, मतलब बॉडी का जो तापमान है, वो निम्न बना रहेगा, जो साधारण बना रहेगा। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा ऐसा भोजन कर रहे हैं कि हमारे जो शरीर का तापमान वो स्वयं उच्च हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अधिक तैलीय और जंक फूड से निके सेवन नहीं करना चाहिए और व्यायाम वगैरह करते रहना चाहिए।
0: हाँ, शाकाहारी भोजन ले, बहुत सारा फल, अभी देखिए तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, बीन, बीट, बहुत कुछ है, और उन सारे चीज़ों को लेने से हमारा रक्त जो चाप है वो अच्छा रहेगा, और जो रक्त का प्रवाह है नस के अंदर वो बहुत ही, सबसे ज़्यादा जरूरी बात है, जो व्यक्ति इस उच्च रक्तचाप से ग्रसित है वो घरेलू जो उपाय है, जैसे कि कड़ी पत्ता का नित्य सेवन करना, सुबह सुबह कच्चे सजीना जो खिच्चा जो होता है, सहजन का पत्ता उसका जो खोला, हाँ खोला कर उसका पानी पीने से भी उच्च रक्तचाप में कमी आती है। उसके साथ साथ नींबू का अधिक और लगातार सेवन करना, चावल दाल में नींबू खाए या नींबू चीनी नमक बनाकर, और कच्चा नमक नहीं खाए इस परिस्थिति में, जिनको उच्च रक्तचाप बना रहता है
1: वो कच्चा नमक, संतुलित भोजन करो प्रतिदिन, जैसे 30 मिनट योगा प्राणायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, ध्यान करना है, सबसे इस सब कुछ,
0: और साथ ही साथ ध्यान बहुत जरूरी है गैरू भाई, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मेरे हाथ के चीज का तो है नहीं, तो हम समझदारी से चले, किसी चीज में हम घबराए नहीं और घबरा करके हम कोई भी गलत निर्णय नहीं ले, इसी से हमारा उच्च रक्तचाप उच्च हो जाता है ना।
1: हाँ, और एक सबके जानकारी जे छे लगातार रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जे छे कि देते रहलो रहे छे सबको, हर जगह सूचना मिले छे अखबार के माध्यम से, तो ई जे साधन छे ओकरो भी समुचित और सही से प्रयोग करना, सही चीज देखना, तो यहो जे छौ ई जे साधन छौ कि जल्दी से जल्दी सूचना पहुंची जाए छे, कहीं भी कुछ भेले ते तुरंत ओकरो सूचना पूरा देश में पहुंचे छे, तो ई ठीक है दूर संचार, ठीक ना सोना भाई, तो दूर संचार के भी एक अहम योगदान छे ये दुनिया का वैश्विक बनावे में, और संयोग से आए विश्व दूर संचार दिवस भी छे सोना भाई।
0: बिल्कुल, आज हम जिस माध्यम से आपसे बातचीत कर पा रहे हैं वह भी दूर संचार का एक बहुत पुराना और सशक्त माध्यम है। इसी माध्यम के कारण आज हम आपके संपर्क में बरसों से अनवरत निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। हमेशा से ही हम जानकारी की बातों को, चाहे वह हमारी सामाजिक गतिविधि से संबंधित हो, आर्थिक हलचल हो, या राजनीतिक उथल फुथल हो, या फिर तकनीकी क्रांति, हर एक विषय से संबंधित जानकारी से हम निरंतर अवगत कराते रहते हैं अपने श्रोता भाई बहनों को। हर साल आज ही के दिन विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, और यह दिन हमारे दैनिक जीवन, समाज और अर्थव्यवस्था को आकार देने में संचार और डिजिटल तकनीकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना 17 मई 1865 को पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर के साथ हुआ, जिसकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है, और इसका पहली बार 1969 में आयोजन किया गया था। और जैसा कि जानते हैं गैरू भाई कि इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि इंटरनेट और अन्य सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT के माध्यम से डिजिटल डिवाइड तकनीक को के खाई को पाटना और समाज में इसके उचित उपयोग को बढ़ावा देना है, और 1969 में इसे केवल विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता था। नवंबर 2006 में तुर्की के अंताल्या में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के आधिकारिक नाम दिया गया, और विश्व दूरसंचार दिवस में सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशाला सहित कई कार्यक्रमों के आयोजनों के माध्यम से यह साधारण जनमानस तक जानकारी दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है गिरु भाई कि ये व्यवसाय कृषि से संबंधित किसानों को सरकार और व्यक्तियों के लिए विचारों का जो साझा करती है, और उभरते रुझान मुद्दों पर चर्चा करने और दूरसंचार उद्योग की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का भी एक अवसर प्रदान करती है। और इस बार जो विषय है 2026 का, वह है डिजिटल जीवन रेखाएं, एक संयोजित दुनिया में लचीलेपन को मजबूत करना। यह विषय सामयिक और अत्यंत महत्वपूर्ण है, और हाल के वर्षों में दुनिया ने देखा है कि प्राकृतिक आपदा रहे, साइबर हमला रहे, या बुनियादी ढांचे, इस प्रकार की विफलताएं किस प्रकार डिजिटल कनेक्शन के माध्यम से हम बहुत सारी समस्याओं का हल कर लेते हैं। है ना।
1: वाह, बहुत बढ़िया जानकारी दिलाओ सना बहन। निश्चित रूप से अपना सब श्रोता भाई बहन जे छे एकरा से लाभ उठेते। और अब त कार्यक्रम में बढ़े छे आगू और सुने छे कुछ जरूरी संदेश।
0: कुछ जरूरी संदेशों को सुनते हैं और हम लोग उसके पहले उसके बाद में कुछ भगवान का भजन भी करेंगे, मतलब विनती करेंगे कि हमारे आने वाले दिन अच्छे हो, है ना
1: जी।
0: आने वाले दिन अच्छे हो मतलब ये जो युद्ध वगैरह हो रहा है वो समस्या का समाधान हो, है ना
1: जी।
0: और साथ ही साथ जो परेशानी हो रही है तो
1: वो खत्म हुआ।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
3: क्रेश,
4: ट्रेश
2: और बाल्टी बॉय।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: बहुत
1: बहुत
0: ही
1: बढ़िया।
0: प्यारा सा भक्ति भाव से भरा हुआ ये गीत हम लोगों ने सुना और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा।
1: हम रहो बढ़िया लगले सोना
0: और
1: बहन, खाली
0: आशा
1: तो
0: है
1: रहने लगले, हम रहो अच्छे लगले।
0: और आशा करते हैं कि जो हमारे श्रोता भाई बंधु हैं वह भी बहुत ही भक्ति में डूब गए होंगे, है ना। क्या है कि गेरू भाई, ये संगीत जो है हमारे मन मस्तिष्क को एकदम ऊर्जा प्रदान कर देती है और शांति प्रदान करती है, और इसी शांति की आवश्यकता आज के भागम भाग में है मानव को, है ना। और
1: बिल्कुल
0: अभी जैसा कि अभी बात कर रहे थे आप विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की, और इस बार का जो जो थीम है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का, कि एक साथ उच्च रक्तचाप को कैसे नियंत्रित करें, और ये जो मैंने बात की शांति की गैरू भाई, तो आज सभी लोग शांति की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कहीं भी ध्यान से देखिए तो शांति का अभाव ही दिखता है। एक सुकून खोजता है आदमी कि किसी घर के कोने में चले जाए, बहुत चुपचाप से अंधेरे में बहुत शोरगुल से दूर सुकून से थोड़ा समय हम व्यतीत कर पाएं। लेकिन क्या है कि अपना जीवन बहुत भाग दौड़ वाला होता है। सुबह से उठकर हम लोग भागना शुरू करते हैं क्योंकि हम दौड़ धूप की ज़िंदगी जीते हैं। हमें कुछ अपना जो काम करना होता है और आमदनी करनी होती है, फिर हमें वापस घर आना होता है, फिर वही काम, और इस चक्कर में हम अपना भी ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो गैरू भाई, आज का जो यह विषय है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, इस विषय पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं विनोद कुमार जी से। आइए सुनते हैं, समझते हैं और कुछ लाभ लेने की कोशिश करते हैं
1: जी
0: इस वार्ता के माध्यम से।
2: विश्व रक्तचाप दिवस 17 मई 2026, आज मैं अत्यंत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर आप सबों के बीच अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि 17 मई को पूरे विश्व में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस अर्थात वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। आज इस परिचर्चा के माध्यम से हम उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर होने के कारणों, इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव सहित विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे। मानव जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन माना जाता है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। आज भागदौड़ की भरी जिंदगी में आधुनिक जीवन शैली, बढ़ता तनाव, अनियमित खान पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण अनेक गंभीर रोगों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे अनेक रोगों में उच्च रक्तचाप अर्थात हाइपरटेंशन एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर और व्यापक समस्या बन चुका है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण प्रारंभिक अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों, हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे और आँखों को यह प्रभावित करते रहता है। वैश्विक स्तर पर उच्च रक्तचाप की बढ़ती समस्या को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना, इसके कारणों और दुष्परिणामों की जानकारी देना तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। आज उच्च रक्तचाप की समस्या केवल वृद्ध लोगों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि युवा वर्ग और किशोरों में भी यह तेजी से फैल रहा है। इसलिए इस विषय पर व्यापक चर्चा और जागरूकता लाना आवश्यक प्रतीत होता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का इतिहास की हम बात करें तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। इसे मनाने की पहल विश्व भर में उच्च रक्तचाप संबंधित जागरूकता फैलाने वाली संस्था वर्ल्ड हाइपरटेंशन द्वारा की गई थी। दरअसल विश्व रक्तचाप दिवस के अवसर पर का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि उच्च रक्तचाप केवल एक साधारण बीमारी नहीं बल्कि अनेक घातक रोगों का मूल कारण है। इस दिवस के दिन विभिन्न देशों में स्वास्थ्य शिविर, रक्तचाप परीक्षण, जन जागरूकता रैलियाँ, संगोष्ठियाँ और मीडिया अभियान आयोजित किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस समस्या के प्रति जागरूक किया जा सके। अब सवाल यह उठता है कि उच्च रक्तचाप है क्या? अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं उच्च रक्तचाप है क्या। जब हमारी धमनियों में बहने वाले रक्त का दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 mmHg माना जाता है, लेकिन यदि यह लगातार 140/90 mmHg या इससे अधिक रहता है तो यह व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित माना जाता है। उच्च रक्तचाप के कई प्रकार भी हैं, जैसे पहला प्राथमिक उच्च रक्तचाप, यह धीरे धीरे विकसित होता है और इसका कोई निश्चित कारण भी नहीं होता है। वहीं इस बीमारी का मुख्य कारण बढ़ती उम्र, तनाव, मोटापा और अनियमित जीवन शैली इसके प्रमुख रूप से कारण है। वहीं दूसरे रक्तचाप की बात करें तो यह किसी अन्य बीमारी के कारण भी उत्पन्न होता है, जैसे गुर्दे की बीमारी, हार्मोन संबंधी विकार, थायराइड समस्या, गर्भावस्था, कुछ दवाओं का भी प्रभाव इस बीमारी के मुख्य रूप से कारण होते हैं। अब इसके कारणों की हम बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है अत्यधिक नमक का सेवन। अधिक नमक खाने से शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रक्तचाप बढ़ने लगता है। दूसरे कारण की हम बात करें तो लगातार मानसिक तनाव हृदय पर दबाव बढ़ाता है। कार्यभार, पारिवारिक समस्याएं और प्रतिस्पर्धा भरी जिंदगी के कारण लोग तनावग्रस्त रहते हैं। इसका दुष्परिणाम उच्च रक्तचाप की समस्या हो जाती है। तीसरा प्रमुख कारण शारीरिक गतिविधि की कमी है। भागदौड़ की जिंदगी में लोग अक्सर व्यायाम नहीं कर पाते, जिससे मोटापा बढ़ता है और रक्तचाप नियंत्रित नहीं रह पाता। चौथा कारण मोटापा भी है। अत्यधिक वजन हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे उच्च रक्तचाप की संभावना बढ़ जाती है। पांचवा कारण जो है वह धूम्रपान और शराब है। तंबाकू और शराब धमनियों को संकुचित करते हैं तथा रक्तचाप को बढ़ाते हैं। छठा कारण आनुवंशिक भी होता है। यदि परिवार में किसी को उच्च रक्तचाप है तो अगली पीढ़ी में भी इसका खतरा अधिक रहता है। सातवां कारण असंतुलित आहार है। फास्ट फूड का सेवन, तैलीय भोजन और जंक फूड का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। वहीं आठवां कारण नींद की कमी। स्वस्थ शरीर के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक है। पर्याप्त नींद नहीं लेने से शरीर में हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे रक्तचाप बढ़ने लगता है। अब इसके कारण लक्षण की हम बात करें तो उच्च रक्तचाप को चूंकि साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण देर से दिखाई देते हैं। वैसे कुछ सामान्य संकेत के रूप में सिर दर्द, चक्कर आना, थकान, सांस फूलना, धुंधला दिखाई देना, सीने में दर्द, नाक से खून आना, हृदय की धड़कन तेज होना आदि के रूप में होता है। वहीं इसके दुष्परिणाम की हम चर्चा करें तो यदि समय रहते हुए उच्च रक्तचाप का उपचार नहीं किया जाए तो यह अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। सबसे पहला कारण इसका दुष्परिणाम क्या होगा तो हृदय रोग से हम पीड़ित हो जाएंगे। उच्च रक्तचाप हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूसरे दुष्परिणाम के रूप में स्ट्रोक भी होता है। रक्तचाप अधिक होने से मस्तिष्क की रक्त वाहिका फट सकती हैं अथवा अवरुद्ध हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में स्ट्रोक भी हो सकता है। तीसरा दुष्परिणाम गुर्दे की बीमारी। उच्च रक्तचाप गुर्दे की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। वहीं चौथा दुष्परिणाम आँखों की समस्या भी हो सकती है। यह आँखों की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुँचाकर दृष्टि को कमजोर कर सकता है। पांचवा दुष्परिणाम मानसिक तनाव। लगातार बढ़ा हुआ रक्तचाप चिंता और अवसाद को बढ़ा सकता है। अब आजकल युवाओं में भी उच्च रक्तचाप की समस्या देखी जाती है। आज का युवा वर्ग मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण अधिक समय तक बैठकर अपना काम करता है और बैठकर समय बिताता है। वहीं फास्ट फूड और अनियंत्रित दिनचर्या के कारण युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति कम जागरूक देखा जाता है। यही कारण है कि आज का युवा वर्ग भी उच्च रक्तचाप का शिकार हो रहा है। वस्तुतः हम यह कह सकते हैं कि युवाओं में उच्च रक्तचाप के कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे देर रात तक जागना, तनावपूर्ण जीवन शैली, प्रतियोगी वातावरण, व्यायाम की कमी, नशीले पदार्थों का सेवन और जंक फूड का सेवन। ऐसे कई कारण हैं जिस कारण से आज के युवा उच्च रक्तचाप के शिकार हो रहे हैं। यदि समय रहते हुए इसकी जांच नहीं कराई जाए तो भविष्य में यह एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन सकता है। महिलाओं की यहाँ तक बात करें, आज कल महिलाओं में भी उच्च रक्तचाप की समस्या तेजी से बढ़ रही है। गर्भावस्था, हार्मोनल परिवर्तन और मानसिक तनाव इसके प्रमुख कारण हैं। गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप माँ और शिशु दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। वैसे कामकाजी महिलाओं में तनाव और अनियमित जीवन शैली भी इस समस्या को बढ़ा रही है। इसलिए महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच और संतुलित जीवन शैली अपनानी चाहिए। अब इसके रोकथाम की हम चर्चा करें तो इसको नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अत्यंत आवश्यक है। उसके पहले जो इसमें आचार विचार है वह है संतुलित आहार, हरी सब्जियों का सेवन, फल खाना, ये ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको अपना करके हम इस समस्या से बच सकते हैं। वही नमक का भी सेवन कम करना चाहिए, तैलीय और जंक फूड से ही बचना चाहिए, पर्याप्त पानी भी पीना चाहिए, प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए, योग और प्राणायाम भी इसमें लाभकारी है। तीसरा जो उपाय है वह है तनाव नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ध्यान, संगीत और सकारात्मक सोच तनाव कम करने में सहायक होते हैं, इसलिए व्यक्ति को संगीत और सकारात्मक सोच के साथ जीवन को व्यतीत करना चाहिए। धूम्रपान और शराब से भी पूरी दूरी आवश्यक है। यदि हम धूम्रपान करेंगे, शराब का सेवन करेंगे तो उच्च रक्तचाप होने की पूरी संभावना बनी रहती है। पर्याप्त नींद, यदि व्यक्ति प्रतिदिन 7-8 घंटे की नींद लेगा तो निश्चित रूप से उसे इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। 7-8 घंटे से कम नींद लेने की स्थिति में उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। नियमित स्वास्थ्य में जांच में समय समय पर रक्तचाप की जांच करवाना भी आवश्यक प्रतीत होता है। योग और आयुर्वेद की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उच्च रक्तचाप में योगासन का विशेष महत्व है, जैसे अनुलोम विलोम, प्राणायाम, शवासन, भ्रामरी, ताड़ासन, ऐसे महत्वपूर्ण योग हैं जिनका हम यदि नियमित रूप से हम प्रयोग करते हैं और इसको अपनाते हैं अपने जीवन शैली में तो हम उच्च रक्तचाप से बच सकते हैं। अब सवाल है सरकार की भूमिका इसमें क्या है। तो सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को उच्च रक्तचाप के प्रति जागरूक लगातार किया जा रहा है, जैसे निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच, जन जागरूकता अभियान, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, आयुष्मान भारत जैसी कई योजनाएं हैं जिससे लोगों को उच्च रक्तचाप से छुटकारा मिल सकता है। अब है सवाल यह उठता है कि इस महत्वपूर्ण विश्व रक्तचाप दिवस का महत्व क्या है। यह सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं है बल्कि मानव स्वास्थ्य के प्रति चेतना जगाने का यह महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य की नियमित जाँच भी आवश्यक है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर बल दिया जाता है। तनाव मुक्त जीवन जीना भी महत्वपूर्ण है। समय पर उपचार जीवन बचा सकता है। तो मुख्य रूप से विश्व रक्तचाप दिवस मनाने के प्रति यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता की आवश्यकता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह समस्या बढ़ती जा रही है। लोग इसे सामान्य थकान मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। इस स्थिति पर सुधारने के लिए गाँवों में स्वास्थ्य शिविर लगाना भी आवश्यक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत किया जाना चाहिए और लोगों को नियमित जांच के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन का आधार है। दरअसल उच्च रक्तचाप एक गंभीर लेकिन नियंत्रित की जा सकने वाली समस्या है। यदि हम समय रहते हुए सावधानी बरतें, नियमित जाँच करवाएँ और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएँ तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। विश्व रक्तचाप दिवस हमें यही संदेश देता है कि रोकथाम उपचार से बेहतर है। यदि हम समाज और सरकार सब मिलकर के प्रयास करें तो हम उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर समस्या पर नियंत्रण पा सकते हैं और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं।
0: बहुत ही अच्छी जानकारी की बातों को हम लोगों ने सुना और उचित समय पर अगर हम चिकित्सीय परामर्श लेते हैं या हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो हम इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए विनोद कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं
1: जी।
0: और उससे पहले अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे गुरु भाई दूर संचार दिवस के बारे में, तो आज हम लोग कुछ जानकारी दूर संचार के बारे में भी लेंगे। कामेश्वर प्रसाद जी के पूर्व प्रसारित वार्ता ग्रामीण विकास में दूर संचार के विषय में, लेकिन उसके पहले सुनते हैं कुछ संदेशों को
1: जी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: बहुत बढ़िया संदेश के बाद फेनू से स्वागत छे सब श्रोतागण के कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में।
2: और आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज विश्व दूर संचार दिवस भी मनाया जा रहा है। आइए इसी विषय में जानते हैं कामेश्वर प्रसाद शर्मा की पूर्व प्रसारित वार्ता
1: ग्रामीण विकास में दूर संचार के भूमिका। जी सुने छे और जानकारी प्राप्त करे छे
2: विस्तार से।

दूर संचार और ग्रामीण विकास। आज के विश्व में दूर संचार का महत्व बढ़ रहा है और भारत को यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगात्मक स्थान प्राप्त करना है तो इसे इस क्षेत्र में तीव्र विकास करना होगा। भारत विश्व के सर्वाधिक बड़े दूर संचार तंत्रों में से एक का संचालन करता है। इसमें टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से होने वाला संचार सम्मिलित है। विश्व स्तरीय दूर संचार आधार संरचना के अस्तित्व प्रावधान देश के त्वरित आर्थिक और सामाजिक विकास की कुंजी है। भारत में टेलीग्राफ और टेलीफोन आविष्कार के तुरंत बाद ही दूर संचार सेवाएं आरंभ हो गई। पहली टेलीग्राफ लाइन कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच 1851 में संचार हेतु खोली गई। दूर संचार मूल संरचना की पहचान राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण औजार के रूप में की गई है। यह न केवल संचार नेटवर्क के माध्यम से देश के लोगों को जोड़ता है अपितु यह वैश्विक संपर्क और अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। भारत का दूर संचार नेटवर्क विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है और एशिया की उभरती अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय जनसमूह के लिए

इंटरनेट बुनियादी मूल संरचनात्मक आवश्यकता बनता जा रहा है। यह लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन में गहरी पैठ बना रहा है।

सृजन और पोषण करने के लिए की गई है, जो भारत को वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभाने में संपर्क तथा समर्थ बनाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शी नीतिगत परिवेश प्रदान करना है, जो घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों के लिए सामान्य कार्यक्षेत्र प्रदान करता है। इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ट्राई ने समय समय पर अनेक विनियमन आदेश और दिशा निर्देश जारी करते आ रहे हैं, जिसमें व्यापक विषय शामिल है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 का संशोधन, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा किया गया। संशोधन अधिनियम के द्वारा एक अपीलीय न्यायाधिकरण, जो दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय ट्रिब्यूनल TDSAT कहलाता है, की स्थापना सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार के क्षेत्र के हितों की रक्षा करने के लिए की गई है। इस प्रकार से देश का व्यवस्थित विकास समुचित सुनिश्चित किया जाता है। इसे लाइसेंस देने वाले और लाइसेंस धारक के बीच किसी विवाद का अधिनिर्णय का अधिकार दिया गया है। दूरसंचार उद्योग द्वारा किया गया ऐसा त्वरित विकास संचार तथा सरकार की समर्थक और उदार नीतियों और निष्पक्ष विनियामक ढांचा द्वारा ऐसा बनाया गया है, जो खरीद सकने लायक कीमतों पर भारतीय उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराता है। आर्थिक सुधारों के साथ इस क्षेत्र में मुख्य परिवर्तन हुआ है। पहले जिसमें किसी एक का एकाधिकार था, वह अब प्रतिस्पर्धा मंच बन गया है और विश्व भर में निजी कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। नई दूरसंचार नीति द्वारा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखा गया है। इसका लक्ष्य भारत को एक वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी सुपर पावर बनाना है और देश में विश्व स्तरीय दूरसंचार मूल संरचना का विकास करना है। यह ऐसा माहौल बनाने पर बल देता है, जो इस उद्योग में लगातार निवेश आकर्षित करने में समर्थ बनाता है। विभिन्न देशों के मध्य सिमटती दूरियों का एक प्रमुख कारक दूरसंचार प्रौद्योगिकी एवं संचार की बढ़ती भूमिका है। देश में हुई सूचना क्रांति से ग्रामीण जनजीवन में भी बदलाव आया है। अब ग्रामीण महिलाएं भी घूंघट से बाहर आकर कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग करने लगी है। सूचना क्रांति से ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार आया है। ई शासन ने रही कही कसर को पूरा कर दिया है। ई शासन ने जहां आज जन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर पा रहा है, वहीं ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था को भी नई दिशा मिली है। इससे जहां ग्रामीण विकास को नया आयाम मिला है, वहीं ग्रामीणों को शासन प्रशासन की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में तुरंत जानकारी मिल जाती है। बदलते भारत की गूंज भारतीय भूगोल को लांग चुकी है। बदलाव के बयार को पूरी दुनिया स्वीकारने लगी है। संचार क्रांति ने जो बदलाव की गति को और तीव्र कर दिया है, गांव में बसने वाला भारत अब ई क्रांति का अग्रदूत बनने की राह पर है। व्यवस्थागत संपूर्ण जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध कराने की दिशा में भारत सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड करने की योजना बनाई है। इसी योजना के आलोक में प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा तक की पूरी शिक्षण प्रणाली को डिजिटल किया जा रहा है। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति जहां शिक्षा के प्रारूप और पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव पर जोर दे रही है, वहीं डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलकर तकनीक तौर पर

0: सशक्त समक्ष समाज को तैयार करना है। सर्वांगीण विकास के लिए डिजिटल इंडिया एक क्षत्रिय प्रोग्राम है जो न केवल जनोपयोगी योजनाओं को इलेक्ट्रॉनिक वितरण का मार्ग प्रशस्त करता है, वरन ग्रामीण और नगरीय जीवन शैली के बीच डिजिटल डिवाइड को खत्म कर पब्लिक डाटा के संग्रहण से भारत को डिजिटल ब्लूप्रिंट के रूप में सूचनाओं को आमंत्रित भी करता है। संग्रहित सूचना के अन्वेषण और तकनीकी उपयोग की अपार संभावनाओं के मध्य आज ऐसे कई स्मार्ट एप्लीकेशन बन रहे हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवाओं, विनिमय, यातायात आदि क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलाव लाने में सक्षम हैं। परंतु इस क्रांति को आत्मसात करने में सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा है, जो अभिशाप बन ग्रामीण भारत को विकास की मुख्य धारा से अलग रखे हुए है। लेकिन निकट भविष्य में भी ये सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। भारत सरकार का डिजिटल इंडिया ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए सरकार ने करोड़ों का बजट रखा है। इस कार्यक्रम के तहत 2.5 लाख पंचायतों समेत 6 लाख गांवों को इंटरनेट ब्रॉडबैंड जोड़ने का लक्ष्य है और सरकार की योजना 2018 तक यह लक्ष्य पाने की है। इन पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने पर 70,000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव है। साथ साथ 2.25 लाख आईटी पेशेवर तैयार करने का लक्ष्य भी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक स्किल डेवलपमेंट योजना की शुरुआत की है, जो देश के लोगों को सरकार से सीधे जोड़ने में मददगार होगा। देश के 55,000 गांव को अगले 5 वर्षों में मोबाइल संपर्क की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 20,000 करोड़ के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का गठन किया गया है। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के इस्तेमाल में आसानी होगी। ई क्रांति सेवाओं से किसानों के लिए रियल टाइम कीमत की सूचना, नकदी, कर्ज, राहत भुगतान, मोबाइल बैंकिंग आदि की ऑनलाइन सेवा प्रदान करना है। गांव शहर के बीच डिजिटल गैप कार्यक्रम के जरिए भारत और इंडिया के बीच का फर्क मिटाना है। इससे ग्रामीण एवं शहरी सभी लोगों को समान रूप से डिजिटल सेवाओं का फायदा मिलेगा। सरकार BSNL को नए सिरे से कदम बढ़ाते हुए 1.5 करोड़ नए कनेक्शन का लक्ष्य दी है, जो 2019 तक हर गांव में टेलीफोन सेवा पहुंचाने का लक्ष्य है। साथ ही ट्राई ने भी 2020 तक तेज इंटरनेट सेवा घर घर पहुंचाने की योजना बनाई है। सरकार चाहती है कि हर पंचायत इंटरनेट ब्रॉडबैंड से जुड़े और स्थानीय लोगों को इसका उचित लाभ मिल सके।
1: बहुत ही अच्छी बातों की जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की और इनके लिए इतनी अच्छी बातों के लिए इनको देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2-3 दिनों के जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75% तथा दोपहर में 20-25% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 8-12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। तो यह तो हुई मौसम की जानकारी। आइए हम अपने किसान भाई बहनों को थोड़ी सी जानकारी इस विषय पर दे दें कि अभी के जो लीची के बाग हैं उसकी देखभाल वो कैसे करें। तो आइए इस विषय पर जानते हैं संजय साहजी सहाय की पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से लीची के बाग की देखभाल कैसे करें।
2: जी जानै छी और विस्तृत रूप से ओकरा से लाभ प्राप्त करै छी।

खाद्यान्न के रूप में उगाई जाने वाली संपूर्ण फसलों में धान का सर्वोपरि स्थान है। इसकी खेती मुख्य तौर पर खरीफ के मौसम में की जाती है। प्रत्येक वर्ष

0: लीची के फल अपने आकर्षक रंग, स्वाद और गुणवत्ता के कारण भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए हैं। लीची उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। 70% लीची उत्पादन पूरे भारतवर्ष में बिहार के उत्तरी भाग से होता है। लीची कुछ सीमित क्षेत्र में ही गुणवत्ता वाले फल होते हैं। यह क्षेत्र नदी का तटवर्ती इलाका है, जिस कारण मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर आदि जिलों में इसकी अच्छी खेती होती है। लीची बहुत कम समय के लिए ही बाजार में उपलब्ध रहता है, अतः इसकी बाग की देखभाल करना अति आवश्यक है। बाग की देखभाल करने के लिए खाद एवं उर्वरक की आवश्यक मात्रा देना उचित लाभकर होगा। आरंभ के 2-3 साल तक लीची के पौधों को 30 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नीम की खली, 150 ग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति पौध प्रति वर्ष की दर से देना चाहिए। उसके पश्चात पौधे की बढ़वार के साथ साथ खाद की मात्रा में वृद्धि करते जाना चाहिए। इस प्रकार 5 किलोग्राम सरी गोबर की खाद, 100 ग्राम नीम की खली, 150 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति पौधे प्रति वर्ष के हिसाब से वृद्धि करना चाहिए। लगभग 15 वर्ष बाद पूर्ण विकसित वृक्ष में 80 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद, 2-3 किलोग्राम नीम की खली, 2 किलोग्राम यूरिया, 2.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 0.8 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति पौध प्रति वर्ष की दर से देना चाहिए। करंज या नीम की खली एवं कंपोस्ट के प्रयोग से लीची के फल की गुणवत्ता एवं पैदावार में वृद्धि होती है। लीची के पौधों में फल तोड़ाई के बाद नए कल्ले आते हैं, जिन पर अगले वर्ष फलन आती है। अतः अधिक औजपूर्ण एवं स्वस्थ कल्लों के विकास के लिए खाद, फास्फोरस एवं पोटास की संपूर्ण एवं नत्रजन की 2/3 मात्रा जून जुलाई में फल की तोड़ाई एवं वृक्ष की कटाई छटाई के साथ ही देना चाहिए। पूर्ण विकसित पौधों के तनों से 150 से 200 सेंटीमीटर की दूरी पर गोलाई में 60 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी खोदकर खाई बना लें। खाई को 5-8 दिनों तक खुला छोड़ने के बाद उसे खाद एवं मिट्टी के मिश्रण से भर दें। इस प्रक्रिया से पौधों में नई शोषक जड़ों का अधिक विकास होता है और खाद एवं उर्वरक का पूर्ण उपयोग होता है। लीची के फलों के तुड़ाई के तुरंत बाद खाद दे देने से फलों में कल्लों का विकास अच्छा होता है एवं फलत अच्छी होती है। शेष नत्रजन 1/3 मात्रा फल विकास के समय जब फल मटर के आकार के हो जाएं तब सिंचाई के साथ देना चाहिए। जिन बगीचों में जिंक एवं बोरान की कमी के लक्षण दिखाई दें उनमें 150 से 200 ग्राम जिंक सल्फेट, 250 ग्राम बोरी के सीट प्रति वृक्ष की दर से सितंबर माह में अन्य उर्वरकों के साथ देना लाभकर पाया गया है।
1: जी, अब ये कार्यक्रम के समय यही समाप्त हो छे। सबका गैरू के नमस्कार।
2: सबको सोना का भी नमस्कार।
3: विश्व रक्तचाप दिवस, विश्व रक्तचाप दिवस।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7 बजे हैं रांची से, सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में बढ़ी है पारदर्शिता। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर जिले के रोहिणी नावाडी में रेलवे ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ हुए यौन शोषण का उठाया मुद्दा, की कार्रवाई की मांग। मौसम में बदलाव जारी, राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा लातेहार, वहीं पलामू राज्य का सबसे गर्म जिला रहा। और धनबाद में आयोजित 5वीं झारखंड स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रांची जिले के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, कई स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने बताया कि CBSE ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। सचिव ने कहा कि CBSE ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है।
1: CBSE ने वर्ष 2014 में OSM की शुरुआत किया था और इसको हम लोगों ने इस वर्ष रीइंट्रोड्यूस किया है। OSM विश्व में ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके द्वारा ये किया जा रहा है और ये एक नॉर्म है जो विदेशों में भी बन गया है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी सिस्टम को ट्रांसपेरेंटली तरीके से कर पाने के लिए हम सक्षम हो पाते हैं।
0: सिमडेगा के महुआ बुआंग थाना में पदस्थापित एक जवान की अपने ही हथियार से गोली लगने से मौत हो गई है। वहीं रांची जिले के तिरगा गांव में के रहने वाले थे। घटना उस वक्त की हुई जब जवान अपने हथियार की सफाई कर रहे थे। जिले के पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटनावश गोली चलने का प्रतीत हो रहा है।
2: महाबोन थाना से अपना प्राप्त हुई कि इसमें आरक्षी राजू तिरपिन में प्रतियुक्त उनके अपने हथियार से गोली लगने के कारण मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया एक्सीडेंटल पाने का मामला सामने आ रहा है।
0: रांची और आसपास के इलाकों में अपराध का अंकुश लगाने के लिए रांची पुलिस ने कल रात बड़ा अभियान चलाया। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर जिले भर में ऑपरेशन प्रहार के तहत एक साथ छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में 100 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 220 से ज्यादा लंबित वारंटों का निष्पादन भी किया गया। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस टीमों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर फरार अपराधियों, वारंटियों और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गढ़वा में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य आज से शुरू हो गया है। गढ़वा के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि कर्मचारी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं तथा परिवारों से आवश्यक जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से इस महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए पूरी तैयारियाँ की गयी। राज्य में संचालित केंद्र सरकार की नल जल योजना पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर नल जल योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस योजना के लिए सरकार के पास खजाने में 7,000 करोड़ पड़े हुए हैं, लेकिन खर्च नहीं किए जा रहे हैं।
3: नल जल योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है, सर देश के सारे राज्यों में योजना बहुत अच्छे प्रकार से प्रत्येक घरों के दरवाजे तक पहुंची है, लेकिन झारखंड में योजनाएं फिसड्डी साबित हुई है। आज भी सरकार के खजाने में 7,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो उस पैसे को खर्च करने की इनमें मादा नहीं है। तो जो पैसे खर्च किए गए हैं इस योजना में, उस पैसे को भी भ्रष्टाचार के आंकड़े में डुबाने का काम किया।
0: इस मामले में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य को भीख नहीं दे रही है, यह हमारा अधिकार है।
4: जल नल योजना किसकी है? केंद्र की है। केंद्र अपनी राशि दे रही है, राज्य सरकार अपनी राशि दे रही है, और राज्य की ये परेशानी है कि जब तक केंद्र अपना आवंटन नहीं करता, राज्य अपने हिस्से का पैसा उस प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकता है। और कोई हम लोग किसी से भीख तो नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है, केंद्र हम लोगों पर कोई मेहरबानी नहीं कर रही, लेकिन जो एक भ्रम फैलाने का ये लोग प्रयास करते हैं।
0: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के साथ पिछले दिनों चाईबासा परिसदन में जिला प्रशासन की ओर से किए गए कथित उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज सोशल मीडिया पर कहा है कि किसी का पद स्थायी नहीं होता, लेकिन लोकतांत्रिक परंपरा हर हाल में कायम रहनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अर्जुन मुंडा के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया वह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं, प्रशासनिक मर्यादाओं और जनजातीय समाज के सम्मान का भी विषय है। श्री साहू ने आगे कहा कि इसके पहले चाईबासा उपायुक्त की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा के साथ भी असम्मानजनक व्यवहार किया जा चुका है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वाराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी पूछ सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ जेल अधीक्षक के द्वारा यौन शोषण और गर्भवती किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेल आईजी मामले को दबाने, फाइलें गायब करने और सबूत मिटाने के लिए महिला कैदी को गुप्त स्थानों व अस्पतालों में ले जा रहे हैं, जबकि गवाह कर्मियों का तबादला कर उन्हें चुप कराया जा रहा है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी दी कि यदि दोषी अधिकारियों को बर्खास्त कर गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह माना जाएगा कि सरकार भी इस कृत्य में शामिल है। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और उच्चतम न्यायालय से संज्ञान लेकर झारखंड की जेलों में महिला कैदियों के उत्पीड़न पर कार्रवाई की मांग की है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर जिले के रोहिणी नावाड़ी में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इसका निर्माण प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के मिशन अंतर्गत किया गया है। मौके पर सांसद ने कहा कि इस रेलवे ओवरब्रिज के चालू होने से देवघर से एम्स और रांची की दूरी कम होगी। वहीं लोगों ने इस कार्य के लिए रेल मंत्री वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। झारखंड में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। पिछले 15 दिनों से राज्य के विभिन्न जिलों में हो रही बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। आज राज्य का सबसे ठंडा जिला लातेहार रहा, जहां अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पलामू राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची समेत कई जिलों में बीते दिनों हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है। लोहरदगा जिला के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज जिला प्रशासन की ओर से रन फॉर लोहरदगा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, विद्यार्थी और आम नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर खेल कूद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। जमशेदपुर में आयोजित झारखंड राज्य कबड्डी संघ की विशेष बैठक में वर्ष 2026-2030 के लिए नए कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की गई। महासचिव संजय कुमार झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जून के द्वितीय सप्ताह में चुनाव के माध्यम से नई कमेटी का गठन किया जाएगा। बैठक में सभी जिला कबड्डी संघों को 31 मई तक अपनी बैठकों का आयोजन कर वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा राज्य संघ को सौंपने का निर्देश दिया गया। वहीं वर्ष 2026-27 के खेल कैलेंडर को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई और सीनियर राज्य कबड्डी प्रतियोगिता 4 जून से धनबाद में आयोजित करने का फैसला किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में बढ़ी है पारदर्शिता। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर जिले के रोहिणी नावड़ी में रेलवे ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ हुए यौन शोषण का उठाया मुद्दा, की कार्रवाई की मांग। मौसम में बदलाव जारी, राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा लातेहार, वहीं पलामू राज्य का सबसे गर्म जिला रहा। और धनबाद में आयोजित 5वीं झारखंड स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रांची जिले के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, कई स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:12 हुए हैं। लोकगीत सुनिए रूपा सिंह से, आरंभ में इनसे सुनिए ये शिव भजन।

0: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
0: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
0: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
0: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
0: अच्छा,
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: हो गया इंतजाम।
6: किसका?
5: गुड्डी की फीस का।
6: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
4: लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिया भरोसा, TRE4 भर्ती परीक्षा के लिए शीघ्र जारी की जाएगी अधिसूचना। केंद्रीय पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, केंद्र सरकार पशु विकास के लिए कर रही है गंभीर प्रयास। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजगीर में एक महीने तक चलने वाले मलमास मेले का शुभारंभ किया। 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि TRE4 भर्ती परीक्षा के लिए जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। श्री तिवारी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग परीक्षा के आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुटे रहे, बहुत जल्द अच्छे परिणाम आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है और शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी अधिसूचना जारी करें।
0: केंद्रीय पंचायती राज, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार पशुओं के नस्ल सुधार के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। मुंगेर दौरे पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्णिया के बाद लखीसराय में भी सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्लांट की स्थापना की गई है। इससे पशुओं के विकास और दुग्ध उत्पादन में काफी लाभ होगा।
2: मदर डेयरी का भी काम बहुत तेजी से जमालपुर में शुरू होगा, डेयरी का। और इसके साथ साथ पशुओं के विकास के लिए और पशुओं के जो दूध देने की क्षमता है उसको आगे बढ़ाने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन का इस्तेमाल करने को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसके लिए भी एक पूर्णिया में बना है सेक्स सॉर्टेड सीमेन का प्लांट और एक लखीसराय में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सेक्स सॉर्टेड सीमेन का प्लांट लगाएगा, फॉर्म लगाएगा, ताकि अच्छे क्वालिटी का सीमेन कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग हो सके।
0: श्री सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर के विभिन्न भागों का दौरा किया और क्षेत्र में चलाई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री के ईंधन बचाओ की अपील का स्वागत किया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इसे जरूर अपनाना चाहिए।
3: नरेंद्र भाई मोदी जी, जो आज समस्या आ गई है हम लोगों के सामने, विश्व समस्या है, खास करके पश्चिम एशिया का, उसके चलते उन्होंने सावधान किया है कि एक संयम बरतने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई गलत बात नहीं कही है, एकदम ठीक बातें हुई है, उसको अपनाना चाहिए। इससे कोई ऐसा ना समझना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई चीज थोपा गया है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार लगातार सक्रिय है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री सरावगी ने कहा कि जिन लोगों ने बच्चों के

0: भविष्य से खेलने का प्रयास किया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
1: केंद्र की सरकार लगातार सक्रिय है। जो भी इसमें मास्टरमाइंड से लेकर जो लोगों ने यह इतना बड़ा अपराध किया है, बच्चों के जीवन से खेला है, उसको किसी हालत में भी सरकार बकसने वाली नहीं है। लगातार कार्रवाई हो रही है, सीबीआई को जांच दी गई और उसके साथ साथ बड़ी मात्रा में कार्रवाई हो रही है।
0: पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र भागलपुर के बिहपुर में एक खेल स्टेडियम स्थापित किए जाने की मांग रखी है। श्री शैलेंद्र ने युवाओं के कौशल विकास, रोजगार के अवसरों के विस्तार और श्रमिक हितों से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा भी की। केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया ने उन्हें सकारात्मक पहल का भरोसा दिया है। देश का प्रमुख औद्योगिक संस्थान अडानी समूह बिहार के संरचनात्मक विकास के क्षेत्र में अगले 3-4 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा। समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने आज सारण जिले के मस्तीचक में 150 करोड़ रुपए की नेत्र चिकित्सा पहल की शुरुआत करते हुए ये घोषणा की है।
2: हमारा टारगेट है कि कम से कम 57,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, और अखंड ज्योति के साथ में ये खाली मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे बाकी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां जहां जरूरत होगी मृत्युंजय तिवारी जी टीम बेसिकली जो पूरा देखेंगे।
0: अडानी समूह अखंड ज्योति आई अस्पताल के सहयोग से सारण में अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा केंद्र और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर रहा है। इसके तहत आज भूमि पूजन का आयोजन किया गया। समूह प्रमुख गौतम अडानी ने बिहार की भूमि को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान की भूमि बताते हुए कहा कि यहां आकर उन्हें शांति का अनुभव हुआ है।
2: यह भूमि सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। गायत्री शक्तिपीठ में आकर मुझे एक शांति का अनुभव हुआ और समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए एक नई प्रेरणा मिली।
0: प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकानों की गिनती और उनके सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामान, उपलब्ध सुविधाएं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। गणना कार्य को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। इसके माध्यम से लोगों की शिकायतें और आपत्तियों का निष्पादन भी किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के भारत नेपाल सीमा के करीब रक्सौल बीरगंज मैत्री पुल पर एसएसपी जवानों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। संदिग्ध व्यक्ति से प्राप्त पासपोर्ट के आधार पर उसकी पहचान चीनी नागरिक याओ सू जांग के रूप में की गई है। सुरक्षा एजेंसियां उसके भारत में प्रवेश के उद्देश्य, उसके संपर्क और गतिविधियों की जांच में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभवाणी,
5: आकाशवाणी।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। श्री शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार और पार्टी संगठन के बीच समन्वय भाजपा की असली ताकत है। श्री जायसवाल आज किशनगंज में पार्टी के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान जिला प्रशिक्षण वर्ग 2026 के समापन सत्र में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
2: भारतीय जनता पार्टी का लगातार कार्यक्रम और प्रशिक्षण चलता रहता है। हम चुनाव के दूसरे दिन से ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग जो है, कार्यकर्ताओं को और सरकार के साथ कैसे समन्वय और भी संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए ये प्रशिक्षण वर्ग लगाया है।
0: पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र भी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन, विचारधारा और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नालंदा जिले के राजगीर में मलमास मेले का शुभारंभ किया। यह मेला 15 जून तक चलेगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री चौधरी ने कहा कि सनातन धर्म के 33 करोड़ देवी देवता एक माह के लिए राजगीर में प्रवास करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को मलमास मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। राजगीर तीर्थ रक्षार्थ पंडा समिति के सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि इस वर्ष करीब 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इधर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए 950 दंडाधिकारी की निगरानी में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों में उमस के साथ तेज गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज किए जाने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
3: दिनांक 18 मई, राज्य के बक्सर, पूर्वी चंपारण एवं शेखपुरा जिलों में उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
4: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहे बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने संग्रहालय दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि संग्रहालय वर्तमान और अतीत तथा भविष्य के बीच सेतु का काम करते हैं। ये हमें विरासत से जोड़ते हैं और भविष्य के लिए प्रेरित करते हैं। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है, उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। इस अवसर पर कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बिहार इकाई की ओर से पटना समेत कई जिलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 80 नए अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण और AI आधारित अग्नि नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इससे राज्य अग्निशमन सेवा को अधिक सशक्त और आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे होगा। जहानाबाद जिले के अरवल मोड़ के समीप साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की

से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रचार प्रसार किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली योजना का लाभ

0: एक महीने तक चलने वाले मलमास मेले का शुभारंभ किया। 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है?
4: मिठाई।
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के
8: यात्री,
9: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
8: दिमाग चार्ज कर रखना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
8: देखा
9: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
9: तेरी वाईफाई है ना?
8: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
9: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
10: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गया जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।
11: बीते दिनों राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गया जिले के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जिले में यह उनका पहला दौरा था। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर NDA कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। एयरपोर्ट से लेकर विष्णु पद मंदिर, महाबोधि मंदिर और शंकराचार्य मठ तक पूरे मार्ग पर राजनीतिक उत्साह, धार्मिक आस्था और शक्ति प्रदर्शन का माहौल दिखा। जगह जगह बैंड बाजा और फूल मालाओं से मंत्री का स्वागत किया गया। श्री चौधरी सबसे पहले विष्णु पद मंदिर पहुँचे, जहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने प्रस्तावित विष्णु पद कॉरिडोर और घाटों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री बाद में बोध गया पहुँचे, जहाँ उन्होंने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन किए और प्रस्तावित बोध गया कॉरिडोर की योजनाओं का जायजा लिया। दौरे के अंत में मुख्यमंत्री शंकराचार्य मठ पहुँचे और वहाँ आयोजित आम सभा को संबोधित किया। इधर प्रस्तावित विष्णु पद मंदिर कॉरिडोर को लेकर पंडा समाज के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। मंदिर के विश्राम गृह में सैकड़ों की संख्या में पंडा समुदाय के लोग जुटे और विष्णु पद क्षेत्रीय जन जागरण मंच नामक संस्था का गठन कर कॉरिडोर निर्माण के विरोध में बैठक की। बैठक में विष्णु पद प्रबंधन कारिणी समिति के अध्यक्ष शंभु लाल विट्ठल ने कहा कि शुरुआत में उन्होंने कॉरिडोर निर्माण का समर्थन किया था, लेकिन वर्तमान नक्शा में गयापाल पंडों के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। ऐसे में वर्तमान स्वरूप में कॉरिडोर निर्माण स्वीकार नहीं होगा। पिछले दिनों वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के गया आगमन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका गर्म जोशी से स्वागत किया। गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से वियतनाम के राष्ट्रपति सड़क मार्ग से बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए। इसके बाद वे वियतनामी मठ भी गए। दिन भर के कार्यक्रम के बाद वे देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वैश्विक ईंधन संकट के बीच तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 3.14 रुपए, जबकि डीजल की कीमतों में 3.11 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। विधानसभा अध्यक्ष

0: डॉक्टर प्रेम कुमार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कहा कि खाड़ी देशों में जारी युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, जिसका प्रभाव पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 7 महत्वपूर्ण अपील की है और संकट के इस घड़ी में सभी को देश के साथ खड़ा होना चाहिए।
1: खाड़ी देशों में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई जाकर के लगातार युद्ध हो रहे हैं, उसका असर दुनिया पर हो रहा है, उसका असर डीजल पर हो रहा है, पेट्रोल पर हो रहा है। इसीलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है, होम टू वर्क, सोना न लोग खरीदें जाकर, और कम से कम डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करें, खेतों में खादों का प्रयोग कम करें, जैविक खेती को बढ़ावा दें। संकट घड़ी में हम सबको मिल करके देश के माननीय प्रधानमंत्री खड़ा होना जाकर।
0: जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रगणक घर घर जाकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इधर जिले में किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए किसान पंजीकरण अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के नादरागंज ब्राह्मणी घाट निवासी छात्र शुभम कुमार ने जेईई मेन परीक्षा में एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने जेईई मेन 2026 के सेशन 2 में 100% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। खास बात यह है कि इससे पहले भी वह सेशन 1 में 100% अंक हासिल कर चुके हैं। लगातार 2 बार यह उपलब्धि हासिल कर शुभम ने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। इधर अग्निवीर भर्ती वर्ष 2026 के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा 1 जून से 15 जून तक आयोजित की जाएगी। गया स्थित भारतीय सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण बिहार के 11 जिलों कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और जमुई से कुल 38,040 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। भर्ती कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जल्द ही भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
2: अभी आप सुन रहे थे गया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:52 हो चुके हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर लहरी। आज के कलाकार हैं गांधी कुमार मिस्त्री। इनसे सुनिए आरंभ में भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आप सुन रहे थे गांधी कुमार मिस्त्री को। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। 8 बज चुके हैं। अब रजनीगंधा कार्यक्रम में सुनिए फिल्म गीत। आरंभ में सुनिए नमक हलाल फिल्म में किशोर कुमार और साथियों को। गीतकार हैं अनजान और प्रकाश मेहरा और संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

0: मिस्टर नटवरलाल। इस फिल्म का गीत सुनिए अमिताभ बच्चन, मास्टर रवि और बच्चों की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं राजेश रोशन।
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

0: जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई।

के मैं पीछे मैं पेड़ पे वो पीछे अरे बचाओ मैं डाल डाल वो पान पान मैं पसीना वो दाल दाल मैं चुरमी वो ताल में ये जंगल पाताल में बचाओ बचाओ अरे भागो।

संदेश से पहले आप सुन रहे थे वारिस फिल्म का गीत। मनमोहन सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गीतकार थे वर्मा मलिक और संगीतकार थे उत्तम सिंह। अब सुनिए नगीना फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

Akashwadi at 90. पति पत्नी और तवायफ, इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद अजीज़ और सलमा आगा की आवाज़ों में।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए बेटा फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

वक्त की कमी के कारण हम आपको यह गीत पूरा नहीं सुनवा पाए, इसका हमें खेद है। रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे फिल्म गीत, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। 8:45 होने को हैं, दिल्ली से सुनिए समाचार

0: संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में दो तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को

0: उद्यमिता से जोड़ता है।
1: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता, रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, इन तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
2: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

एसबीआई स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबूधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ। मैं अब्दुल वाहिद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ स्टर्सन से वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को कल केरलम के नए वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत चार अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी विलशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने दो रोजा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की सूरत हाल और आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई, नेस तजारती नेटवर्क पर इसके असरात पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को फरोग देने और आबी वसायल, सेमी कंडक्टर्स, इख्तिरा, दिफा, पायदारी और नकलो हमल के शोबों में तआवुन को वसी करने के बारे में खाका तैयार किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में आज स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं, जहां उनका खैर मकदम गोथेनबर्ग लैंडवेटर हवाई अड्डे पर स्वीडन के वजीर आजम वुल्फ क्रिस्टर्सन ने किया। जैसे ही वजीर आजम का तैयारा स्वीडन की फजाई हदूद में दाखिल हुआ, मेहमान खसूसी के तौर पर उनके हवाई जहाज की मुहाफजत स्वीडन के ग्रिपन लड़ाई जेट तैयारों ने शुरू कर दी। वजीर आजम मोदी को हवाई अड्डे पर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनका इस्तकबाल भारतीय बिरादरी के अरकान ने बड़ी गर्मजोशी से किया। इस दौरे की खासियत दो वजरा आजम की एक मुश्तरका खिताब है, जो वो सनद से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से करेंगे। सीओज की इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी के साथ यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लियन शामिल रहेंगी। गोथेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तिजारत, एआई, स्टार्टअप समेत मुख्तलिफ शोबों में तबादले ख्याल करेंगे। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन की क्यादत में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में हलफ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वी डी सतीशन को केरलम का अगला वजीर आला नामजद किया था, जिसके साथ ही 10 दिन से जारी सियासी ड्रामा और गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई। कांग्रेस की क्यादत वाले मुत्तहदा जमहूरी महाज यूडीएफ ने केरलम असेंबली इंतखाबात में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल की। तहम मुख्तलिफ ग्रुपों की लॉबिंग और कारकुनों के एहतजाज के बायस मस्कूरा इत्तेहाद वजीर आला के नाम पर फैसला नहीं कर पा रहा था। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: कांग्रेस के सीनियर लीडर वी डी सतीशन कल केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमरा 20 दिगर वदरा भी हलफ लेंगे। नामजद वजीर आला वी डी सतीशन ने आज शाम गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें वदरा की फेहरिस्त पेश की। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 अफराद के बैठने के इंतजाम समेत वसी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज गुजरात के शहर गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID के इख्तरा और इब्तदाई कारोबार के मरकज का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने इस मौके पर इस इदारे की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इदारा है जो तख्लीकी सलाहियत को कारोबार से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे इदारे नौजवानों को इख्तिरा और पेशेवराना तरक्की के मौजूं प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं।
3: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता, रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्य

0: देशों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने आज गांधीनगर में मदर डेयरी के 5 लाख लीटर की गुंजाइश वाले नव तामीर शुदा प्लांट का भी इफ्तिताह किया। अहमदाबाद में उन्होंने मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी मरकज कैंपस का भी इफ्तिताह किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा है कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतअल्लिक तकरीब के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड्स अता करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। रेलवे की वजारत ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के 2 डिब्बों में आग लगने के वाकये की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया है। आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे कोटा डिवीजन के नागदा जंक्शन के करीब त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के 2 डिब्बों में आग लग गई। इन डिब्बों में एक गार्ड कोच और एक AC 3 टियर कोच शामिल था। वजारत के मुताबिक कोच में नस्ब हिफाजती निजाम फौरी तौर पर मुतहरिक हो गया और ट्रेन खुद बखुद रुक गई। ट्रेन के अमले ने फौरन आग से मुतासिर दोनों डब्बों को अलग किया, जिसकी वजह से किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान रेल कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है। जनाब वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि जनूबी और मशरकी कर्नाटक के लोगों का एक देरीना मुतालबा पूरा किया जा रहा है। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि उम्मीद है कि बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू हो जाएगी। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार की जानिब से हवाई जहाजों के ईंधन ATF पर वैल्यू एडेड टैक्स को 25% से कम करके 7% करने के फैसले की तारीफ की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब हवाबाजी का शोबा आलमी सतह पर ऑपरेशनल और माली दबाव का सामना कर रहा है, रियासती हुकूमतों के इस किस्म के सरगर्म इकदाम एयरलाइंस को जरूरी सहारा फराहम करते हैं और मुसाफिरों के लिए फजाई सफर को सस्ता रखने में मदद फराहम करते हैं। सड़क, ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में किसानों की खुदकुशी की एक बड़ी वजह पानी की किल्लत है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी की बचत इस बुहरान का मुअस्सर तरीन हल है। नागपुर में कौमी कॉन्फ्रेंस नागपुर जल संवाद से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि पानी के तहफ्फुज़ से मुतअल्लिक कोशिशों की कामयाबी के लिए लोगों का इनमें हिस्सा लेना लाजमी है। उन्होंने ग्राम पंचायतों से कानून साज अरकान तक तालमेल के साथ उठाए गए इकदाम पर जोर दिया ताकि गांवों और किसानों की खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। नशीली अशिया पर काबू पाने वाले ब्यूरो NCB ने मुल्कों के माबैन नशीली अशिया की नाजायज तिजारत के उन नेटवर्क्स के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है जो भारत म्यांमार सरहद पर अपनी कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। ब्यूरो ने म्यांमार में मुकीम सरगना थांकिंग तुआंग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। NCB ने एक बयान में कहा है कि यह गिरफ्तारी वसी तौर पर निगरानी, खुफिया मालूमात में इजाफे, तालमेल के साथ किए जाने वाले बैन रियासती तालमेल और लगातार पीछा करने की कार्रवाइयों की बदौलत की गई है। थांकिंग तुआंग कई तरह की मनशियात और नशीले मादों के कानून के तहत मतलूब था। ये केस NCB और मनशियात से मुतअल्लिक कानून नाफिज करने वाली कई एजेंसियों ने दर्ज की थी, जिसमें से NCB ने 2 केस दर्ज किए थे। नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की बिजली की मांग को पूरा करने में, जो अब तक की सबसे बड़ी मांग है, कामयाबी हासिल की है। एक प्राइवेट अंग्रेजी रोजनामे के साथ बातचीत में जनाब जोशी ने कहा कि बिजली की 33% मांग काबिल तजदीद तवानाई के वसायल से पूरी की गई है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस बड़ी तब्दीली से तवानाई की सलाहियत में बड़ी तेजी से इजाफे, ग्रिड को मुस्तहकम बनाने और मुल्क की तरक्की के सफर को तकवीत देने में माहौल के लिए साजगार

0: दार तवानाई के बढ़ते हुए हिस्से का अंदाजा होता है। रूस में मास्को और आसपास के इलाकों पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में 4 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें एक भारतीय मजदूर भी शामिल है। मास्को के मेयर सरगेई सुबियानिन ने बताया कि रात भर हुए इन ड्रोन हमलों में कम से कम 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रूस के हुक्काम के मुताबिक मास्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को तबाह भी किया गया है। यूक्रेन के सदर विलोदिमीर जेलेंस्की ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए इन्हें दुरुस्त कार्रवाई करार दिया। इस दौरान रूस में भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में बताया कि मास्को को मुख्तलिफ इलाकों में हुए ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। सिफारतखाने ने मजीद बताया कि सिफारतखाने के अहदेदारों ने हादसे की जगह का दौरा किया और अस्पताल में जेर इलाज जख्मी मजदूरों की कैफियत दरियाफ्त की। भारत के महकमे मौसमियात का कहना है कि जनूब मगरबी मानसून इस माह की 26 तारीख को केरलम में दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि मॉडल एरर की बुनियाद पर इसमें 4 रोज आगे या पीछे होने की भी गुंजाइश है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के जनूब मशरकी बहिरे अरब के कुछ मजीद हिस्सों, जनूब मगरबी और जनूब मशरकी खलीज बंगाल, अंडमान जजायर और बहिरे अंडमान के बाकी हिस्सों और मशरकी वस्ती खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 रोज के दौरान हालात मुआफिक रहेंगे। महकमे मौसमियात ने कल मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान जाहिर किया गया है। बैडमिंटन में आज चीन में बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में भारत की श्रियांशी वालीशेट्टी ने चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने बाओजी सिटी जिम्नेशियम में सुपर 100 के फाइनल में चीन की एन क्वी युआन को सीधे सेटों में 14-21, 6-21 से शिकस्त खाई, लिहाजा उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के जरिए दिए गए 223 रन के निशाने को हासिल करते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 199 रन ही बना सकी। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दिन के एक और मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 194 रन का निशाना रखा है। इससे कबल दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने 2 रोजा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ 2 तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 माहदों पर दस्तखत किए। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से 2 तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वीडी सतेसन को कल केरलम के नए वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वालीशेट्टी ने बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा नाटक कूपे।
2: ये है मेरा कूपे। जूडिस का प्रोग्राम अचानक बदल गया। मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो?
3: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
2: कूपे में भी?
3: क्यों, कूपे में क्या है? 2 बर्थ है, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं। 2 स्त्री 2 पुरुष या 1 स्त्री 1 पुरुष।
2: जी हाँ, 1 स्त्री और 1 पुरुष 2 ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
3: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
2: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
3: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
4: अच्छा, मैम साहब आ गई। आप तो कह रहे थे।
2: सुनो कंडक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको शांतना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया है।
3: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल 1 कॉफी।
4: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
2: मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा। 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
3: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
2: ओके, लौट कर बातें होंगी।
3: ओके।
4: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
3: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला। सोने से पहले अपनी डायरी लिख लो। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं। वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची, कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही।
5: ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है, मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही।
3: अच्छा,
5: मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
3: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
5: मेरी शादी नहीं हुई है।
3: क्या?
5: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर हैं, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं। उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
3: आप कितने दिन से घूम रही हैं?
5: कई वर्ष हो गए।
3: आपके बहुत मित्र हैं?
5: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ। उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
3: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, LSD आदि का सेवन करती हो?
5: करती हूँ, उनसे मुझे आनंद मिलता है। उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
3: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं, महात्माओं, योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
5: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उधार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
3: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी

0: अच्छी है उनकी ये भटकन। कुछ हैं जो परिवार के शासन से परेशान हैं, कुछ को आज के शोषण की राजनीति त्रस्त करती है। वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं। ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे। आती हूं।
1: बाहर भी वर्षा होकर चुकी है। मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है।
2: अरे आप एक लिखे जा रही हैं? कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूं?
0: ये मेरी डायरी है।
2: तब नहीं देखूंगा, डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
0: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
2: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी।
1: खिड़की खोल दूं, वर्षा से भीगी हवा आने दो।
2: मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
0: सब काम पूछ कर ही करते हैं आप।
2: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीती हैं?
0: पीती तो नहीं, पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
2: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
0: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
2: प्लीज, साथ देने के लिए एक पैक।
0: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
2: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
0: पीजिए।
2: बुरा मान गई। प्लीज, बात यह है कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूं हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज हैं ये विदेशी युवतियां, बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूं लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
0: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं।
2: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
0: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
2: गणित विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
0: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
2: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
0: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है, आप पुरुष है ना। मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
2: नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही हैं? प्लीज।
0: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूं, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
2: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूं। वी हैव मेड लव मैनी टाइम्स, लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिख भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे,
0: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
2: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई, तुम उससे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरे बाल।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
2: प्लीज, अभी कुछ देर और बैठूंगा।
0: बैठे रहो।
2: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूं?
0: नहीं।
2: तुम्हें छू सकता हूं?
0: नहीं।
2: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगे?
0: नहीं।
2: क्यों?
0: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं। वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व तो एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया,

0: जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
1: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
0: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
1: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सांत्वना।
0: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं, प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
1: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
0: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही हैं। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह। व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं, स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने।
1: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे, उस आनंद को? मेरे पास है, पियोगी?
0: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
1: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज।
0: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
1: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
0: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
1: प्लीज,
0: मर्द तेज पूंछ है, औरत उसके तेज को छीनने वाली है।
1: देखो,
0: ये दलीलें अब्बासी होती।
1: प्लीज,
0: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या
1: है। मैं नहीं,
0: मैं कहती हूँ शिक्षा उठकर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।
1: सांत्वना,
0: कौन है, क्यों आए हैं इस समय?
2: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
0: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
2: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ। लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
0: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
2: देखिए, मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
0: क्या मतलब है आपका?
2: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं। इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
3: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था। कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
0: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ।
2: ठीक है ठीक है, मैं जाता हूँ। गुड नाइट।
3: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ।
1: मुझे बहुत दुख है दरअसल।
0: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: सरजीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेट, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह ही सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही हैं? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछूं?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम मां बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार की बात तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि

0: साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए और उसके बाद जैसा अनुभव हो इसका अर्थ समझी।
1: समझी
0: वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर

0: सभी लोगों में है। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है, क्या नहीं है? कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई। देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था? कौन कौन हो तुम? मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुमने? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो, लेकिन क्या सर्वजीत के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था? अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था? तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा। शब्दों के माया जाल में फंसने की चेष्टा मत करो। ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है। लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो। इसी द्वंद से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है। इस छद्म को उतार फेंको।
1: ये छद्म है, छद्म। सुनो, कहां गई तुम? बोलो।
0: कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूं। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सरजीत मेरा पति नहीं है। मैं डर गई। कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद डिब्बे से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतने सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, द्वंद में फंसी मैं भी भटक रही हूं। क्या इस भटकन का अंत देह के मिलन में ही है? कहां है सत्य? कौन सा छद्म इन तर्कों को ठगे हुए है? कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
2: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
3: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हो।
0: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
3: तुम बहुत अच्छी हो।
0: सच?
3: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
0: अच्छा, अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
3: गुड नाइट।
4: बहुत देर से आई हो, कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
0: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
4: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
0: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
4: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
0: हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे। शायद तुम्हारे अंकल ने

0: सीवर उतार कर रख दिया था।
1: हाँ, यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मम्मा?
0: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को।
2: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
0: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं। मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में काट ना पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। क्या मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है? क्या इसे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
3: सांत्वना? सांत्वना, तुम सो गई?
1: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
3: सांत्वना, हमें लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
1: हाँ, कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
3: तुम शादी कर लो।
1: मैं शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
3: धोखा तुम आप दे रही हो।
1: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
3: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार न बनो, वैसे क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार न बनूं?
1: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद? विनोद!
4: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
1: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
4: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल।
1: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
4: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्थ पर लेटा लेटा।
1: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे। बेचारे परवर्टेड।
4: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
1: आप नहीं पूछोगे?
4: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
1: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
4: जी में आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और
1: फिर रुक क्यों गए?
4: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
1: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
4: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी।
1: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य, वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
4: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छंद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना, प्लीज।
1: इसे हटा, मैं कहती हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया अब? कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
5: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ, विलायत से कब आए, कैसे हो? और मार्था? ओह, ये मार्था तो नहीं है?
1: मेरा नाम सांत्वना है।
5: ओ, देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरजीत भाई, बधाई हो।
4: निगम, इनसे मिलो, ये है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
5: हाँ, वो तो है, पर तुम हो भाग्यशाली, अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सीलेंट है, वाह। माफ कीजिएगा मिसेस थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं, यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
1: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
5: ओ आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
1: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
5: जा रहा हूँ, खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला, पर सरजीत

0: एक बात याद रखो, ये भारत है, यहां शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
1: दरवाजा खुला रहने दो।
0: क्यों?
1: मेरी इच्छा।
2: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
1: तो आप में भी समझने की शक्ति है? स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी।
3: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
1: बड़ी सुंदर जगह है ये।
3: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, विछो का स्थान।
1: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में विछो का स्थान है, वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा, जा रही हूँ, बुरा ना मानना। प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा, नमस्कार। क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
3: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
1: कंडक्टर, मैं यहीं उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
2: जी अभी आया। लाइए,
4: मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
1: ये लीजिए।
0: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ। खूब बातें करेंगे दोनों, सामान ले।
3: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है, जो तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूं।

कूपे। अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल नांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध हैं और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रेनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। Born and raised in Chalisgaon, Maharashtra, and inspired by his late father, Sri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Warkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also a composer, Vivek Sonar is one of the leading flautists of India, renowned for his strong command over Tantakari and Layakari style. Blessed with powerful blowing skill, a multi-talented person, Vivek Sonar is widely regarded by music lovers and critics for having honed unparalleled skills of instrumentation in flute playing. He is also known for his initiatives like his Sui Generis, the Grand Bansuri Utsav, and the Flute Symphony, a magnificent concert that has 111 flutes playing together. Vivek has performed solo as well as jugalbandi concerts with leading exponents of the santoor, sitar, violin and also Carnatic instrumental music in many prestigious music festivals in India. Vivek has performed at many prestigious events like Savai Gandharva Bhimsen Mohotsav Pune, Mogubai Kurdikar Sangeet Samaroh Goa, Hampi Mohotsav in Hampi, Urja Music Festival Delhi, Pandit Ram Marathe Festival Thane, Pandit Jitendra Abhisheki Sangeet Mohotsav Goa, Gunjan Sangeet Mohotsav Indore, Goa Kala Academy Music Festival. Vivek has received many prestigious scholarships and awards. To name some, Akashwani A-grade artist for Indian classical flute, Thane Ratna Award by Hindustan Times, Pandit Sangameshwar Gurav Puraskar, Pandit Ram Marathe Puraskar. Surmani title from Sur Shringar Sansad Mumbai, National Scholarship from Union Government of India, Vrindaban Gurukul Scholarship. Tonight, Sri Vivek Sonar presents Rag Chandra Kaus Alap, Jod and Madhyalayagat, set to Rupak Tal and Drutagat, set to Teen Tal. He will be accompanied on tabla by Sri Ojas Adhiya,

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to Raag Chandrakaus by renowned flautist Shri Vivek Sonar. He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adia. With this tonight we conclude Ravi Vasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल दो दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honor for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defense, critical minerals, and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future.